क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे,

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 13 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए श्रोताओं, अब आपको बताते हैं कार्यक्रमों की रूपरेखा। 6 बजे आप सुनेंगे हमारा स्पॉन्सर प्रोग्राम सत्य वचन। 7 बजे से आप सुनेंगे हमारे समाचार, हिंदी में समाचार होंगे। 7 बजे का समय रहेगा गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर कार्यक्रम का। 8 बजे आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर कार्यक्रम। 9 बजे का समय रहेगा दिल के तराने गाने नए पुराने। 10 बजे आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक मैचलेस म्यूजिक आर्ट शो। 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 1 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 1:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मेरे वाला सॉन्ग।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। 6 बज चुके हैं और आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाची ने सीमा पार आतंकवाद समेत सभी तरह के आतंकवाद और कट्टरपंथ के सभी रूपों और तरीकों की स्पष्ट और कड़े शब्दों में निंदा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्ता की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। श्री पुरी ने कहा कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनरी क्षमता 30 करोड़ मेट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए नीति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लहड़ी ने रोडमैप जारी किया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद की वैश्विक विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक प्रमाणीकरण और साक्ष्य आधारित अनुसंधान जरूरी है। नगर विमानन मंत्रालय ने देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 आम नागरिकों को आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। ये एक लोकहितकारी नीति है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से आधिकारिक रूप से शुरू होगी और 28 अगस्त को ये समाप्त होगी। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 21 लोगों की मौत होगी और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी ढांचों सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अंतिम 16 में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के मैच के विजेता से होगा। इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हराकर आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। रविवार को लॉर्ड्स में खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये समाचार समाप्त होते हैं।

0: SR मीडिया एकेडमी।
1: जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो पर फिर हाजिर है आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, यही सत्य वचन है कि हम बेशक अपने प्रभु को भूल जाएं या उसका स्मरण ना करें, परंतु वो हमें कभी नहीं भूलता, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार उसने अपनी हथेली पर हमारा अक्ष बना रखा है ताकि हम उसकी नजरों से कभी ओझल ना हो सकें।

जी हाँ, यही सत्य वचन है कि हमारा प्रभु हमें संभालता है। जब कभी हम गुनाहों में गिर जाते हैं तो वो हमें उठने की सामर्थ्य देता है, क्योंकि हमारा प्रभु हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और वो कभी नहीं चाहता कि हम गुनाहों में पड़े रहें। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि मन फिराओ और प्रभु को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करो, क्योंकि वही हमारा सृष्टिकर्ता और

जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। जी हाँ, यही सत्य वचन है कि जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही हमारा शरीर कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि अगर तुम अपने पिता परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लोगे और उसके वचनों पर सदा चलोगे तो हमारा जिंदा खुदावन तुमको हर परिस्थिति में संभाले रखेगा।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। मैसेज या फोन करने के लिए हमारा नंबर है 9693644242। जी हाँ, 9693644242। और हमारा दूसरा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471।

तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगले हफ्ते यानी गुरुवार सुबह 6:05 पर फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
5: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
4: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
6: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ SRS, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
7: ठीक है?
6: आपको बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो SRS है ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
5: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
4: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
8: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
4: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
5: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
4: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
5: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
4: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
5: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
4: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
5: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
10: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रविंद्र और प्रोग्राम है सुप्रभात। और इस सुप्रभात को हम और आगे बढ़ाते हैं और खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं।

एक प्यारे से नगमे के साथ, और ये बता रहा है कि जब भी नई सुबह आती है तो हमसे कुछ कहती है, हमें कुछ बताती है और कहती है कि जिंदगी का एक रास्ता है जो एक बार फिर तुम्हें मिला है आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए इस सुप्रभात पर, नई सुबह, नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ, FM रेनबो पर 101.6 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात। चलिए बढ़ते हैं आगे इस प्यारे से गीत के साथ, क्योंकि ये गीत आपको बता रहा है कि आगे कैसे बढ़ना है। पहला कदम आगाज होता है, अंजाम तक पहुंचना है, और यही तो कहानी है इस सुप्रभात की।

और सुबह की पहली किरण यही तो कहती है कि कुछ पीछे छोड़ आए हो तो उसे पीछे छोड़ दो, क्योंकि अगर बार बार मुड़कर देखोगे तो तुम्हारी बढ़ती हुई गति धीमी हो जाएगी। और हम यही सोचते हैं कि पीछे क्या छोड़ा, जबकि हमें देखना आगे होता है, क्योंकि आगे देखेंगे तो सीधी सी बात है आगे बढ़ेंगे। तो गुड मॉर्निंग करते हैं आपके साथ, और उम्मीद है कि आपकी सुबह ये शानदार होगी। अभी तक तो सब कुछ बढ़िया, अगर आप शीशे में जाकर अपना चेहरा देखें, प्यार से मुस्कुराएं, तो समझ लीजिए कि सुबह तो खुशनुमा होनी ही है भाई साहब। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत सुस्ती बाकी है, तो अगले एक घंटे में हम कोशिश करेंगे कि आपका दिन थोड़ा बेहतर हो जाए। आज एक विषय हमने खास लिया है, सिर्फ आप जरा सोच कर देखिए कि हमारी पूरी जो जनरेशन है इतनी जल्दी में क्यों रहती है। आज हम भागम भाग भरी जिंदगी में एक चीज खोते जा रहे हैं, और वो है पेशेंस, है ना। इंस्टेंट खाना बना लो, इंस्टेंट कॉफी पी लो, इंस्टेंट रिप्लाई कर दो, इंस्टेंट रिलेशनशिप, इंस्टेंट ब्रेकअप, इंस्टेंट फेम, और अगर कुछ इंस्टेंट नहीं मिला तो कहते हैं ओ भाई ये लाइफ तो बेकार है। लेकिन भाई साहब, क्या जिंदगी भी इंस्टेंट होती है? ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आज का विषय ही हमने रखा कि जीवन में धैर्य क्यों जरूरी है। और यकीन मानिए, अगर अपने आज का शो पूरा सुन लिया तो शायद आप अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा अलग सोचने लगेंगे। लेकिन सिर्फ एक नजरिया बदलना है, शुरू करना है अभी से। शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया सलाम करे, और सोचने पर मजबूर हो कि वही बंदा है जो कल थोड़ा थोड़ा सा उदास था।

बस जिंदगी की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से हम शुरू करते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई पीछे मुड़कर मत देखो, क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने किया, क्या फर्क पड़ता है। हमको सिर्फ इतना देखना है कि हमने क्या किया। बात जब आज की जनरेशन की होती है तो एक रिसर्च तो ये कहते हैं कि आज की जो जनरेशन है ना, इतिहास की सबसे ज्यादा कनेक्टेड जनरेशन है। हर चीज से कनेक्ट रहती है, लेकिन ये भी सामने आया है कि सबसे ज़्यादा लोनली भी रहती है। अगर एक नज़र डालें सोशल मीडिया के ऊपर तो कोई कहीं घूम रहा है, कोई दुबई घूम रहा है, कोई कार का शौकीन ब्रांड खरीद रहा है, कोई कम उम्र में करोड़पति बन गया, और हम अपने कमरे में बैठकर सोचते हैं भाई मैं क्या कर रहा हूँ। बस यहीं से शुरू होता है कंपैरिजन, और यही कंपैरिजन धीरे धीरे डिप्रेशन ले जाता है, राइट। लेकिन कहानी कुछ और है, और इस कहानी पर जब हम ध्यान देते हैं तब हमें पूरी हकीकत समझ में आती है। अरे दुनिया समझने की जो हम कोशिश कर रहे हैं वो बंद कमरे में नहीं समझ में आती है, क्योंकि हर एक कहानी के पीछे छुपा होता है एक जुनून, एक जज्बा। लेकिन हमारा दिल जो है ना कुछ ढूंढता रहता है, उस सिरे की तलाश करता रहता है जो जिंदगी के एक मुकाम तक हमें पहुंचा दे, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दे, है ना। गीतों के भी तो ये बातें चलती रहेंगी, और हम आपको कोशिश करेंगे आपके मंजिल तक पहुंचाने वाले उस रास्ते तक पहुंचाने की जिसकी आपको तलाश है।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: हाँ जी, नमस्कार। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आए और वही विषय है कि धैर्य की हम बात कर रहे हैं कि लोगों में धैर्य कितना जरूरी होता है। क्योंकि हमने बात इससे पहले जब की थी तो हम दूसरों की सक्सेस देखने की बात कर रहे थे और उस सक्सेस को देखकर हम अगर थोड़ा सा परेशान होते हैं तो इसका मतलब जानते हैं क्या होता। इसका मतलब यह है कि आपने कभी खुद को आईने में देखकर तराशा ही नहीं। आपने कभी अपने बारे में विचार ही नहीं किया कि आपके अंदर जो शख्सियत छुपी है वो है क्या। सोचा है कभी आपने कि जो आपको दिखाई दे रहा है वो पूरी कहानी नहीं होती है, ये सिर्फ एक हाईलाइट है। ये वैसी है जैसे किसी कंप्यूटर में स्क्रीन सेवर होता है जो बेहद खूबसूरत दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके अंदर के हार्डवेयर पर कितनी मेहनत लगी होती है सदियों से, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। बस यही चीज तो है। व्यक्ति का स्ट्रगल हमें नहीं दिखाई देता, उसकी सक्सेस दिखाई देती है। हमें उसका फेल्यूर नहीं दिखाई देता, उसका रिजल्ट दिखाई देता है। उसकी सालों की मेहनत हम नहीं देख पाते। बस आपको भी कुछ यूं ही शुरू करना है, बजाय इस बात की रूठने की कि हम उसके जैसे क्यों नहीं है, ये देखना है कि हमारी अंदर की ताकत है क्या, हमारी कैपेबिलिटी है क्या, हमारी योग्यता है क्या, और हमें किस तरह से किस चीज पर अपने आप को तराशना है, ना कि रूठना है।

रोटना मनाना तो लगा रहता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचना है, गिरते थकते हारते ये सब पड़ाव है, असल चीज है मंजिल तक पहुंचना। इसलिए रूठा क्यों है,

आए बिना हिले डुले हमको आगे बढ़ना होता है, और आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा साथी, कोई ऐसी प्रेरणा ज़रूर ज़िंदगी में सामने आनी चाहिए, जिससे हम उस अनुभव का इस्तेमाल करके उस अनुभव को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ें। तो चलिए एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक किसान जो था, उसे खेती करनी थी, जानते किसकी? बांस के। और वो क्या करता है, एक दिन बांस के बीज बोता है। पहला साल बीत जाता है और कुछ नहीं निकलता, दूसरा साल भी बीतता है कुछ नहीं निकलता, तीसरा साल बीत जाता है कुछ नहीं निकलता, चौथा साल फिर भी कुछ नहीं। अब ऐसे में आप होते तो शायद परेशान हो जाते हैं, लेकिन किसान लगा रहता है। वो रोज पानी देता है, रोज उम्मीद रखता है, और पांचवें साल सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट ऊंचा बांस का पेड़ निकल आता है। अब सवाल यह है कि क्या बांस जो है सिर्फ 6 हफ्तों में बड़ा हुआ? नहीं भाई साहब, 5 साल वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। हो सकता है जिंदगी जो आपको थपेड़े दे रही है ना वक्त के संघर्ष के, वो आपको तपा रही हो, वो आपको बता रही हो कि आने वाले वक्त में आप पूरे होने वाले हैं। जिंदगी के अनुभव के साथ अधूरे नहीं, तो जिंदगी के उन संघर्षों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज रखनी है, धैर्य, धैर्य, धैर्य। इसलिए पूरा होना है तो पूरे होइए संघर्षों के साथ, क्योंकि संघर्ष ना हो तो हम नहीं तपते, हम कुछ बनते नहीं।

भैया बिना संघर्षों के ही हम अधूरे हैं, है ना। तो ये संघर्ष हमें पूरा कर दें, इसलिए कभी भी दूसरे को देखकर अपना रास्ता तय मत करिए, क्योंकि दूसरे के रास्ते पर चलकर आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं। भाई साहब, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने रास्ते बनाने होंगे, और अपने रास्ते बनाने के लिए आपको संघर्ष से जूझना भी होगा, है ना। बस इसमें एक चीज बहुत मायने रखती है, और वो है धैर्य। और धैर्य का मतलब इंतजार तो बिल्कुल नहीं होता, धैर्य का मतलब है तब तक खुद को कंट्रोल करके रखना जब तक मंजिल ना मिल जाए। बस आपके प्रयास सही दिशा में होने चाहिए। और एक चीज जो आपके अंदर की जो एनर्जी है उसको रिचार्ज करके रखती है, वो है आपका जज्बा कुछ कर गुजरने का, क्योंकि बिना इसके कुछ भी नहीं।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: और अब आप सुनेंगे मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने सीमा पार आतंकवाद समेत सभी तरह के आतंकवाद और कट्टरपंथ के सभी रूपों और तरीकों की स्पष्ट और कड़े शब्दों में निंदा की है।

प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि दोनों गुटों के दावों और आपत्तियों के बारे में ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋतव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन की विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। श्री पुरी ने कहा कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनरी क्षमता 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय ने देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाना है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से आधिकारिक रूप से शुरू होगी और 28 अगस्त को समाप्त होगी। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 21 लोगों की मौत हो गई और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी ढांचों सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन और पुर्तगाल ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अंतिम 16 में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। और अंत में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। पहला टेस्ट 15 जुलाई से गाल और दूसरा टेस्ट 23 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

बहुत ही ब्यूटीफुल से इस ट्रैक को आपने एंजॉय किया आकाशवाणी के FM रेनबो 102.6 पर, जहां पर प्रोग्राम शुरू हो चुका है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, और मैं हूं आपका दोस्त आरजे निखिल। इस प्रोग्राम में हम बातें करेंगे आपसे, बहुत सारी आपको जानकारी भी देंगे, एक से एक बढ़िया वाली, तो आप बने रहे हमारे साथ आकाशवाणी के FM रेनबो 102.6 पर। फिलहाल एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल से ट्रैक को।

और श्रोताओं, समय हो चला है अब आपको ये बताने का कि इतिहास के पन्नों में क्या खास दर्ज है आज के दिन। आज है 3 जुलाई और आपको बता दें कि वर्ष 1928 में आज के दिन ही ब्रिटेन की राजधानी लंदन में टेलीविज़न टेक्नोलॉजी के इतिहास में एक अहम उपलब्धि हासिल हुई थी। मशहूर स्कॉटिश आविष्कारक जॉन लॉगे बेर्ड ने पहली बार कलर टेलीविज़न का सफल प्रदर्शन किया। उस दौर की ब्लैक एंड वाइट ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी के मुकाबले इस प्रदर्शन को एक बड़ी कामयाबी माना गया था। आपको बता दें कि वर्ष 1972 में आज के दिन ही भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। आज का दिन था जब वर्ष 1999 में कुवैत में 50 सदस्यीय संसदीय चुनाव संपन्न हुए। वर्ष 2000 में आज के दिन ही लाइसिनिया करा से फिजी के अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। और आपको बता दें कि वर्ष 2004 में आज के दिन ही रूस की मारिया शारापोवा महिला विंबलडन टेनिस की चैंपियन बनी थी। वहीं भारत के अगर हिस्से से हम बात करें तो महेश भूपति और मैरी पियर्स ने विंबलडन टेनिस का मिक्स्ड डबल्स का खिताब आज के दिन वर्ष 2005 में जीता था। और आपको बता दें कि आज के दिन ही वर्ष 2008 में न्यूयॉर्क में दलितों का एक सम्मेलन शुरू हुआ था। फिलहाल आपके लिए प्ले करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक जिसको सुन करके आपकी मॉर्निंग और भी ज़्यादा गुड हो जाएगी। एंजॉय कीजिए इस बहुत ही प्यारे से ट्रैक को।

हर्षदों समय हो चले है अब जानी मानी हस्तियों को याद करने का। सबसे पहले आपको बता दें कि हम याद कर रहे हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को, जो कि भारतीय सेना के महान वीर अधिकारियों में से एक थे, जिन्हें नौशेरा का शेर भी कहा जाता है। उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना में अपनी सैन्य सेवा की शुरुआत की और देश के विभाजन के समय पाकिस्तान जाने का प्रस्ताव ठुकरा कर भारतीय सेना की सेवा करना चुना। और आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान युद्ध यानी कि जो 1947 और 48 के बीच हुआ था, उसमें उन्होंने नौशेरा और झांगर क्षेत्रों की रक्षा में असाधारण नेतृत्व और वीरता का परिचय दिया और दुश्मन के कई हमलों को फल किया। 3 जुलाई 1948 को जम्मू कश्मीर में मोर्चे पर लड़ते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए और वे युद्ध में शहीद होने वाले भारतीय सेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक थे। उनके अद्वितीय साहस और राष्ट्र सेवा के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज भी ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान भारतीय सेना में साहस, कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति के अमर प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। वहीं आपको बताते श्रोताओं की आज ही पुण्यतिथि है कैप्टन मनोज कुमार पांडे की, जो भारतीय सेना के एक अद्वितीय वीर अधिकारी थे। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया और बाद में गोरखा राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया और बचपन से ही उनका सपना था देश की सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना। करगिल युद्ध के दौरान बटालिक सेक्टर में उन्होंने असाधारण साहस, नेतृत्व और रण कौशल का प्रदर्शन देते हुए कई दुश्मन चौकियों पर कब्जा किया और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने साथियों का नेतृत्व जारी रखा और अंतिम क्षण तक लड़ते हुए 3 जुलाई 1999 को वीरगति प्राप्त की। उनके अद्वितीय शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारतीय सर्वोच्च सैन्य वीरता सम्मान यानी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आपके दोस्त आरजे निखिल के साथ में।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: हिमालय की गोद से लेकर
5: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
4: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
5: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
4: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
5: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
4: तो सुनना ना भूलें
5: रेनबो डेस्टिनेशंस
4: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
6: और श्रोताओं, आइए सुनते हैं विंबलडन पर हमारी खास अपडेट।
7: Wimbledon update from the BBC.
8: Hello, I'm Eddie Adidore.

और श्रोता, आपको बता दें कि आज जयंती है राजकुमार साहब की, जो कि हिंदी सिनेमा के सबसे आज पुण्यतिथि, आज आपको बता दें कि पुण्यतिथि है राजकुमार साहब की, जो हिंदी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली और दमदार अभिनेताओं में से गिने जाते हैं। और फिल्मों में आने से पहले भी मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे और अपनी गहरी आवाज़, प्रभावशाली संवाद अदायगी तथा अलग अभिनय शैली के कारण उन्होंने हिंदी सिनेमा में विशेष पहचान बनाई थी। उन्होंने वक्त, हीर रांझा, पाकीज़ा, मरते

दमतक और सौदागर जैसी अनेक फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई थी। और आपको बता दें कि अपने शानदार अभिनय से उन्होंने लोगों के दिल में ऐसी जगह बनाई कि उन्हें आज भी खूब याद किया जाता है। आपको बता दें वर्ष 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गाँव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए थे, लेकिन इस फिल्म में भी वे अपनी गहरी छाप छोड़ने में कामयाब रहे और इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर

आपको नाम बताए उनके, लेकिन कृष्ण सुदामा, नीलमणि, अनमोल सहारा, अवसर, घमंड जैसी भी उनकी कई फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर भले ही अच्छा प्रदर्शन ना कर सकें, लेकिन उनमें उनका उत्कृष्ट अभिनय हमेशा नजर आता है।

हर्षद, आपको बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं सरोज खान को, जो कि भारतीय सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली कोरियोग्राफर में से एक मानी जाती है। आज उनकी भी पुण्यतिथि है। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में काम शुरू किया था और बाद में नृत्य निर्देशन की फील्ड में खूब सारा काम किया और अपना नाम कमाया। उन्होंने लगभग 5 दशकों के करियर में 2000 से भी अधिक फिल्मों की कोरियोग्राफी की और माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, करिश्मा कपूर और ऐश्वर्या राय बच्चन जैसी अभिनेत्रियों की कई गीतों को यादगार बना दिया। उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 8 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आज भी उन्हें मदर ऑफ कोरियोग्राफी भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी कोरियोग्राफी की विशेषता भाव भंगिमाओं, शास्त्रीय नृत्य और अभिव्यक्ति का सुंदर मेल मानी जाती है। उन्हीं की फिल्म का एक गीत आपके लिए, रेनबो पर।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल 102.6। और आपको बता दें कि आज जन्मदिन है जाने माने गीत गायक अमित कुमार का, जो कि भारतीय सिनेमा के एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक, संगीतकार, अभिनेता और निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने बचपन में ही फिल्म दूर गगन की छाँव में अपने करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय किया था और बाद में पार्श्व गायक के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने हिंदी, बंगाली और अन्य भारतीय भाषाओं में हजारों गीत गाए और आर डी बर्मन, बाप्पी लाहिड़ी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तथा कल्याण जी, आनंद जी के साथ में खूब काम किया। उनके लोकप्रिय गीतों की हम बात करते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, याद आ रही हैं और रोज़ रोज़ आँखों तले जैसे गीत शामिल हैं। अपनी मधुर आवाज़, बहुमुखी प्रतिभा और लंबे संगीत सफर के कारण अमित कुमार भारतीय फिल्म संगीत के सम्मानित कलाकारों में से गिने जाते हैं। उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि वे बचपन में कोलकाता में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान गायन करते थे और बचपन से ही गाया करते थे। एक बार जब बंगाली अभिनेता उत्तम कुमार का एक प्रोग्राम चल रहा था तो मंच पर उन्होंने गीत गाने शुरू किए। लोगों ने उनसे ज़्यादा गीत गाने की मांग की और यही जानकारी उनकी माँ तक पहुँची। और जब उनकी माँ ने ये बात उनके पिता किशोर कुमार साहब को बताई कि आपका बेटा फिल्मी गीत गा रहा है, तो ये सुन करके किशोर कुमार ने उन्हें मुंबई बुलाया और आगे बढ़ाने में उनकी मदद की। फिलहाल उन्हीं का गाया हुआ एक गीत आपको सुनवाते हैं। इन्जॉय।

और श्रोताओं, चलते चलते आपको खेल जगत की कुछ जानकारी दे दें तो जानकारी ये है कि इंग्लैंड की महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के बीच में आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला संडे को खेला जाएगा लंदन में। और इससे पहले आपको बता दें कि इंग्लैंड की महिला टीम ने साउथ अफ्रीका की महिला टीम को दूसरे सेमीफाइनल में 40 रन से हरा दिया। उसके बाद उन्होंने फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 169 रन बनाए थे, जिसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो आपको बता दें कि उनकी पूरी टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 129 रन ही बना सकी थी। और वेस्टइंडीज़ और श्रीलंका के बीच में दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच एंटीगा में शुरू होने वाला है आज। और इस बीच में आपको ये भी बता दें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का दम देखने को मिला उस मुकाबले में, जिसमें पुर्तगाल ने रोमांच से भरपूर मुकाबले में क्रोएशिया को 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के अगले दौर में जगह अपनी पक्की कर ली है। तो फिलहाल खेल जगत की ये हलचल जिनके बारे में आपको जानकारी दी, अब मैं थोड़ी देर के लिए लूंगा आपसे अनुमति। आप बने रहें आकाशवाणी के FM रेनबो पर। रविंद्र आपके साथ हैं, बहुत ही जल्द जुड़ने वाले हैं। सुनते रहें रेनबो।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। निखिल अभी प्रस्तुत करके गए हैं, ये कार्यक्रम की शुरुआत तो निखिल ने कर दी है। अब हम कोशिश करते हैं आपको तेज रफ्तार से आगे ले जाने की, लेकिन सदी हुई बातें और सदी हुए जज्बात के साथ साथ बातें आपसे दिल से दिल तक होंगी, और सफर करते हैं शुरू आपके प्यारे से स्वागत के साथ।

भैया स्वागत तो हम आपका कर रहे हैं और इसके साथ ही स्वागत कर लीजिए मौसम का भी, क्योंकि मौसम मौसम मौसम पे कई सारे गीत भी बने हैं और मौसम की हमसे बात भी करते हैं। मौसम जब सुहाना होता है तो हम सबका दिल गार्डन गार्डन हो ही जाता है। और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर प्रोग्राम में जब हम बातें करते हैं तो दिल से दिल तक जाती हैं, है ना, तो दिल के तार झंझनाते हैं और इसके साथ साथ प्यारे प्यारे नगमे और जानकारियों का पिटारा होता है तो बस कहने का दिन बन जाता है। तो भैया राजधानी में अगले 3 दिन बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, इसलिए अपने आप को पूरी तरह से कमर कस लीजिए, क्योंकि मानसून धीरे धीरे करके एहसास करा रहा कि भाई आ गए हैं, स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। तो आपको बता दें कि इस बार मानसून अपनी सामान्य आगमन तिथि 27 जून की तुलना में थोड़ा 5 दिन देरी से पहुंचने की बात कही जा रही है, लेकिन मौसम विज्ञान ने यानी कि IMD ने यह कहा है कि 2021

इसके बाद ये पहली बार है जब मानसून ने जुलाई में दस्तक दे दी है। देखा भाई साहब, है ना, अब 2021 में मानसून 13 जुलाई को यहाँ पहुंचा था, लेकिन अब शुरुआत में ही आ गए भाई साहब। तो आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री तक पारा गिर जाएगा, यानी धीरे धीरे करके मौसम हमारे हिसाब से कूल कूल होने लगेगा। और शुक्रवार के लिए तो येलो अलर्ट जारी ही कर दिया गया है, तो इस अलर्ट पर आप भी अलर्ट रहिए, क्योंकि पारा रहने वाला है मैक्सिमम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। तो मौसम के इस मिजाज के साथ अपने मिजाज को भी भाई साहब बदल लो, है ना। वेलकम तो था ही, अब हमारी दिल्ली, प्यारी दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। और ये प्रोग्राम भी है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, जहां जहां है जिस कोने में हमारा गुड मॉर्निंग आप तक। और ये गीत जो ना दिल्ली के बिंदास मिजाज को बता रहा है।

दिल्ली और दिल वालों की दिल्ली तो है ही भाई साहब, लेकिन इसके साथ साथ जानकारियां भी चलती रहेंगी और जानकारियों के लिए हम ये आपको ये बताना चाहेंगे कि भाई साहब यूपी टेट की परीक्षाएं जो हैं शुरू हो रही हैं, हो चुकी हैं, उसके लिए अब जो है सुविधाओं का भी अंबार लगने वाला है। जो छात्र एक जगह से दूसरी जगह तक जाना चाहते हैं उनके लिए 8 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, तो आप तैयार रहिए क्योंकि सुविधाजनक होने वाला है आपका सफ़र। अगर आपका कहीं और परसेंटर पड़ता है तो यूपी टेट 2026 में शामिल होने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी सुविधा को ये ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे ने 2 और 3 जुलाई को 8 अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा

और रेलवे का यह भी कहना है कि परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की आवाजाही को देखते हुए ये विशेष व्यवस्था की गई है ताकि उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में परेशानी ना हो। और यूपी बोर्ड 2027 परीक्षा केंद्रों की भी बात कर लेते हैं तो वहां पर केंद्रों का चयन पहली बार पूरी तरह से ऑनलाइन है और प्रक्रिया 20 जुलाई से शुरू होकर 18 सितंबर तक पूरी होगी। ये हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड की जो परीक्षा केंद्र है उसको लेकर। तो है ना, आपके लिए काम की खबर, और काम की खबर है तो बस यही चलिए। कोई है जो सुनता है आपको, कोई है जो आपके जज्बातों का ध्यान रखता है, इसी तरह जो सुविधाएं आपको मिलती हैं उसका फायदा उठाइए, लेकिन संयमित बेहतर नागरिक होने के साथ साथ। और कहते हैं कि कभी कभी कुछ चीजें होती हैं, हमारी आवाज को कोई सुनता है, समझता है तो सब कुछ बेहतर होता है। एक और प्यारा सा गीत आपके लिए, थोड़ा सा सूदिंग, थोड़ा सा दिल में उतरने वाला, दिल की बात करने वाला।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

तो भाई साहब, हम कब कह रहे हैं, रुकने वाली तो कोई बात है नहीं और ना ही हम रुकने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सफ़र लगातार हमारा जारी रहेगा। और आप भी अगर कहीं सफ़र कर रहे हैं, ख़ासकर हम महिलाओं की बात करें, तो उनके लिए सफ़र अभी भी ये सुहाना बना हुआ है, क्योंकि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाई दिल्ली की बसों में अब पिंक कार्ड के ज़रिए जो है वो सफ़र किया जाएगा। तो पिंक टिकट पर महिलाओं का जो मुफ्त सफ़र है, ये अभी फ़िलहाल जारी रहेगा। राजधानी के करीब 14 लाख महिलाओं के पास पिंक सहले स्मार्ट कार्ड पहुंच गया है, और अब डीटीसी ने गुलाबी टिकट भी जारी रखने का ये निर्णय लिया है। और इसके चलते दिल्ली की बसों में फ़िलहाल जो बाहरी राज्यों से आ रही महिलाएं हैं, उनके लिए भी ये मुफ्त सफ़र जारी रहेगा। और बसों में 1 जुलाई से पिंक टिकट की बजाय सिर्फ पिंक स्मार्ट कार्ड से सफ़र की सुविधा दिए जाने की तैयारी कर रही थी, यानी जो स्मार्ट कार्ड है उसको लागू करने की बात चल रही थी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये सफ़र जारी रहेगा, और इसके लिए पिंक स्मार्ट कार्ड का जो वितरण किया गया था, बांटा गया था, वो भी तेज़ी से बांटा गया था, और इसके लिए निर्देश भी जारी किया गया था। लेकिन फ़िलहाल जो खबर सामने आई है, उसमें दिल्ली सरकार की ओर से पिंक टिकट को बंद करने का आदेश अभी तक तो नहीं मिला है, और जब तक सरकार इस संबंध में स्पष्ट निर्देश नहीं मिलेगा, तब तक पिंक टिकट पर मुफ्त सफ़र की सुविधा आपको मिलती रहेगी। आपके लिए फ़िलहाल राहत वाली खबर है, चाहे आप बाहर से आई हों चाहे यहाँ पर, आपका ये मुफ्त सफ़र जारी रहेगा। और कहते हैं कि सफ़र अगर बहुत आरामदायक होता है तो फिर कहने क्या, सब कुछ पूरा दिन बेहतर हो जाता है, और जहां आप जाना चाहते हैं पूरी मुस्कुराहट के साथ, पूरी एनर्जी के साथ पहुंचते हैं। तो फिलहाल अपना सफ़र जारी रखिए, क्योंकि ये खबर आपके लिए थी। और अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो फिर आपको पता ही है ना, सब कुछ आप ही हैं। और गीतों का सफर भी यूं ही जारी रहेगा, तमाम जानकारियों के साथ, जानकारियां जो आपके बेहद काम की हैं, है ना।

उम्मीद कर रहे हैं प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि जानकारियों के साथ साथ ये सफ़र गीतों का जो होता है ये बहुत खुशनुमा कर देता है सारे माहौल को। अगर हम कहीं बैठे होते हैं और लगता है कि भाई कहाँ चाहिए, तो ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि भाई ज़िंदगी में बहुत कुछ है ऐसा जो हमें खुश कर ही देता है ना। और वैसे भी मिलते जुलते रहना चाहिए, थोड़ा सा एक दूसरे से बातचीत करते रहना चाहिए, सफ़र बहुत आसान हो जाता है। और इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि इस एक घंटे के सफ़र में हम आपसे जितनी बात करना चाहें उतनी करते रहें और जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। फिलहाल एक जानकारी जो हमारे सामने इस वक्त मौजूद है वो है नीट और JEE से जुड़ी हुई, जिसमें कि ऐसा हो सकता है कि नीट JEE में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, और इस पर अभी विचार किया जा रहा है, क्योंकि ये पता लगा है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग दाखिलों की मेरिट में अब 12वीं बोर्ड में मिले अंक भी शामिल हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको विचार करना पड़ेगा जब तक आदेश नहीं आता, क्योंकि केंद्र उच्च स्तरीय समिति जो है बोर्ड परीक्षा के अंकों को 50% तक वेटेज देने का अभी सुझाव दिया है और अंतिम प्रस्ताव अभी सौंपा जाना बाकी है। अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा विद्यार्थियों के लिए। और इसके साथ साथ ये भी बता दें कि नीट पुनर्परीक्षा की जो नतीजे हैं वो 20 जुलाई तक आएंगे, तो आप इंतज़ार करिए। अगर आपने यहाँ पर मेहनत की हो और पूरी तरह से आप सचेत हैं तो फिर होना है ना सब कुछ बेहतर बेहतर। तो फिलहाल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA की तरफ से ये स्पष्ट भी कर दिया गया है कि मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया और शैक्षणिक सत्र में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी जाएगी, और 21 जून को ही जो पुनर्परीक्षा है उसमें 20 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे। तो फिलहाल सफ़र क्यों रुकना, सफ़र में रुकना नहीं है, चलते रहना है, संघर्ष चाहे जितने भी हैं। तो फिलहाल इंतज़ार एक तरफ परीक्षा का और एक तरफ शुभ संकेत का कि हो सकता है 50% जो अंक हैं बोर्ड परीक्षा के उसमें ऐड किया जाए, लेकिन सफ़र है तो इंतज़ार तो थोड़ा बहुत करना ही होगा। हमको भी इंतज़ार है, आपके प्यारे प्यारे संदेश जो हम तक पहुंच रहे हैं, आपकी वेल विशेस जो हम तक पहुंच रही हैं, और आपको गीत भी पसंद आ रहा है हम तक पहुंच रहे हैं, सब कुछ हम तक पहुंच रहा है, तो आप समझिए ना कि आपके दिल के तार हमारे दिल से जुड़े हुए हैं, और जब दिल के तार दिल से जुड़े होते हैं सब कुछ वधिया वधिया हो जाता है भाई, है ना। जुड़े रहिए FM रेनबो पर, कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र।

हाँ जी, गेटिगो गेटिगो, ये तो होना ही था। फिलहाल चलते हैं एक कदम और आगे और बता दें कि भाई, जो चूंकि हम स्टूडेंट्स के अभी हमने बात की, तो कुछ और बातें हम ऐसी बता देते हैं जो विद्यार्थियों के लिए बड़े काम के हैं, क्योंकि जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं DU में दाखिले के लिए, उनको भी उनके लिए भी अच्छी खबर है। यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2026-27 का शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया और इस वर्ष DU 73 स्नातक पाठ्यक्रमों और BA के 150 कार्यक्रम संयोजनों में से प्रवेश देगा। तो आप तैयार रहिए, क्योंकि 16 जुलाई से दाखिले शुरू हो जाएंगे, जबकि कक्षाएं 28 जुलाई से शुरू होने वाली हैं। तो अब तैयारियों का सफ़र, अब उन रास्तों पर चलने का सफ़र जो ज़िंदगी में हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं, और वो तभी संभव हो पाता है जब हम खुद से वादा करते हैं, है ना। जानकारी बेहतर लगी है तो वाजना आप कह दीजिएगा। मेरा भी वादा यही है, किसी किसी गीत की धुन जो है ना, वाकई दिल में उतर जाते हैं। खूबसूरत सा गीत सुनिए अर्णब चक्रवर्ती की आवाज में और श्रेया घोषाल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट

0: टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात।

0: 102.6 आपके लिए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

रखते हैं, तो हमारी भी कोशिश है कि आपकी मुस्कुराहट को बरकरार रखें और आपके दिन को और बेहतर बना दें। चलिए अब नॉक नॉक वाली जरा खबरें बता देते हैं, यानी दरवाजे पर जो दस्तक दे रही हैं, और छोटी छोटी खबरें लेकिन बेहद काम की खबरें आपके लिए हैं, तो तैयार हो जाइए। आप थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, क्योंकि अगर आपके काम की है तो ठीक है, नहीं तो आपके पड़ोसी की काम की हो सकती है, या फिर हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा सदस्य हो या रिश्तेदारों में ऐसा कोई हो जिसके काम की हो सकती है। तो ये संबंध जो पहली खबर हम बताने जा रहे हैं, ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर आप अब आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए तारीख भी जारी हो गई, क्योंकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के तहत जो है आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें अगर आप किसी का नामांकन कराना चाहते हैं या कोई अपने घर से किसी का नामांकन कराना चाहता है, तो इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई है। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी हासिल करनी है तो आप इसकी वेबसाइट awards.gov.in पर जाकर बच्चे का नामांकन कर सकते हैं और तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में जो पाठ्यक्रम है उसमें प्रवेश लेना चाहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई। अब जुलाई 2026 बैच के लिए बटकर्म अभ्यास में मूलभूत पाठ्यक्रम यानी BCSP में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई। और अधिक जानकारी आप पाना चाहते हैं तो संस्थान की वेबसाइट योगम डेनाई जो है उस पर आप .nic.in पर जा सकते हैं और यहाँ पर सारी जानकारी आपको उपलब्ध है। इसके साथ ही अगर आप शिकायत देना चाहते हैं NDMC से जुड़ी हुई, तो यहाँ पर NDMC 4 जुलाई को कन्वेंशन सेंटर में सुविधा शिविर का आयोजन करने जा रहा है। यहाँ पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक, यानी कि 10:30 मिनट से 12:30 मिनट तक ये शिविर आयोजित किया जाएगा। और इसमें बिजली पानी और NDMC से जुड़ी जो भी जानकारी है, जो भी कार्य है, उसके आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 4 जुलाई को ये शिविर लग रहा है, तो आप तैयार रहिए, क्योंकि ये जानकारियाँ इसलिए पहुँचा दी क्योंकि आपके आसपास अगर कोई शिकायत आप दर्ज कराना चाहते हैं या अपनी परेशानी कहना चाहते हैं, तो फटाफट यहाँ पर 10:30 मिनट से 12:30 मिनट के बीच आप जा सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और हम भी चलते हैं एक अगले गीत की तरफ, है ना।

गीत तो बजाना रहा है ना भाई साहब। अगर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, तो मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र, जो लेकर हाजिर हूं ये प्रोग्राम और आपको तमाम जानकारियां भी दे रहा हूं। आपके प्यारे प्यारे संदेश हम तक विशेष के मिल रहे हैं। आप भी भाई साहब इसी तरह खुश रखिए जिस तरह से आप संदेश भेज रहे हो। आप अगर मेरी मुस्कुराहट बरकरार

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ ऐसे दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आधार कार्ड है ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: तो भाई साहब आप सुनते रहिए क्योंकि ये तो 24/7 है, लेकिन हमारा सफर यहाँ पर मतलब समाप्त तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ हम ब्रेक लेने वाले हैं। आप फिर से मुलाकात होगी आज ही के दिन इसी समय, है ना, चिंता की क्या बात है। लेकिन आप मत समझिए कि कुछ रुकने वाला है, जीवन में कुछ भी नहीं रुकता और 24/7 में घड़ी की सुई जैसे चलती है ना, वैसे ही FM रेनबो पर प्रोग्राम भी चलते रहते हैं। निखिल भाई साहब आ गए हैं खिला खिला चेहरा लेके अपना और आपके दिन को बनाने के लिए नए पुराने गीतों के संगम के साथ, दिल के तराने, गाने नए पुराने।

और गीत गीत तो आप जानते हैं निखिल कैसे बजाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और हाँ फॉलो करते रहिएगा हमें भी FM रेनबो को भी।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।

और श्रोताओं, फिलहाल मेरे चलने का समय हो चला। आपको बता दें कि मेरे बाद लिपिका दास आपके साथ होंगे लेके मैचलेस म्यूजिक आर प्रोग्राम, उसके बाद रंजन अरनेजा आपके साथ होंगे लेकर के अगला प्रोग्राम। आप बने रहे रेनबो पर, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने इस संबंध में दोनों गुटों के दावों और आपत्तियों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋतव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के लिए विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि सुरक्षा जोखिमों के कारण मुस्तफा खामेनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 जुलाई से गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में और दूसरा टेस्ट 23 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: मॉर्निंग, नमस्कार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी और आपके साथ ये जो वाणी है इसे रंजन कहते हैं। आकाशवाणी का रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज। आज है फ्राइडे का दिन और फ्राइडे का दिन एक खास उमंग लेके आता है और वो उमंग ये है कि कभी मन कहता है कि भंवरे की तरह आप उड़ें या फिर पंछी बने, उड़ते फिरें मस्त गगन में। और फिल्मों से अगर आपका नाता है या आपको फिल्मों के गीत या अभिनय पसंद आता है तो आप बिल्कुल सही स्टेशन पर हैं, सही चैनल पर हैं। अनूप ये नूर, किसके चेहरे पर छाया है बताएं, बट आफ्टर दिस सॉन्ग सुनते रहें आकाशवाणी के संग।
1: उल्टे सुलटे
0: 90 वर्षों का ये सफर
1: दिल

ये नूर। उफ, ये नूर। और नूर तो आएगा ही चेहरे पे अगर आप रहते हैं खुश खुश और इस बात से खबरदार कि कौन सी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं। तो आज फ्राइडे है और फ्राइडे का दिन होता है हिंदी फिल्मों के, नई फिल्मों के रिलीज़ होने का। उसमें आज एक नाम जुड़ रहा है, अल्फा। नॉर्मली उसके लिए कहा जाता है जो ग्रुप का लीडर हो, या फिर यू नो मोस्टली इन टर्म्स एक जगह पे ये भी यूज़ किया जाता है, इन अ पैक ऑफ अ डॉग, यानी या फिर जो भेड़ियों का झुंड होता है उसमें एक अल्फा मेल होता है। प्रोबेबली दैट इज़ द मोस्ट कॉमन यूसेज जो मैंने सुनी है। लेकिन इसे यूज़ किया जाता है उसके लिए जो थोड़ा सा बिंदास हो, जिस तरह की फिल्म आपने पीछे एनिमल देखी थी जिसमें रणबीर कपूर को दिखाया गया था, वो तो थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वायलेंट चीज़ें दिखाई। पर अब आई डोंट नो, आजकल ये ऐसी फिल्में बन रही हैं और लोगों को पसंद आ रही हैं। खैर, अल्फा इस लीक हटके है, इसमें क्या क्या खास है ये सब बताऊंगा। और किसकी शादी की खबर आपको देनी है, जो पहले ही बताया था, बहुत दिन करीब आ गए हैं, तो नया सूट आपने सिलवाया कि नहीं, क्या कह रहे हैं, बुलाया ही नहीं है। चलो ये एंड लॉट्स मोर, इसका कारण भी बताऊंगा। मैं हूं आपके साथ रंजन, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।

ऑल अबाउट ऑर्डर शर्वरी स्टार और स्पाई थ्रिलर थ्रिलर अल्फा रिलीज होने जा रही है और स्पाई थ्रिलर है। जाहिर सी बात है, इसमें मार धाड़ बहुत है, एक्शन सीन्स है, इसके लिए बाकायदा बहुत सी ट्रेनिंग ली जाती है, बहुत आसान नहीं होता है। और देखिए, बॉलीवुड के भी तौर तरीके बदल रहे हैं, दिन बदल रहे हैं। इनफैक्ट पूरी दुनिया में एक नई किस्म की हवा चली है, जो ऐसे काम जो सिर्फ यू नो मर्दों के लिए सुरक्षित समझे जाते थे, महिलाएं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, उसी का एक प्रतिबिंब है ये मूवी अल्फा। वाह वाह, दिल खुश कर दिया। तो आप देखिएगा इसके अंदर, आपको आलिया को आपने कई रोल्स में देखा है, रोते हंसते और खिलखिलाते। उनकी बड़ी प्यारी मूवी आई थी शाहरुख खान के साथ, नाम मुझे याद नहीं, आपको ध्यान हो तो 9868107070 पर व्हाट्सएप कीजिएगा। और ये तो वैसे ही मैंने जानकारी मांगी, लेकिन बॉलीवुड सरताज भी तो आपको बनना है। अगर बनना है बॉलीवुड सरताज, तो आज का हमारा सवाल है कि फिल्म जो दिल चाहता है फिल्म आई थी, उसमें आमिर खान ने एक कैरेक्टर प्ले किया था, बस उसका नाम बता दीजिए। इट्स सो सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। हो सकता है हम आपको बना दें आज बॉलीवुड सरताज। आपने दिल चाहता है मैं आमिर खान के कैरेक्टर का नाम बताना है और हमें व्हाट्सएप करना है 9868107070 पर। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम हम बनाएंगे किसी एक लकी विनर को बॉलीवुड सरताज। आई विल पर्सनली कॉल यू। तो भूल जाइए शर्मलाज, रहिएगा फोन के पास, छोड़ के अपने काज, सुनिए मस्त रहिए आज। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स गल्ला गोरियां।

देखिए इनके लिरिक्स के अंदर थोड़ी सी वायलेंस है, जो नहीं समझ पाए मैं समझा देता हूँ। छना छना के तेरा पान दूंगा नाक, नाक तोड़ने की बात हो रही है बट एक बहुत डिसेंट तरीके में, ये मजाक है, ये आप समझा करें ना। ये बात

0: में रहना।
1: तो जिनको नहीं पता था, those who are not really that familiar with पंजाबी, तो मैं कहना चाहता हूँ, आज से पहले अगर आप ये गाना सुनते थे, आपको नहीं पता था ना ये बात हो रही है। मुझे याद आ गया फिल्म एनिमल का, और जैसे हमने अल्फा की बात की है, जो फिल्म बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखाते हैं, मार धाड़ दिखाते हैं, प्यार का वो स्वरूप जहाँ एक प्रेमी दूसरे के लिए वायलेंट हो जाता है, उसी को मजाक अंदाज में कहना या किसी को वार्न करना, छना छनक तेरा पान देगा नक। तो गानों के लिरिक्स के ऊपर थोड़ा गौर किया कीजिए। ये सारी जो इतनी सारी जनरल नॉलेज है बॉलीवुड फिल्म की लिरिक्स के बारे में, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स की लाइफ में क्या हो रहा है, ये सब जानकारियां आपको मिलती हैं कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड ट्रेल्स पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। हाँ, तो ये सारी जानकारी आपको हम देते हैं आकाशवाणी रेनबो पर, और भावनाओं को समझा करें। एंड वी एंटायरली टेल यू एंड रिक्वेस्ट यू कि वायलेंस अच्छी बात नहीं होती है, चाहे गानों में क्यों ना हो। खैर, हमने कहा कि आपने नया सूट सिलवाया कि नहीं सिलवाया, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आमिर खान की फाइनली शादी हो रही है परसों, दैट इज संडे, आज है 3 तारीख, 5 जुलाई को उनकी शादी जो है वो घर पे होगी। वो ऐसा कह रहे हैं कि छोटी सी शादी है। तो मैं एग्जैक्टली सोच रहा था, मैंने आपसे तो पूछ लिया कि आपने नया सूट सिलवाया कि नहीं सिलवाया, क्या आमिर ने सिलवाया कि नहीं सिलवाया, क्योंकि आई रियली फील हो सकता है कि वो जिस तरह के प्लाजो सा कुछ पहन लेते हैं, पजामा टाइप, और साथ में बड़ा रिलैक्स सा रहते हैं घर में, हो सकता है उसी तरह से उसी अंदाज में शादी हो जाए। इसके लिए और सारी जानकारी के लिए आपको इंतजार करने का पड़ेगा 5 जुलाई का। मैं हो सकता है वहां विटनेस करूं इस बात को, तो आपको बताएंगे आके लौट के। तब तक जुड़ रहे हैं आकाशवाणी रेनबो के संग, सुनते रहें बॉलीवुड ट्रेंड्स।

जी, अभी अभी लेटेस्ट खबर ये भी आई है कि जो धुरंधर फिल्म ने इतनी धमाल मचाई इंडिया इंटरनेशनल मार्केट में, अब धुरंधर जो रिलीज होने जा रही है 10 जुलाई को जापान में रिलीज होगी, तो रणवीर सिंह ने उसके लिए बाकायदा एक मैसेज भी, वीडियो मैसेज भेजा है कि सब लोग जापान में बड़े स्क्रीन पर थिएटर पर जाके इसको देखें। ऑब्वियसली जो इंडियन डायस्पोरा है जो जापान में रहते हैं वो लोग तो ज़रूर जाएंगे जाएंगे, एंड आई एम नॉट रियली श्योर, आई थिंक इट वुड बी अ डब्ड वर्जन या फिर सबटाइटल्स के साथ दिखाई जाती है। ये देखने के लिए मुझे जापान जाना पड़ेगा और उसके लिए जापान की टिकट कटानी पड़ेगी, तो इट विल टेक सम टाइम, आई मीन थोड़ा बजट भी देखना पड़ता है। खैर, शाहिद कपूर की मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि शाहिद कपूर एक नया प्रोजेक्ट उन्होंने साइन कर दिया, ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया है, एंड आई थिंक इट्स टेकन अ व्हाट यू कॉल एडवांस, पैसा भी ले लिया है। अदल बदल नाम है इसका, अक्टूबर से इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी, द फिल्म विल गो ऑन फ्लोर्स इन अक्टूबर, अक्टूबर अब ज़्यादा दूर नहीं है, बट क्या होता है ना कि सब कुछ एडवांस में चल रहा होता है, जैसे आप एडवांस बुकिंग करते हैं, एडवांस फिल्में देखने के लिए तैयार रहते हैं, धमाल के लिए बहुत से लोग तैयार हैं जो कुछ दिनों में आगे धमाल 4 आई थिंक रिलीज़ होने वाली है। सो और दिस एंड लॉट्स मोर, ये सभी खबरें आपके साथ हम करते रहेंगे शेयर, और चाहेंगे कि आप ना हो बोर इस गाने के बाद। एक बार फिर से पूछूंगा आपसे बॉलीवुड सरताज के लिए सवाल, तो जुड़े रहें, हो सकता है आप ही बन जाएं बॉलीवुड के सरताज।

0: हम सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, और बॉलीवुड ट्रेल्स में आपके साथ मैं हूं रंजन, और आकाशवाणी रेनबो का ये चैनल है। और हमारा सवाल बॉलीवुड सरताज का आपके लिए एक बार फिर से हाजिर है जनाब। जरा अगर आप पहले ही मिस कर गए हैं तो इस बार सुन लीजिए। हमारा आज का सवाल है कि दिल चाहता है फिल्म में आमिर खान साहब ने जो कैरेक्टर प्ले किया था फिल्म में, उस कैरेक्टर का नाम क्या था? अगर आपको पता है, नहीं पता तो उसे पूछ लीजिए। कोई आसपास नहीं है, आप अकेले हैं तो अपने फ़ोन के पास जाइए। यू नो व्हाट यू कैन डू, है ना, फ़ोन में बहुत पावर है उससे पूछिए और हमें लिख के भेजिए आकाशवाणी रेनबो पर। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। यहां लूंगा छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं। हो सकता है आपको बनाए आज हम बॉलीवुड सरताज, बट आपको जुड़ा रहना, अभी तो आधा ही सफ़र पूरा हुआ है और आधा थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। मिलते हैं इन जस्ट अ लिटिल व्हाइल।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं हूं आपके साथ रंजन, आकाशवाणी रेनबो पर। ये सफर जो जारी है, ये 90 सालों से शुरुआत हुई है इसकी, ये तो आप जानते ही होंगे, और लगातार ये आगे भी यूं ही चलता रहेगा। लेकिन कुछ सफर होते हैं जब आपको अपना हम सफर मिलता है वो ज्यादा लंबा नहीं खिंच पाता है। जैसे साल 2000 में ऋतिक रोशन ने शादी की और 2014 में उनका डाइवोर्स हुआ। मुझे याद है मैं तब भी प्रोग्राम कर रहा था, मैंने तब भी कहा था कि इतनी खूबसूरत जोड़ी सुजैन और ऋतिक की, क्यों अलग हो रहे हैं भाई, मत हो, तुसी ना जाओ, तुसी ना जाओ। हमने बहुत अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की थी एंड दे स्टिल लुक सो ब्यूटीफुल एंड गुड टुगेदर। लेकिन अभी हाल ही में कुछ एक ऐसी खबर आई है जहां सुजैन की सिस्टर ने एक बार फिर से बात दोहराई है कि देखिए, हम लोग भी ऐसी मीडिया में खबरें सुन रहे थे कि यू नो डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स के दौरान ऋतिक ने अपनी वाइफ को 400 करोड़ की रकम दी, ऑन दिस एंड दैट। कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। वैसे अगर दी भी तो मैं पूछता हूँ इसमें बुराई क्या है? इफ़ यू कैन अफोर्ड इट व्हाई नॉट स्पेंड इट। मतलब अरे भाई, हक बनता है उनका। आपने सुना नहीं, सात वचन में एक वचन ये भी होता है कि जो आपका है वो आधा मेरा है, पता है ना आपको? तभी तो मैं कह रहा था थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा बाकी। खैर, अब ये इसके पीछे वजह ये रही कि उन्हें पता चला 14 साल की मैरिज के बाद कि ये लोग कंपैटिबल नहीं है। ये इशू आजकल हर घर में कहीं ना कहीं आप देखिएगा, टीनेजर्स के साथ भी है कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज बहुत हो गए हैं। कई बार इंसान को लगता है कि दूसरा व्यक्ति उसको कंप्लीट करता है और थोड़े समय बाद उसको लगता है कि ये खुशी भी कुछ समय के लिए ही थी। तो इस क्षणभंगुर जीवन में क्या ढूंढे है तू? खुश रहे, खा दिन में अंगूर, क्या ढूंढे है तू? एक प्यारा सा शादी का विदाई का सॉन्ग आपके लिए।

देखिए, अब जब शादी का माहौल बन ही गया है तो हमने पहले सेलिब्रेशन के सॉन्ग सुनाए, अब हमने विदाई का सुनाया है। यहाँ पे जिक्र करना, मेरा मन, मैं रोक नहीं पा रहा खुद को, क्योंकि देखिए आमिर अपनी नई दुल्हन के साथ अपने घर में पहले ही गृह प्रवेश कर चुके हैं, तो ये रस्म वो कैसे निभाएंगी, डोली से कैसे घर ससुराल आएंगी, वो तो ऑलरेडी वहाँ है। एंड एक चीज़ और मैं गेस कर रहा हूँ, संडे की शादी में क्या शाहरुख, क्या सैफ, क्या सलमान, ये भी वहाँ इन्वाइटेड है कि नहीं, क्योंकि आमिर का पूरा बड़ा परिवार और खास दोस्त

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ग्यारह बजकर 46 मिनट हो गए हैं और मैं हूं आपके साथ। अब समय ज्यादा नहीं रह गया, इसलिए बहुत सारी चीजों को स्क्वीज इन करके आप तक पहुंचाना है, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है भाई। यही तो आपकी और हमारे इस प्यार भरे रिलेशन की ब्यूटी है। वाह। और आज देखिए, बॉलीवुड बर्थडे के अंदर आज हम मनाने जा रहे हैं तिग्मांशु धूलिया का जन्मदिन। आज 3 जुलाई है। ये 3 जुलाई 1967 में पैदा हुए थे। ये बहुत ही काबिल डायलॉग राइटर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, प्रोड्यूसर, एक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर रहे हैं। अगर इन्होंने अपने इनिशियल डेज के अंदर गैंग्स ऑफ वसेपुर के लिए, जो फिल्म ने बहुत धाड़ बिजनेस किया था, बहुत प्यारी मूवी बनाई गई थी, हाँ उसमें भी मार धाड़ है, क्या करें बॉलीवुड वाले सुधरते नहीं हैं। खैर, तो इस मूवी के लिए इन्होंने कास्टिंग से काम शुरू किया है एंड ही इज गिवन वंडरफुल मूवीज। बहुत सारी डायरेक्शंस भी इनकी रही हैं, जैसे पान सिंह तोमर में इन्होंने इसे आई थिंक स्क्रिप्ट लिखी है, डायरेक्ट भी किया आई थिंक। एंड नेशनल अवार्ड मिला इस फिल्म को 2012 में। साहेब, बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स को क्रिटिकली एक्लेम किया गया। और इसके अलावा ये खास बात यह है कि बहुत पढ़े लिखे, बड़े काबिल परिवार से आते हैं। पिताजी इनके जज रहे हैं, भाई इनके भी देश की सेवा में लगे हुए हैं और ये बॉलीवुड के माध्यम से देश की सेवा कर रहे हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी इन्होंने पढ़ाई की है। तो फिर तिग्मांशु धूलिया, आज के दिन हम आपको बॉलीवुड ट्रेल्स में आकाशवाणी रेनबो की तरफ से कहते हैं जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हमारा सवाल बस आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बॉलीवुड सरताज का हो सकता है आपका, सर पे पहनाएं हम बॉलीवुड का ये ताज और आपको बनाएं बॉलीवुड सरताज। आमिर खान के कैरेक्टर का नाम बताइए दिल चाहता है मूवी में। अपने फोन के आसपास रहिए, मैं थोड़ी देर में किसी एक को करूंगा कॉल। जुड़े हैं आकाशवाणी रेनबो के संग, सुनते रहें बॉलीवुड ट्रेल्स।

0: दिले नादान तू, दिले नादान तू वफादार हो जा। नहीं, गाना ये भी हो सकता था, मतलब सोच सोच का फर्क है भाई। बी पॉजिटिव एंड दैट्स जस्ट नॉट अ कलर, नहीं दैट्स जस्ट नॉट अ ब्लड ग्रुप। क्या बोल गया मैं भी बताइए। चलिए हमारे साथ हमारी बॉलीवुड सरदार जुड़ गई हैं। हेलो गुड मॉर्निंग।
1: हेलो गुड मॉर्निंग सर।
0: जी गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से फोन आपने रिसीव किया?
1: सर मैं ईशा धर्मशाला से बोल रही हूँ।
0: अरे वहाँ तो मौसम बड़ा होगा, बढ़िया होगा। कैसा मौसम है दिल्ली वालों को बताएं?
1: हाँ जी सर ठीक है, यहाँ पे जब बारिश हो रही है तो काफी ठंडा हो जा रहा है।
0: ओके अच्छा, आपने बताया कि भाई आमिर खान का जो फिल्म है दिल चाहता है में, उसका राइट आंसर बताया अपने मुंह से ही बता दीजिए, क्या नाम था उनका फिल्म के अंदर?
1: हाँ जी सर, उनका नाम था फिल्म में आकाश मल्होत्रा।
0: वाह जी वाह, आमिर की फैन है कि नहीं?
1: हाँ जी सर बिल्कुल।
0: अच्छा तो अब देखिए 5 तारीख को उनका ब्याह होने जा रहा है।
1: हाँ जी फिर से।
0: तो क्या अपने कुछ विचार रखिए इस पे?
1: मैं कुछ नहीं बोल सकती, बस नहीं
0: नहीं, नहीं देखिए जो फैन होती है ना उनका मोस्टली लड़कियों का ही होता है कि पहले ऐसा होता था कि हीरो मैरिड ना हो तो उनके मन में अच्छा लगता था कि यार ये एक अच्छा हीरो है, शादीशुदा हाँ भी नहीं है, हो सकता है कल को मेरा ही इससे कुछ यू नो बट हाँ वो दिन अब लद गए हैं और अब तो खैर ये हीरो तो खैर बहुत उम्र दराज हीरो हो गए हैं। आप बताइए आपके फेवरेट 3 हीरो के नाम बता दीजिए बस।
1: सर मेरे तो फर्स्ट नंबर पर ऋतिक रोशन।
0: ओके जिनके
1: पे सलमान।
0: ओके
1: और थर्ड में शाहरुख।
0: तीनों का ही हमने आज नाम लिया, अगर आपने प्रोग्राम गौर से सुना हो।
1: हाँ जी हाँ जी सर, मैंने सारा सुना था।
0: तो आप गेस करके बताइए बस, लास्ट बात पूछ रहा हूँ आपसे ईशा कि देखिए मैं गेस कर रहा हूँ कि आमिर के खास करीबी दोस्तों में सलमान शाहरुख अक्षय या फिर बाकी खान जो भी हैं ये लोग वहाँ होंगे शादी में, आपको क्या लगता है? जस्ट गेस।
1: मुझे नहीं लगता वो आएंगे।
0: ऐसा क्यों कह रही हो, दिल तोड़। चलिए ठीक है, आपके विचार हैं हम इस बात को मानते हैं। और तो वेट कीजिए, 2 दिन बाद जो भी होगा दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। टेक केयर, आज के लिए आप बनी बॉलीवुड सरताज, आपको मुबारक हो। ओके बाय बाय। तो ये थी ईशा हमारे साथ धर्मशाला से और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, दिल चाहता है से ही आपके लिए गाना उदित नारायण साहब की आवाज में, जाने क्यों लोग। प्यार करते हैं

रिया जाने क्यों जाने क्यों, there's so many questions और बहुत ही कम है जवाब। एक ऐसा ही सवाल इंदु अहलावत मुझसे पूछ रही हैं। सीरियसली इंदु जी, आप चाहती हैं इसका जवाब दूं? चलिए दे देते हैं। आपने पूछा है तो क्या आप भी क्या याद करेंगे। कह रही हैं जी आमिर की चौथी शादी कब होगी ये बताइए, सलमान की पहली होने के बाद। अब खुश हैं? अरे हमसे आपने सवाल पूछे हैं तो जवाब हमारे पास बड़े सारे हैं, क्योंकि ये है बॉलीवुड ट्रेल्स। और हम बताएं आपको बॉक्स ऑफिस में कि वेलकम टू द जंगल फिल्म 90 करोड़ का कलेक्शन कर पाई है अभी तक रिलीज के बाद। एंड आई थिंक उसकी कुछ व्यूअरशिप घट रही है, लोग उतना आ नहीं रहे हैं। बट मैंने भी नहीं देखी, मेरा एक पर्सनली बात हो रही थी, मेरे एक फ्रेंड ने देखी है। वो कह रहा है दिमाग घर छोड़ के जाएं तो आप मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो ठीक है, हर एक की अपनी अपनी पसंद है। इस तरह की मूवीज जिनको पसंद आती हैं जरूर देखें। फिलहाल मैं यहां से जाने की तैयारी कर रहा हूं स्टूडियो से, आपसे फिर मिलूंगा 1:02 के बाद। और कार्यक्रम रहेगा मेरे वाला सॉन्ग, तो जहां अपनी पसंद के गाने आप सुन सकते हैं। बहुत से लोगों ने सही आंसर दिए हैं, सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। रीज़न क्या है कि जिनको बॉलीवुड सरताज बनाया है उनका नाम ही तो लिया है, और क्या दिया है हमने उनको ये खिताब दिया है आज पूरे दिन के लिए, ईशा है बॉलीवुड सरताज। बाकी जिन्होंने भी सही आंसर दिया, पार्टिसिपेट करने की कोशिश की, आपका दिल से तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। यहां पर अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे होगी फिर से मुलाकात। तब तक दिल में इमोशन जलाए रखना, नहीं वो तो दिया जलाए जाते हैं। दिल में अच्छे अच्छे खुशनुमा इमोशन बनाए रखना, अपना प्यार यूं ही दिखाए रखना, और कहीं याद करो ना करो बस दुआओं में बसाए रखना। रंजन कहता है टेक केयर बाय बाय। अगला कार्यक्रम लिपिका दास के साथ, प्ले इट कूल, आई विल सी यू लेटर, बाय।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस न्यायिक क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं

हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड आफ्टरनून है जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप आज? और अगर हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं तो बहुत सही समय पर आपने ये समय निकाला है। देखिए, घर बार अगर कहीं आप हैं, बाहर नहीं गए और घर पे हैं, खाने की तैयारी हो रही है, तो जाहिर सी बात है पूरे परिवार में लोग कहते हैं कि मेरे वाला व्यंजन, मेरे वाली डिश ये बनाइएगा। बच्चों की पसंद कुछ और है, बड़ों की कुछ और है, बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी पसंद कुछ और है। आपकी पसंद क्या है ये जानने का सही मौका है और सही स्टेशन है, क्योंकि कार्यक्रम शुरू हो गया है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ रंजन। झटपट बताइए अपनी पसंद का गाना और मैं पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि किसी भी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपके लिए परोसने के लिए तैयार हो जाती है। तो फिर मनपसंद थाली के साथ, मनपसंद खाने के साथ अगर मनपसंद गाना भी आ जाए तो फिर क्या बात है। 9868107070 पर आप हमें कीजिए व्हाट्सएप। फिल्म का नाम लिखिए, गाने के बोल लिखिए, अपना नाम लिखिए और भेज दीजिए। बाकी सारा काम मैं करूंगा और मेरे साथ मेरे कुछ एलियन दोस्त। I'm just wondering, सोचिए जो हम रेडियो पे बात करते हैं, ये जो हमारे यू नो ट्रांसमीटर्स हैं, ये आप तक तो आराम से पहुंचते हैं, उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका निभाता है वो है एंटेना। क्या कहीं किसी दूर दुनिया से, दूर किसी अंतरिक्ष में कहीं कोई एलियन भी हमें सुन रहा होगा, तो उसकी पसंद का गाना भी आज बजाएंगे। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो।

में सुनाई देते हैं। और अगर आप इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो अपने स्मार्टफोन में हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एयर, और उसके बाद जुड़ जाइए आकाशवाणी के सभी रेडियो स्टेशन से। दूरदर्शन के सारे कार्यक्रम आप देख सकते हैं। तो फिर हमें अपने साथ लेके चलिए और आपकी पसंद के गाने तो हम बजाते ही रहते हैं, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। और जो गाना हम बजाने जा रहे हैं, जिसकी रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, वो हम पहले मैसेज पढ़ दें तो बेहतर रहेगा, नहीं तो कहीं मैसेज किसी लाइन में कहीं गुम ना हो जाए। नमस्कार, शुभ दोपहर, लिख के भेजा है दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम बाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। क्यों सर, कहीं गलती तो नहीं हमसे? जरवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से, ग्राम जसवाड़ी से। राइट सर, आप सभी के लिए एक नहीं है तो इतनी सारी जब आपने अप्रोच लगा दी, मतलब एक मैसेज में इतना ज्यादा नाम आपने लिखा है, तो मुझे लग रहा है कि भाई इतने सारे लोग एक साथ हमें सुनना चाहते हैं। जो गाना आपने रिक्वेस्ट किया है वो है रिमझिम रिमझिम, फिल्म का नाम 1942 अ लव स्टोरी। मेरा नाम रंजन रंजन, गाना रिमझिम रिमझिम, हमारा प्यारा स्टेशन आकाशवाणी रेनबो। यूं ही जुड़े रहें, रिक्वेस्ट करें, डिमांड करें, हमसे हक से मांगें। 9868107070 9868107070 9868107070 हमारा नंबर, भेजिए व्हाट्सएप।

तो भाई क्या सोचा आपने? अब आप डिमांड कीजिए, आप रिक्वेस्ट कीजिए, आप हक से मांगिए, क्योंकि हमारा ये प्यारा सा जो रिश्ता है आकाशवाणी का, ये दो तरफा है। यानी हम अपनी बात कहते हैं और आपकी बात सुनते भी हैं। जैसे अभी हमारे पास एडवोकेट रमन वार्ष्णेय, प्रवल रमन वार्ष्णेय ने अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हमारे पास मैसेज भेजा है। लिखते हैं, मुझे भागम भाग मूवी का सॉन्ग सुनना है। पहले इन्होंने ये लिखा, उसके बाद फिर ये थोड़ा विचार कर रहे थे, तो इन्होंने दो चॉइस लिखी हैं। कह रहे हैं या तो भागम भाग वाला गाना सुना दीजिए या टिप टिप वर्षा। आप देखिए, आपने टाइटल नहीं लिखा तो मैं ये जाहिर सी बात है समझता हूँ कि आप यही गाना सुनना चाहते हैं। भागम भाग फिल्म का टाइटल सॉन्ग आपके लिए आ रहा है, प्रबल रमन वार्ष्णेय जी। आप सभी सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग। 9868107070 पर व्हाट्सएप करना है, फिल्म का टाइटल लिखिए, नाम लिखिए, गाने के बोल एक आध लाइन लिखिए, अपना नाम लिखिए और भेज दीजिए हमें। दैट्स सो सिंपल।

रिया कभी तो शर्माएगी, कभी तो आएगी, कुछ ऐसा ही करती है बारिश हमारे साथ। अब दिल्ली में मानसून की जो छटा है, घटा है, वो बरसने के लिए तैयार है। बारिशों का दौर चालू होने वाला है दिल्ली के अंदर, स्पेशली मैं बात करूंगा क्योंकि हमें अफेक्ट करती है भाई। मज़ा आता है बारिश के अंदर, और एक चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो और बहुत सारे तरीके हैं, इस बारे में बात कही गई है, गरम गरम पकौड़े हो और दोस्तों का साथ हो। अब ये ज़माना ही बदल गया है, लोग सब ऑनलाइन तो कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए हम आपको मौका देते हैं 9868 10 70 70 पर आपने मैसेज करना है, अपनी पसंद का गाना भेजना। जैसे अब देखिए, प्रेमलाल वर्मा, निकेश धर्मेंद्र और ममता भाई वर्मा जी, आप ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से आपने लिखा है। आप ये भी बताइए कौन सा राज्य है, कहाँ से आपने हमें मैसेज किया, बड़ा खूबसूरत आपने।

गाना पसंद किया है, बेमिसाल फिल्म का, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, ये मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है। तो अभी हम सबके लिए हमारे प्यारे से इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग, हम सभी के लिए गाना जा रहा है। बहुत ही प्यारे तरीके से इसे फिल्माया गया है, बहुत ही सुंदर ये गाना है। इसमें एक छोटी सी टेक्निकल इशू है, मैं बताता हूँ। जब फिल्म बनी होगी तो जब वो एक दौर था जब फिल्म थी ये बनी और इसमें एक ट्रक चल रहा है, अगर आप फिल्म देखेंगे या गाना देखेंगे वो उल्टा आपको चलता हुआ दिखाई देगा, नोट कीजिएगा।

जी हाँ, मतलब मैं एक बात बता रहा था कि अगर कभी मौका लगे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे देख लीजिएगा गाना डाल के। जितनी मेरी याददाश्त मुझे बता रही है कि ये गाना मुझे बड़ा पसंद है, तो मैं खुद भी देखता रहा, सुनता रहा। तो मैंने एक दिन नोट किया कि एक पैन शॉट होता है कैमरा की लैंग्वेज में। ये 1982 की फिल्म इन्होंने लिखा है, आई थिंक उस दौर में डिजिटल नहीं था इतना, तो वो शॉट इतना अच्छा रहा होगा कि वो कैमरामैन उसको रखना चाह रहा होगा, या मतलब ऑब्वियसली डायरेक्टर या प्रोड्यूसर रखना चाह रहे होंगे, और उसमें सम हाउ एडिटर ने उसे उल्टा लगा दिया, यानी जो ट्रक सीधा जा रहा है वो पीछे की तरफ आ रहा है। वो बाकायदा एक पैन शॉट है वैली का, जिसमें बाकी सब बहुत खूबसूरती है, तो उस चीज़ को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। इसलिए कहते हैं कि अपने गुण देखिए व्यक्ति के अंदर, अवगुण मत देखिए, उसमें गुण देखिए। और ऐसे ही मैं गुण देखता हूँ आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस में। जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन एंड दीपांशु खोरवाल, इनकी एक खासियत है हमेशा बहुत बाकायदे से, सलीके से, करीने से, तरीक़े से 5 मैसेज लिखते हैं, स्टार्स उसमें लगाए हैं। क्या ये सितारे मेरे लिए लगाए हैं? मैं भी तो छोटा मोटा जगमगाता सितारा हूँ। 5 चॉइस देते हैं, बड़ा आसान काम हो जाता है। आपकी पहली चॉइस ही मुझे मिल गई और मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं वो प्ले करने जा रहा हूँ। उससे पहले कुछ एक लोग हैं वो मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं किसी भी गाने में हमारा नाम ले लीजिएगा या हमारी तरफ से कोई भी गाना बजा दीजिए। उनमें से एक नाम है बागेश्वर निषाद का, गोरखपुर यूपी से। तो बागेश्वर जी, ये गाना आपकी पसंद, तो आपके लिए भी हम ये प्ले कर देते हैं। लेकिन टेक्निकली ये

घोरवाल फैमिली के लिए है, और गाना है फ्रॉम द मूवी आराधना, और गाने के बोल हैं बागों में बहार है। ये क्यों नहीं बज रहा? क्योंकि हमने इसे चूज नहीं किया।

0: शुक्रवार है।
1: आज शुक्रवार है और आपका पसंदीदा कार्यक्रम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग, और आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं और बहुत से ही आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कहाँ चला गया, लिखते हैं भाई साहब आपकी आवाज़ गजब की है भाई, थैंक यू सो वेरी मच, हमें बड़ा अच्छा लगा आपकी प्यारी भरी ये बात सुन के। निम्बाराम गोदारा बिरलोका और नागौर राजस्थान से ये हमें लिखते हैं। ये कह रहे हैं जी गाने थोड़ा बरसात वाले कुछ भेजिए इनकी तरफ, कह रहे हैं हमारे काफ़ी गर्मी है, फसलें जल रही हैं, ऐसा कुछ लिखा है, बरसात करा दें। चलिए मैं ऐसी इच्छा रखता हूँ, अगर आपको बरसात चाहिए आपकी फसलों के लिए तो ऊपर वाला जल्दी से आपकी मुराद पूरी करे। कोई गाना तो ज़रूर बजाऊँगा जैसे बरसात वाला कोई और मेरे जहन में आता है, या आप लोग जिस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी मैंने फ़िलहाल एक किसी का गाना क्यों करके रखा है, और आप पूछेंगे कि भाई क्यों करके रखा है, क्योंकि कार्यक्रम ही यही है ना, क्यों करना पड़ता है। और गाना है सावली सलोनी तेरी झील सी आंखें, यानी आप सुनिए क्या गाना है। आपका मैसेज मुझे मिलते ही मैं आपका नाम ज़रूर पढ़ूंगा, क्योंकि बारिश में, मैसेजों की बारिश में या मैसेजों की बाढ़ में आपका मैसेज कहीं छुप सा गया है, पर आपका गाना मैंने रिक्वेस्ट जो आपने किया था ढूंढ लिया है जी। आपका नाम भी मिल गया, कोलार रोड भोपाल से राम बाबू मालविया, मनीषा मालविया, हम सब चोर हैं फिल्म का ये गाना सावली सलोनी।

0: अलका याग्निक और कुमार सानू साहब की आवाज में सावली सलोनी तेरी झील से आंखें। मुझे याद है मेरी मुलाकात अलका याग्निक जी से कुछ वर्षों पहले, और बहुत ही खूबसूरत आवाज, बहुत ही प्यारा अंदाज। अभी कुछ दिन पहले देखा कि उन्हें कुछ हियरिंग लॉस हो गया है, तो हम स्पीडी रिकवरी के लिए दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं कि अलका जी जल्दी चंगी हो जाएं और फिर से एक्टिव एकदम से गाने वाने गाएं, क्योंकि ये देखिए किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, तो ध्यान रखें बच्चे। स्पेशली ये कुछ वायरस रिलेटेड इशू होता है उससे उन्हें हुआ है, वरना कुछ लोगों को हियरिंग लॉस जाना ऊँचे गाने सुनने की वजह से भी। आजकल देखिए बच्चों को मना किया जाता है कि हाई वॉल्यूम पे हेडफोन्स लगा के या ईयरबड्स लगा के पूरा दिन ना सुना करें, बहुत कम टाइम के लिए हेडफोन्स का इस्तेमाल करें और ज़्यादा लाउड नहीं होना चाहिए, एक कारण वो भी है। यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौट के आएंगे, आप यूं ही जुड़े रहें आकाशवाणी रेनबो के संग।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
4: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

वेलकम बैक है जी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग आकाशवाणी रेनबो पर 102.6 मेगाहर्ट्ज़। और कार्यक्रम आपका अपना वही पसंदीदा रिक्वेस्ट बेस्ड सॉन्ग बेस्ड शो, वो कार्यक्रम जहां अपनी पसंद के गाने आप हमसे कह देते हैं बस, और फिर इंतज़ार करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उस इंतज़ार को ज़्यादा ना कराया जाए। जैसे अनुज राठी मेरठ से बड़ी देर से इन्होंने मैसेज बार बार रिपीट भी किया, 2-3 बार लिख दिया है। वैसे बहुत स्मार्ट लग रहे हो भाई ये वाइट टी शर्ट में आप। पहले तो भाई अनुज जी, माँ वैष्णो देवी के आप दर्शन करके, आपकी प्रोफाइल पिक पे देख के बता रहा हूँ, घर वालों के साथ गए थे, कैसे गए थे, किसी ने भेजा था, कुछ मन्नत है, कुछ हमारे साथ बताना चाहेंगे, है ना? एक मन्नत शाहरुख खान की है, एक मन्नत आपकी, वैसे वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो आप मुझे बताइए भाई, थोड़ा स्टोरी होनी चाहिए गाने के पीछे, जिनके लिए आपने अपनी फ्रेंड के लिए ये रिक्वेस्ट किया है, तो हम बजा देते हैं। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स में से एक ये है राजा हिंदुस्तानी फिल्म का। राजा हिंदुस्तानी फिल्म के बहुत से गाने हैं, जब भी मैं ये कार्यक्रम करता हूँ कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट इस फिल्म से जरूर आती है। और अगर आप अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ या पहली दफा इत्तेफाक हुआ है तो नमस्ते हाय जरूर लिख के भेजिएगा, हमें पता चलेगा कि कुछ नए लोग भी हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। 9868107070 हमारा नंबर है, इस पर आपने व्हाट्सएप करना है, फिल्म का नाम, गीत के बोल, अपना नाम, एंड यू जस्ट हैव टू रिलैक्स आफ्टर दैट, सेंड इट अक्रॉस। डिमांड कीजिए हुजूर, हक से मांगिए, क्योंकि ये है आपका अपना प्रिय स्टेशन।

जी, अब जब हम इन गानों में खो ही गए हैं, और जाहिर सी बात है मैं अपनी प्लेलिस्ट देख रहा हूँ, यानी जो गाने मैं बजा चुका हूँ उसको बाकायदा हमें डिटेल्स अपने हाथ से लिखनी भी पड़ती हैं, तो मैं देख रहा हूँ अलका जी, कुमार सानू, उदित जी, इनके गाने सारे हमने प्ले किए, कविता, कृष्णमूर्ति की आवाज़ भी आपने बीच में सुनी, लता जी, किशोर, सुरेश वाडेकर, इन सब का, और इसी दौर में हमें वापस आप लोगों को ये गाने पसंद आ रहे हैं। जैसा लिखते हैं पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, कह रहे हैं वेरी नाइस प्लेलिस्ट जी, मैंने नहीं बनाई सर, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है मतलब इसमें मेरी कोई बढ़ाई की बात नहीं है, ये तो आप ही लोग हैं जो तुरंत हमें सुन रहे हैं और अपनी पसंद के गाने हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, और वैसा ही आपने दो या तीन गाने लिखे उसमें से एक रिक्वेस्ट मैं आपकी ज़रूर प्ले करने जा रहा हूँ। पंकज जी, आपने मांगा है चालबाज फिल्म से ना जाने कहाँ से आई है, तो ये गाना बज रहा है आपकी पसंद का, खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, आप आकाशवाणी की महफिल में हैं। हमारा ऑन एयर ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, न्यूज़ ऑन एयर, उसको डाउनलोड कीजिए, उसके बाद हमारे सभी स्टेशंस को आप ट्यून इन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे एलियन दोस्त भी सुनते हैं, अरे ऐसा बोलने में क्या जाता है, सबको साथ लेके चलना है ना। तो हम ये कह रहे थे 9868 10 70 70 पर कीजिए व्हाट्सएप, जुड़ जाइए हमारे साथ, अपनी पसंद का गाना, फिल्म का नाम, गाने के बोल, अपना नाम भेज दीजिए मुझ तक, मैं हूं आपके साथ रंजन।

बहुत ही प्यारा गाना। ये वो दौर था जब इतने आइटम सॉन्ग्स नहीं होते थे फिल्मों में, ऐसे आजकल स्पेशलाइज्ड आइटम सॉन्ग्स होते हैं।

0: ए भैया, आपके गाने और आपके नाम जहाँ ज़रूर मैं साथ साथ पढ़ता जाता हूँ, क्योंकि किसी बहुत सारे, देखिए आपके बहुत सारे मैसेज आते हैं, सबकी रिक्वेस्ट हम नहीं ले सकते क्योंकि समय की मजबूरी रहती है, फिर भी कुछ एक नाम मैं यहाँ ज़रूर लूँगा। प्रेमचंद प्रेमी, मनोहर लाल गांधी, डॉक्टर प्रकाश गोगिया, विजय नारंग, सुरेंद्र खुराना, मोहम्मद सईद अब्बासी, कमलेश कुमार, चांद खान, मुर्तजा खान, ये एक ही मैसेज में इतने सारे इन्होंने नाम लिखे हैं। लोफर फिल्म का एक गाना सुनना चाहते हैं, मैं कोशिश करूँगा ढूँढूँ, दो चार यहाँ पे रिक्वेस्ट और जो लोगों ने भेजी हैं उनके नाम भी पढ़ दूँ क्योंकि मैं एक छोटी सी ब्रेक पर जाने वाला हूँ। नमस्कार लिख के भेजा है, शुक्रिया लिखा है इनका, हो सकता है मैंने गाना बजा दिया हो, थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। अभी इसमें कहना पड़ता ना, कल को हमें भी आपसे सॉरी ना मांगनी पड़े, समझा करो। वरुण वैष्णई वार्षणई लिख रहे हैं अलीगढ़ से, गुड आफ्टरनून सर जी। और अमरनाथ, श्री अमरनाथ यात्रा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी, सभी लोगों को। कैलाश खेर का इन्होंने एक गाना रिक्वेस्ट किया है, बम लहरी, मैं देखता हूँ मेरे पास होगा तो ज़रूर प्ले करूँगा। फिलहाल लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक, लौट के आएंगे और आपसे जुड़े रहेंगे। कार्यक्रम है मेरा वाला सॉन्ग।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मैं कोशिश करांगा जी, वीर जी हरिओम जी, मैं थोड़े पसंद का गाना प्ले कर सका, बट पहले ही कुछ एक रिक्वेस्ट आई हुई है, उनको भी हमने साथ साथ, मैंने क्योंकि मैंने ऑन एयर कह दिया है तो मुझे उसको ऑनर करना पड़ेगा, क्योंकि आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि क्यों भाई गाना क्यों किया है, इसलिए आपके लिए प्ले करेंगे। कैलाश खेर साहब की आवाज में बम लहरी जा रहा है, अभी पीछे मैंने बताया जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी। यूं ही सुनते रहें मेरा वाला सॉन्ग आकाशवाणी रेनबो पर।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग। अब देखिए, समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, लेकिन जितनी रिक्वेस्ट हो सकेंगी ज़्यादा से ज़्यादा आई ट्राई टू स्क्वीज़ इन। जैसे अगला गाना हमारे पास रिक्वेस्ट किया है, हौले हौले गाना रब ने बना दी जोड़ी से, और पुनीत रावत हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया, ऋषिकेश से लिखते हैं। और एक गाना और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है, वो तो मैंने आपका मैसेज देखा ही नहीं सर। देखिए क्या होता है, आप एक से ज़्यादा मैसेज लिखते हैं तो पहले नज़र जिस पे गई वो हमने खोजा, और ये गाना बड़ा प्यारा है, मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट है। तो फिर आप और मैं मिलके पुनीत रावत उड़ाते हैं इस गाने की दावत, और बाकी सब लोग भी, क्योंकि खाने का टाइम है भाई, भूख लगी हुई है। 2 बजे के टाइम लोग लंच करते हैं आमतौर पे। एंटरटेनमेंट की दावत आपके साथ आकाशवाणी रेनबो पर, सुनते रहिए मेरा वाला सॉन्ग।

चलिए जी, अब जाने का समय हो गया, क्योंकि देखिए हमें ये इशारा मिल जाता है, अगली आरजे आ गई हैं ज्योतिका सिंह, वो आशियाना में आपके साथ रेनबो डेस्टिनेशन में रहेगी आज, और कहाँ की सैर कराती हैं उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। बस जाते हुए आपको आखिरी गाना मेघा रे मेघा रे रिक्वेस्ट किया है, वो हम आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं, और आपका नाम भी मैं पढ़ दूँ। अच्छा, आप नाम नहीं लिखती हैं या लिखते हैं? आप सिर्फ एक गुलाब भेजते हैं, नमस्कार का इमोजी हमने एक्सेप्ट कर लिया, और मुझे रांझना सर आप लिखते हैं बड़े प्यार से, जब भी कार्यक्रम में हम आपका ये मैसेज देखते हैं तो हम इसी तरह रहेंगे। कोई बात नहीं, आप नाम मत अपना जाहिर कीजिए, आपकी पसंद का गाना जा रहा है। बाकी सब लोगों का मैसेजेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाज़त, यहाँ पर रंजन कहता है अलविदा बाय बाय। जाते जाते एक आध नाम और पढ़ दूँ, फारुक अली का भी मैसेज मेरी नज़रों के सामने है, और खंडवा हसनपुर गांव से इन्होंने, इनका मेरे ख्याल से मैंने गाना प्ले भी किया था कि नहीं रह गया तो अगली बार सही। और सुखलाल बाला वेस्ट बंगाल से, सभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो और मैं हूं आपकी दोस्त ज्योतिका। स्वागत है आप सबका रेनबो डेस्टिनेशन में। आज हम चल रहे हैं एक ऐसे शहर की तरफ जहां वक्त सिर्फ गुजरता नहीं महसूस किया जाता है, जहां सुबह सूरज से पहले गंगा के किनारे जगती है और शाम दियों की रोशनी में दुआ बन जाती है। ये है वाराणसी, बनारस या आप इसे काशी भी कह सकते हैं। कहते हैं दुनिया के सबसे प्राचीन और लगातार बसते हुए शहरों में से ये एक है। यहां हर गली एक कहानी सुनाती है और हर घाट एक नई सोच दे जाती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं बनारस के रंगों के साथ, सुरों के साथ और उसकी रूहानियत के साथ।

दोस्तों, अगर किसी ने मुझसे पूछा कि बनारस का सबसे खूबसूरत वक्त कौन सा है, तो मेरा जवाब होगा सुबह ए बनारस। जी हाँ, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेनबो डेस्टिनेशन विद मी ज्योतिका, और आज हम बात कर रहे हैं बनारस की। सोचिए, आसमान अभी पूरी तरह रोशन भी नहीं हुआ, गंगा का पानी बिल्कुल शांत है, हल्की सी ठंडी हवा चल रही है, और धीरे धीरे सूरज की पहली किरणें गंगा पर मानो जैसे सोना बिखेरने लगती हैं। इसी वक्त अगर आप एक छोटी सी कश्ती में बैठकर घाट के पास या घाट के सामने से गुजरें, तो बनारस अपनी असली पहचान दिखाता है। यहां लगभग 80 से ज्यादा घाट हैं, और हर घाट की अपनी एक कहानी है। 80 घाट की सुबह योगा और आप कह सकते हैं क्लासिकल म्यूजिक के लिए मशहूर है। दशाश्वमेध घाट अपनी भव्यता के लिए, और कुछ घाट ऐसे भी हैं जो हमें जिंदगी और उसके सफर के बारे में गहरा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बनारस की पता है सबसे खास बात यह है कि यहां कोई जल्दी में नहीं दिखता। सबके पास बहुत वक्त है, क्योंकि सुकून है खुद के लिए, दुआ के लिए, और गंगा को बस चुपचाप देखने के लिए। और शायद इसीलिए कहते हैं कि बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है। बने रहिए मेरे साथ सिर्फ यहां, रेनबो डेस्टिनेशन विद मी ज्योतिका।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
3: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो और शो का नाम है रेनबो डेस्टिनेशन। दोस्तों, बनारस की रूह को महसूस करना हो तो सबसे पहला नाम आता है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। अगर आप भी बनारस की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो पहुंचना, मैं बता दूं, यहां काफ़ी आसान है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के कई बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता से वेल कनेक्टेड है। अगर आप ट्रेन से सफ़र पसंद करते हैं तो वाराणसी जंक्शन, बनारस रेलवे स्टेशन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से भी यहां पहुंचा जा सकता है। रोड की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों से रेगुलर बस सर्विसेज और हाईवेज के थ्रू आसानी से आप यहां पहुंच सकते हैं। और वहीं मंदिर की अगर मैं आपसे बात करूं तो मंदिर के आसपास की गलियां बहुत पतली हैं, इसलिए गाड़ी थोड़ा पहले ही पार्क कर लीजिएगा। पैदल चलना या ई रिक्शा लेना सबसे ज़्यादा यहाँ कन्वीनियंट है। और फिर शाम होते ही दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती, सच मानिए ये सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती है। अगर आप आरती देखने जा रहे हैं तो थोड़ा जल्दी पहुंचिए ताकि आपको अच्छी जगह मिल सके। अगर मौका मिले तो कश्ती से आरती देखना भी आपको याद रहेगा हमेशा।

बनारस की खूबसूरती सिर्फ उसकी आस्था तक सीमित नहीं है। शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है सारनाथ, जहां भगवान बुद्धा ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ का शांत माहौल, धार्मिक स्तूपा और म्यूजियम हर उस मुसाफिर को पसंद आता है जो हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी में दिलचस्पी रखता है। अगर आप बनारस में 2 या 3 दिन का सफर प्लान कर रहे हैं, सो लेट मी टेल यू, 1 दिन सारनाथ के लिए जरूर रखिएगा। वैसे बनारस घूमने का सबसे आसान तरीका है ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा या आप साइकिल रिक्शा भी ले सकते हैं। पुराने शहर की जो गलियां हैं बड़ी पतली संकरी होती हैं, तो गाड़ियां वहां अंदर तक जाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अपना जो बैकपैक है उसको हल्का रखिएगा और कंफर्टेबल फुटवेयर हमेशा काम आता है। एक और छोटी सी ट्रैवल टिप दे दूं आपको, बनारस को जल्दी जल्दी कवर मत करना। इस शहर का असली मजा तब आता है जब आप थोड़ा रुकते हैं, घाट पर बैठते हैं और बिना किसी जल्दी के इसकी रफ्तार को महसूस करते हैं। बने रहिए यहां रेनबो डेस्टिनेशन में।

अब बात करते हैं बनारस के स्वाद और रंगों की। सुबह की गर्मा गर्म कचौड़ी सब्जी, मीठी जलेबी, ठंडी लस्सी और आखिर में मशहूर बनारसी पान, ये सब इस सफर को और भी यादगार बना देते हैं। शॉपिंग के अगर आप शौकीन हैं तो बनारसी सिल्क साड़ी यहाँ से ले जाना मत भूलिएगा। इनकी खूबसूरत बुनाई और कारीगरी की तारीफ पूरी दुनिया करती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बनारस आने का सबसे अच्छा मौसम कौन सा है, तो मैं बता देती हूँ, अक्टूबर से मार्च का जो मौसम है सबसे सुहाना माना जाता है। इस दौरान घूमना भी आसान रहता है और सुबह के जो बोट राइड्स हैं और शाम की गंगा आरती का आनंद भी और ज्यादा आता है। एक और छोटी सी बात, अगर आप किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर जाते हैं, विजिट करते हैं, तो वहाँ के नियमों का और परंपराओं का सम्मान जरूर कीजिएगा। इसी में सफर की असली खूबसूरती है।

और दोस्तों, इसी के साथ बनारस का हमारा सफर यहीं समाप्त होता है। आज हमने देखी सुभाय बनारस और महसूस की गंगा आरती की दिव्यता। घूमने तो हम सारनाथ पहुंच गए थे उस शांति में, और ये भी जाना कि इस शहर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। साथ ही कुछ छोटी छोटी ट्रैवल टिप्स भी मैंने आपके साथ शेयर करी, ताकि जब आप बनारस आएं तो सफ़र और भी सुहाना बन सके। क्योंकि बनारस उन शहरों में से है जहां हर मुसाफिर अपनी एक अलग कहानी लेकर लौटता है। कोई यहां आस्था ढूंढने आता है, कोई इतिहास, कोई संगीत, और कोई बस कुछ पल की सुकून भरी खामोशी। मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे थे रेनबो डेस्टिनेशन, सिर्फ आकाश वाणी FM रेनबो पर। और अब इस धुन के उस पार आप सुनेंगे हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। मेरी मुलाकात होगी आपसे अब 4 बजे अल्फा जन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नए सफर प्लान करते रहिए, और याद रखिए, मंजिल खूबसूरत हो या ना हो, सफर हमेशा दिल से कीजिए।

0: पतंग। CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
3: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा, चलिए श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है
3: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
2: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
3: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
2: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
3: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
2: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
3: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
2: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
3: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है
2: जी।
3: लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
2: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की। लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
3: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
2: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
3: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
2: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
4: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
5: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
6: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
7: हाँ, 2000 साल पहले।
8: नानी माँ।
9: हाँ निधि।
8: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
9: अरे यहीं हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
8: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
9: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
8: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
9: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
8: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
9: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
8: नाना नानी के शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
9: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
8: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
9: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
8: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
9: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्ववेत्ता है ना?
8: मामा जी, मामा जी।
4: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
8: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
4: ये तो बहुत अच्छी बात है
8: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
4: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
8: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
4: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
8: अच्छा, भोज वृक्ष।
4: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल

0: दीवार पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
1: पांडुलिपि ये हमें कहाँ मिली है
0: निधि? ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
1: अच्छा,
0: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
2: ये किस भाषा में है?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
2: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
0: हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
2: अच्छा।
0: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
2: अच्छा।
0: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
1: अच्छा।
0: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
1: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
1: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
1: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
2: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
2: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
4: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता

0: आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
1: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कारंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ दिन यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं, इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूं, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूं, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा वाह, और
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की इस हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गा

0: पति भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
1: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
2: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कार्यों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
1: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
2: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
0: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनके समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
3: अलख निरंजन।
4: साधु बाबा।
3: अब अच्छा,
4: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
3: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
4: क्या?
3: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
4: है?
3: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
4: अच्छा?
3: हाँ,
4: बहुत बड़ी फौज है।
3: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
4: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
3: अच्छा,
4: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
3: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
4: बिल्कुल है।
3: और भगवान ना करें कोई

0: सारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए
1: तो
2: उसका भी इंतजाम है।
0: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी।
1: देखो है? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
0: नहीं नहीं, अच्छा किसी से नहीं कहेंगे?
1: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
0: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
1: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे, उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनु, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालूं रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनु।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनु बेटा, तू अपनी कटार मुझे दे।
3: रानी माँ,
4: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।

0: और श्रोताओ, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार। उमंग।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे।

0: की नहीं आत्मविश्वास की भी पहचान होती है। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और मैं हूं आपकी मेज़बान शिल्पा गुप्ता। एक सवाल जो मैं अपने श्रोताओं से करना चाहूंगी कि हम रोज़ अपने चेहरे की तो खूब देखभाल करते हैं, लेकिन क्या हम अपने दांतों का भी उतना ही ध्यान रखते हैं? अक्सर जवाब होता है नहीं। और फिर छोटी सी लापरवाही, कभी कैविटी, कभी मसूड़ों की बीमारी, तो कभी दांत खोने जैसी समस्या का कारण बन जाती है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज आधुनिक डेंटल ट्रीटमेंट और डेंटल इम्प्लांट इन समस्याओं का प्रभावी समाधान बनकर सामने आए हैं। हमारे आज के रेडियो डॉक्टर का विषय है डिफेंडिंग योर स्माइल, यानी अपने दांतों की देखभाल कर हम अपनी मुस्कान बनाए रख सकते हैं, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दंत विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा गुप्ता, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्थोडोंटिक्स, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और साथ हैं डॉक्टर हरमीत सिंह, डेंटल स्टाफ सर्जन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: थैंक यू जी, थैंक यू।
0: दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम फ़ोन इन प्रोग्राम है, जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा फ़ोन नंबर है 2342-1080, 2342-1082। अगर आप दिल्ली से बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868-107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ। आज हम बात करेंगे डिफेंडिंग योर स्माइल पे, यानी मुस्कान को खूबसूरत बनाए रखने के लिए दांतों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो डॉक्टर हरमीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मौखिक स्वास्थ्य को क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और ये बाकी स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है?
1: देखिए, मौखिक स्वास्थ्य जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम जानते हैं कि ओरल हेल्थ इज़ अ मिरर इमेज ऑफ जनरल हेल्थ, मीन्स अगर मुख स्वस्थ तो जनरल हेल्थ भी स्वस्थ रहेगी। तो इसके लिए आपको, अगर आपके माउथ में कोई भी इन्फेक्शन या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाकी जनरल हेल्थ भी ठीक रह सकती है। जैसे कि ये एक गेटवे है, ओरल कैविटी जो है गेटवे है टू द एयर एज वेल एज टू द फूड। सो एनी इन्फेक्शन इन द ओरल कैविटी और क्रोनिक इन्फेक्शन इन द कैविटी, इट कैन इन्फेक्ट द थ्रोट, द लंग्स, इट कैन इन्फेक्शन कैन गो टू द लंग्स और इट कैन गो टू द इंटेस्टाइन ऑल्सो। सो ओरल कैविटी की जो केयर है बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ओरल कैविटी में जो डेंटिस्ट जो है स्पॉट कर सकते हैं कि अगर उसको कोई जनरल बीमारी तो नहीं है, कोई क्रोनिक बीमारी तो नहीं है। जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, उसमें ड्राई माउथ हो जाता है, और किसी को ल्यूकीमिया है या HIV एड्स है, उसके साइन एंड सिम्टम्स मुँह के अंदर दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ओरल कैविटी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और आप जानते ही हैं कि पुराने ज़माने में जब डॉक्टर के पास जाते थे तो वो सबसे पहले किसी को फीवर है, कोई भी बीमारी है, तो मुंह खोल करके टॉर्च से चेक करते थे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ओरल कैविटी, जिससे हमारे जनरल हेल्थ के बारे में पता चलता है।
0: तो डॉक्टर रेखा, आपसे जानना चाहेंगे कि आम तौर पर ओरल डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं?
2: ओरल डिजीज बहुत तरह के होते हैं, जो कॉमनली नॉर्मल लैंग्वेज में, जैसे हम पाइरिया से अगर शुरू करें, जिसको कि हम, जो मसूड़ों की बीमारी है एक तरह से, जो हड्डी तक भी जा सकती है अगर सही समय पे उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए। इसके अलावा दांतों में कीड़ा लगना, तो अगर हम एक मोटे मोटे तौर पे बात करें, देखिए मुंह के अंदर दांत है, हड्डी है, मसूड़े हैं और उसके आसपास हमारे गम सॉफ्ट टिश्यू है, जैसे कि चीक और टंग। तो कोई भी बीमारी जो इससे रिलेटेड है, तो हार्ट टिश्यू को अफेक्ट करने वाली डेंटल केरीज, जैसे मैंने कहा दांतों में कीड़ा लगना, सॉफ्ट टिश्यू यानी मसूड़े को अफेक्ट करने वाला या गम्स को अफेक्ट करने वाला पायरिया या जिंजिवाइटिस या पेडोंटाइटिस जिसको बोलते हैं, जिससे मसूड़ों की सूजन, खून आना, दर्द होना, दांतों का हिलना, हड्डी का गलना, ये सब शुरू हो सकता है। देन कहीं पर देखा गया है कि जीभ और जो आपके गाल का टिश्यू है, बकल म्यूकोसा, उसके ऊपर कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, खासकर तंबाकू खाने वाले लोग या बीड़ी पीने वाले लोग, उनमें कई तरह के वाइट लीजन्स और इस तरह के प्री कैंसरस लीजन्स भी देखे गए हैं। सो बहुत किस्म की बीमारियां मुंह में देखी जा सकती हैं। और जैसे डॉक्टर हरमीत ने अभी कहा कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद से मुंह की बीमारी नहीं है, शरीर में कुछ बीमारियाँ हैं बट जिसके लक्षण मुँह में देख सकते हैं।
0: बातें हम इस पर और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: मुस्कुराने की वजह तुम हो। इसी मुस्कुराहट को बनाए रखने के लिए दांतों को सुरक्षित रखना बेहद ज़रूरी है। आज हम बात कर रहे हैं डिफेंडिंग योर स्माइल पर। तो डॉक्टर रेखा, आपसे जानना चाहेंगे कि किन शुरुआती लक्षणों को देखकर हमें लगता है कि हमें डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए, डॉक्टर के पास इमिडिएटली जाना चाहिए। कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं
1: जी, कुछ जिनको हम अलार्मिंग सिस्टम कह सकते हैं। सो शुरुआती लक्षण जैसे कि इट कुड बी एज स्मॉल एज मुंह से बदबू आना, या मसूड़ों में ब्रश करते हुए खून आना, या फिर ठंडा गर्म लगना। ये बहुत सारी बीमारियों के

0: शुरुआती लक्षणों में आते हैं, और अगर इन्हें इसी समय पे इस पे ध्यान दिया जाए और ट्रीटमेंट किया जाए तो हम बीमारियों को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो कहीं भी किसी तरह की स्वेलिंग हो, खून आ रहा है, दर्द कर रहा है, कहीं आपको सूजन दिख रही है, कहीं काला काला कुछ, मतलब जैसे केरीज अगर नहीं पता लगता कुछ तो उसका दिखने में दांत का कलर बदलता हुआ दिख रहा है, कोई दांत हिलना शुरू हो जाता है, मसूड़े फूले हुए या लाल नज़र आते हैं, सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स, कॉमन सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स। तो ऐसा कुछ भी आपको अगर अपने मुँह में दिखता है तो आपको डॉक्टर को जाके इमीजिएटली दिखाना चाहिए।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: हाँ जी, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: हाँ, सबसे पहले तो एंकर में दोनों डॉक्टर साहिबान को नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी, मेरे चार सवाल हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि जो कई शख्स ऐसे होते हैं उनके मुँह में जो है वो दांतों के बीच में गैप होता है स्पेस, और कई होते हैं उनके बीच में नहीं होता, और किसी के मुंह में 28 दांत होते हैं, किसी के मुंह में 32 दांत होते हैं, तो इसमें मतलब इंसान की शख्स की अपनी कोई प्रॉब्लम होती है कि ये विरासत में माँ बाप की वजह से मिलता है, ऐसा कुछ क्या है, मतलब ये मिथ दूर करें। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप कह रहे हैं कि टोबैको नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, पर जो हमें अच्छे अच्छे गीत सुनने को मिलते हैं, गजलें, कवालियाँ या ये गजलें, ये कविताएं, तो जितने शायर होते हैं ये तो बगैर तमाऊ खाए सिगरेट पिए ये काम करते ही नहीं, तो आप इनको क्या परामर्श देना चाहेंगे? तीसरा सवाल मेरा ये है कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो होते हैं वो दांतों की एक्सरसाइज के लिए माउथ की, मुंह की, जबड़े की और बसूड़ों की वो च्युइंगम का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है? और चौथा सवाल ये है कि ये जो आपका मौलाना अबुल कलाम डेंटल सेंटर है इसका टाइमिंग क्या है, और आप दांत जो रीप्लांट करते हैं उसमें समय प्रसर क्या था, कितना समय लगता है, और ये है कहाँ पर, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, तो जरा ये बताएं, प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी।
3: हाँ, बहुत सारे सवाल कर दिए एक ही बार में आपने। तो पहला सवाल जो आपका ये था कि आपके दांतों में गैप है, तो ये डिपेंड करता है एज के हिसाब से। अगर तो छोटे बच्चों में है वो तो नॉर्मल ही होता है दांतों के बीच में गैप, अगर कोई बड़े हैं उनके दांतों के बीच में गैप है तो जनरली मसूड़े कमज़ोर होने की वजह से दांत जो है फ्लेयर कर जाते हैं, तो उसकी वजह से गैप आ जाता है। तो मेन है कि आपको अपने मसूड़ों का केयर करना है, मसूड़ों को टाइट करना है कि जो दांत फ्लेयर हो गए हैं और फ्लेयर ना हो, उसको प्रिवेंट करना है और ज़्यादा हिलने से बचाने के लिए, और गैप और ज़्यादा प्रिवेंट करने के लिए। और अगर दांतों के बीच में कुछ कैविटी है इन बिटवीन एरिया में साइड में से, तो उसकी वजह से भी गैप हो सकता है, तो वो आपको एक चेकअप कराना पड़ेगा आपके डेंटिस्ट के पास जा कर के, और अगर कोई एक्सरे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो करा करके देखना होगा गैप का कारण क्या है और उसका फिर समाधान क्या होगा। और दूसरा आपने पूछा 28 और 32 दांत, देखिए कहीं पहले जो जॉ का साइज़ जो है बड़ा होता था, क्योंकि इंसान जो था वो रॉ फूड खाता था, मतलब आवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। तो अभी क्या है कि अभी सब सॉफ्ट फूड पे आ गए हैं और सब खाना पका करके खाते हैं, तो आप 32 की अब ज़्यादा ज़रूरत रही नहीं है। तो ईयर बाय ईयर जो दांत जो हैं 28 होते जा रहे हैं, और जो बाकी के जो पीछे के दांत हैं अक्लदार जिसको हम कहते हैं, वो तो या तो इम्पैक्टेड रह जाते हैं बोन के अंदर ही, और फिर वो प्रॉब्लम करते हैं, और ये एक नॉर्मल है। अगर 28 भी हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और मेड्स के टाइमिंग जो है वही है, मॉर्निंग 9 o'clock से OPD स्टार्ट होता है, डेली होता है, आप किसी भी दिन आ सकते हैं वहाँ कर वर्किंग डेज पे।
0: इसमें मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि सैटरडे को, शनिवार को भी खुला होता है अस्पताल, बट हाफ डे होता है, बाकी दिन ये 4 बजे तक चलता है, पर OPD टाइमिंग जनरली 9 से 1 ही होता है, और सैटरडे को हाफ डे है।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, रेखा जैसे कि इन्होंने इम्प्लांट के बारे में भी पूछा था, तो ये डेंटल इम्प्लांट, ब्रिज और डेंचर में क्या अंतर है और किन कंडीशंस में किया जाता है?
0: देखिए, दांतों को लगाने का, आप किसी आदमी का जब दांत निकल जाते हैं तो उसे हम आर्टिफिशियल दांतों से लगाते हैं, जिसे लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं। सो कितने दांत निकले हैं, बाकी दांतों का क्या कंडीशन है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं डेंचर की बात कहूँ, तो निकालने लगाने वाला डेंचर सबसे पुराने समय से जो चला आ रहा है, जिसको हम 32 भी कहते हैं, तो एक दांत से लेके 32 दांत तक हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ये पेशेंट को हर रोज़ निकालना होता है और लगाना होता है। उसके बाद अगर हम आए ब्रिज या क्राउन की जो हम बात करते हैं, तो अगर किसी का 1, 2 या

0: मैक्सिमम 3 दांत तक निकले हैं तो हम उसको ब्रिज से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें हम आसपास वाले दांतों से सपोर्ट लेके जो मिसिंग दांत हैं उसे लगाया जाता है और ये मुंह के अंदर फिक्स हो जाता है, पेशेंट को उसे निकालना नहीं पड़ता। तीसरी ऑप्शन आती है इम्प्लांट। सो अब इम्प्लांट जो ट्रीटमेंट है उसमें जब आपका असली दांत निकल गया, सो एक तरह से आप ये कहें कि हम उसका एक कृत्रिम तरीका, एक स्क्रू जैसा होता है टाइटेनियम का जिसको हड्डी के अंदर लगा देते हैं, इट इज़ एज गुड एज या सिमिलर टू जो आपके दांत की जड़ होती है उसके ऊपर जब इम्प्लांट हड्डी के साथ जुड़ जाता है तो उसके ऊपर फिर दांत बनाया जाता है। ये इम्प्लांट का जो ट्रीटमेंट है ये सभी दांतों को रिप्लेस करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे मैंने 32 की बात कही, और ये एक दांत को रिप्लेस करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और इवन इम्प्लांट के साथ भी पूरा फिक्स भी हो सकता है और निकालने वाला दांत भी इम्प्लांट से सपोर्ट लेके बनाया जा सकता है। तो ये सिचुएशन पे, पेशेंट की ज़रूरत पे और बहुत से और फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करता है कि किस तरह का ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए चूज़ किया जाएगा।
1: तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें इम्प्लांट नहीं किया जा सकता, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: नमस्कार जी, मैम को भी नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी, मैं यामिन भाई, रेडियो वाला।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: जी मैं सर से और मैम से जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम पान गुटखा दूधी कुछ भी नहीं खाते तब भी दांत पीछे से लाल ही रहते हैं, जैसे कुछ लोगों, और एक ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कुछ बच्चों के दांत टूट जाते हैं फिर वो आते ही नहीं है, बड़े हो जाते हैं बच्चे, इसका भी क्या कारण है, तो ये बताएं।
0: मैं इसका जवाब देती हूँ, अगर दो ही आपके सवाल हैं तो। देखिए, अगर जो पान सुपारी कुछ तंबाकू नहीं खाते फिर भी आपने कहा लाल दांत, सो दांतों का रंग अमूमन लाल नहीं होता, तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर या कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा, जैसे कि कई बार लाल दंत मंजन एक है जो, या तंबाकू वाले पेस्ट कुछ होते हैं जिसे पेशेंट यूज़ करते हैं, सो कई बार वो भी दांतों का डिस्कलरेशन कॉज कर देते हैं। इसके अलावा जब दांत की ऊपरी परत घिसने लगती है तो जो नीचे से परत निकल के आती है वो थोड़ा पीलेपन पे होती है, तो वो भी उस सिचुएशन में भी आपको ऐसा लगता है कि दांतों का रंग बदल गया है। और कुछ हिंदुस्तानी खान पान तरीके ऐसे होते हैं जो बहुत सारी तरह की स्टेनिंग कॉज कर सकते हैं, जैसे हमारे खाने में हल्दी बहुत होता है, चाय कॉफ़ी हम बहुत पीते हैं, तो इवन ये वाली चीज़ें भी दांतों की डिस्कलरेशन कॉज करती है। देन आपने दूसरा सवाल पूछा कि बच्चों के दांत टूटने के बाद नहीं आते, ऐसा हो सकता है कि दूध का दांत था और वो टूटा तो पक्का दांत नहीं आया, तो ये वाली चीज़ एक्सरे से कन्फर्म किया जा सकता है, क्योंकि इसके कई कारण हैं, कई सिचुएशंस में तो दांत बनता ही नहीं है, पक्का दांत बना ही नहीं तो वो कभी भी नहीं आएगा, बट कई सिचुएशन में ऐसे होता है कि वो हड्डी के अंदर टेढ़ा है या अगल बगल वाला दांत उसको ऊपर आने से रोक रहा है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो कई बार हम उसे सर्जिकली या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से बाहर भी निकाल सकते हैं, इरप्ट करा सकते हैं। तो अगर ऐसा है कि बच्चे का दांत नहीं आया है दूध का दांत टूटने के बाद, तो आपको जाके डॉक्टर से उसकी जाँच करानी चाहिए कि उसका कारण क्या है।
1: जैसे कि कई बार होता है बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते दांत टूट गया, या कोई बड़े भी हैं वो बाइक पे जा रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, इंसिडेंट हो गया, दांत टूट गया, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है?
3: देखिए, बहुत सारे स्पोर्ट्स भी हैं और एक्सीडेंट में भी हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका कि दांत या तो टूट जाता है या पूरा का पूरा ही दांत उखड़ के बाहर आ जाता है, तो कोई भी अगर पार्ट आपका दांत का टूट गया है या दांत उखड़ के बाहर आ गया है तो सबसे पहली केयर तो ये करनी है, उसको ट्रांसफ़र करना है उस टूथ को, तो सबसे बेस्ट मीडियम जो है ट्रांसफ़र करने के लिए वो है मिल्क, कोल्ड मिल्क, कोई छोटा सा कप लीजिए, उसमें मिल्क कहीं भी आसपास से लेकर के उसके अंदर स्टोर करके आप नियरेस्ट डेंटिस्ट को आप अप्रोच करिए। तो अगर टूथ बाहर रहता है ओरल कैविटी से तो विदिन 30 मिनट्स उसके जो लिगामेंट हैं वो डिजनरेट होना शुरू कर देते हैं, तो उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो मिल्क जो है बेस्ट स्टोरेज मीडियम है, हर स्कूल में या कॉलेज में जहाँ भी स्पोर्ट्स खेला जाता है या घर के आसपास तो वहाँ पर मिल्क होता ही है नॉर्मली, तो उसमें स्टोर करके आप नियरेस्ट डेंटिस्ट को विदिन 1 आवर अगर आप रीच करते हैं तो चांसेस हैं कि हम उस टूथ को दोबारा से रीइम्प्लांट करके उसको जो है 10 डेज के लिए वायर से फिक्स कर देते हैं ताकि वो दोबारा से बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। बट ऐसा हम जनरली परमानेंट टीथ में करते हैं, जो डेसिड्यूस टीथ होते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं, उनको हम रीइम्प्लांट नहीं करते हैं। इसके अलावा जैसे कोई दांत टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तो आजकल टेक्निक है कि हम फ्रैक्चर पोर्शन को भी मटेरियल के साथ फिक्स करके, और अगर उसमें रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ती है, RCT करने की ज़रूरत पड़ती है, एक्सरे कर करके हम देखते हैं, तो वो भी करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो तुरंत डेंटिस्ट के पास आना चाहिए।

0: कॉलर और है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
1: नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं यूपी गाजियाबाद से उमेश बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए उमेश जी, क्या प्रश्न है आपका?
1: मेरा डॉक्टर साहब से ये प्रश्न है कि ब्रश करते समय कभी कभी मसूड़े में सूजन आ जाती है, तो डॉक्टर साहब एक दो खुराक देते चली जाती है, क्या इससे अलग भी कोई और टेस्ट करवाना चाहिए कि अंदर से क्या बीमारी है, ये पूछना चाह रहा था।
2: क्या आप अपना सवाल एक बार रिपीट करेंगे? आपने कहा मसूड़े में सूजन आ जाती है, उसके बाद आपने क्या कहा?
1: ब्रश करने पर कभी कभी सूजन आ जाती है, ठीक है। डेंटल डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक दो खुराक दे देते हैं और सही हो जाती है।
2: ओके ओके,
1: इससे आगे क्या कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए जिससे पता पड़े कि क्यों हो जाती है?
2: देखिए, अगर आपको एक ही मसूड़े पे बार बार सूजन आ रही है एक ही जगह पे, तो फिर इसका मतलब उसमें कोई ना कोई तरह का इन्फेक्शन है जो बार बार मसूड़े की सूजन कॉज कर रहा है। कई बार मसूड़े के अंदर या हड्डी के अंदर पस पड़ जाता है, जिसको हम एब्सेस बोलते हैं। जो आपने कहा कि ब्रश करते हुए, तो वो कई बार तो ब्रश करते हुए, अगर मान लीजिए ब्रश जोर से लग गया या ऐसा हुआ, तो उससे भी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर एक ही मसूड़े पे बार बार आ रहा है और सूजन दिख रही है, बड़ी सूजन दिख रही है, जो दवा देने से ठीक हो जाती है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी आपको एंटीबायोटिक दिया गया होगा, तो उससे वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है, पर वो पूरी तरह नहीं जाएगा जब तक कि उसका जो कारण है वो नहीं जाना जाएगा और उसको नहीं हटाया जाएगा। तो उस दांत में इन्फेक्शन है, इसका मतलब या तो मसूड़े में या नीचे हड्डी में, तो आपको डॉक्टर के पास जाके सबसे पहले उसकी क्लिनिकली जांच करानी चाहिए और एक छोटा एक्सरे कराना चाहिए जिस मसूड़े के आसपास वो सूजन आती है उस एरिया का, सो दैट हमें उसका कारण पता चल सके और अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट किया जा सके।
0: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून डॉक्टर जी, मोहम्मद इम्तियाज, जवाहर कैंप, कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली। मेरी एज 40 है और मैं किसी भी तरह का स्मोकिंग, पान मसाला नहीं करता, मगर पिछले 3 महीने से राइट साइड लास्ट के नीचे वाले टीथ में हल्का दर्द और हल्का काला है सेंटर में हो रहा है, और लास्ट के चारों टीथ की सफाई में दिक्कत हो रही है, तो कैसे हाइजीन करूं, प्लीज़ बताएं। 2 बार टीथ की सफाई भी करवा चुका हूं हॉस्पिटल में।
3: देखिए, अगर आपके दांत के ऊपर स्टेन्स हैं, वो डार्क हो रहे हैं, तो हो सकता है कि वो एक कैविटी की शुरुआत हो, कैविटी हो रहा हो आपके दांत में, तो उसका चेकअप कराना होगा। अगर उसमें कैविटी है तो उसको क्लीन करके उस कैविटी को उसके अंदर फिलिंग मटेरियल या परमानेंट रिस्टोरेशन उसके अंदर करना होगा। और अगर मुँह खोलने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको चेकअप कराना चाहिए, कहीं उसमें विजडम टूथ तो नहीं है जो इम्पेक्टेड है, जो बार बार वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो आपको चेक नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाकर के चेकअप कराइए और आप उसका समाधान कराइए।
0: एक और मैसेज हमारे पास, लिखते हैं, एंकर मैम और डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर सिंह को गुड आफ्टरनून। जहाँ तक मिसिंग दांत लगाने की बात है, तो ये काफ़ी महंगा है, तो इसकी एक बार इसकी कितनी कॉस्ट है, क्या इसको आम आदमी अफोर्ड कर सकता है, और इसको कितना पेनफुल है ये ट्रीटमेंट, ये बताएं। नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड।
2: हरदेव जी, मैंने थोड़ी देर पहले अभी अलग अलग तरीके बताए थे दांत को लगाने के, तो ऐसा नहीं है कि सारे ट्रीटमेंट महंगे होते हैं। अफोर्डेबल अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे हैं इलाज जो काफ़ी अफोर्डेबल हैं, और ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों में वो या तो फ्री या बिल्कुल बहुत ही कम चार्जेस के साथ वो ट्रीटमेंट किया जाता है, तो आप बिल्कुल उसे अफोर्ड कर सकते हैं। अब सबसे महंगा जो अगर हम बात करें, शायद आप वही पूछना चाह रहे, डेंटल इम्प्लांट की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसे बनाने का तरीका, उसका मटेरियल जो है वो कॉस्टली है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दांत निकला है तो हमें इम्प्लांट ही लगाना है, और भी बहुत सारे तरीके उसे लगाने के जो इक्वली अच्छे हैं, और आपको खाने में, बोलने में, और आपकी जो भी दांत मिसिंग होने के कारण प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कितने दांत मिसिंग है तो ही हम बता सकते हैं कि कितना खर्चा होगा और कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट है।
0: जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि डेंटल इम्प्लांट किन कंडीशंस में नहीं किया जा सकता, तो उसके बारे में हमें बताएं।
2: जी, आजकल बिकॉज इंटरनेट का ज़माना है, तो ज़्यादातर मरीज़ हमारे पास इस उम्मीद के साथ आते हैं कि हमें इम्प्लांट लगा दिया जाए। सो अभी अभी जैसे मैंने हरदेव जी को कहा कि आपका पर्पस इम्प्लांट लगाना नहीं है, आपका पर्पस या डेंटिस्ट का पर्पस दांत लगाना है जो मिसिंग है। अब या मैं उसे इम्प्लांट की मदद से लगाऊँ, बाकी दांतों की मदद से लगाऊँ, कि मसूड़ों की मदद से लगाऊँ, राइट? सो बहुत सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें इम्प्लांट नहीं किया जा सकता। सबसे पहला तो हड्डी, जहाँ से दांत निकला है, इम्प्लांट डालने के लिए हमें एक हेल्दी बोन, जो कि वॉल्यूम और हाइट दोनों चीज़ों में

0: अच्छी हो, मतलब एक अच्छी क्वांटिटी की हड्डी होना चाहिए जो उस स्क्रू को या इम्प्लांट को रिसीव कर सके। तो अगर हड्डी ही नहीं है, घिस चुकी है या हाइट में छोटा है, या कई बार होते हैं बहुत से नर्व्स वहाँ पे हैं जो उस एरिया में पास हैं, तो इसलिए हम, या साइनस है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, तो जिसके कारण वहाँ इम्प्लांट नहीं डाला जा सकता। और इसके अलावा दूसरा कारण होता है सिस्टमिक डिजीज़, जैसे कि किसी को अगर मान लीजिए शुगर है, ब्लड शुगर जो अनकंट्रोल्ड है, या किसी और तरह की बीमारियां हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, सो इन सिचुएशंस में, बहुत सी ऐसी और सिचुएशन है जो सबका नाम मैं नहीं ले रही, उस सिचुएशन में हम डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट अवॉइड करते हैं। एक और प्रॉब्लम कॉमन, जैसे ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, कई लोग ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जिसके कारण ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, ब्लड थिनर्स होते हैं जो बहुत कॉमन है बहुत सी बीमारियों में, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें बहुत सोच समझ के इम्प्लांट का ट्रीटमेंट करना होता है।
1: बातें हम इस पर और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: हंसते हंसते कट जाए रास्ते, हर तरह से रास्ता कट जाता है, मुस्कुराते हुए बस अपनों का साथ ज़रूरी है। आज रेडियो डॉक्टर में हम बात करें डिफेंडिंग योर स्माइल, कि अपनी मुस्कान को कैसे बनाए रखें और अपने कैसे दांतों को सुरक्षित रखें। तो डॉक्टर रेखा, हम जैसे कि बात कर रहे थे डेंटल इम्प्लांट पर, तो ये तो आपने हमें बताया कि कब करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं। अगर कोई डेंटल इम्प्लांट नहीं करा सकते कुछ कंडीशंस में, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है?
2: उनके लिए डेंचर्स, जो कन्वेंशनल निकालने लगाने वाले डेंचर, वो लगाए जा सकते हैं, जो सबसे सिंपल प्रोसीजर है। और अगर कुछ ही दांत मिसिंग है, तो हम क्राउन एंड ब्रिज की हेल्प से, जिसमें आसपास वाले दांतों से सपोर्ट लेके हम दांत लगाते हैं, वो भी किया जा सकता है। एक चीज़ मैं यहाँ और मेंशन करूँगी, जैसे कई बार होता है कि पेशेंट्स के 3-4 दांत बचे हैं, ज़्यादातर निकल चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक ऑप्शन होती है जिसको हम आजकल नेचुरल इम्प्लांट, में अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि ये आपके नेचुरल इम्प्लांट्स हैं, अगर वो दांत हेल्दी हैं तो उनको हम बचा सकते हैं, और उसके ऊपर डेंचर लग जाता है जिसको कि ओवर डेंचर बोलते हैं। तो ये कुछ एक ऑप्शंस हैं जो इम्प्लांट के बिना भी की जा सकती हैं।
1: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, एक दिन में कितनी बार ब्रश करना अच्छा होता है टीथ की हेल्थ के लिए? मोहित काम्बोज, विलेज जोधा बंस, सहारनपुर, यूपी। जी डॉक्टर हरमीत बताइए।
3: हाँ जी मोहित जी, ब्रश जो है दिन में 2 बार करें, रूल ऑफ 2 बोलते हैं इसको, ब्रश दिन में 2 बार करना चाहिए और 2 मिनट के लिए करना चाहिए, और हर साल 2 बार ही डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए। ये तो रूल ऑफ 2 है। और ब्रश करने के लिए अलग अलग टेक्निक होती है, वो हम एज, पेशेंट की एज देख करके और उसका जनरल कंडीशन देख करके बताते हैं किस किस तरह से ब्रश टेक्निक है। बट जनरली हम मॉडिफाइड बास टेक्निक जनरली हम एडवोकेट करते हैं कि पेशेंट्स को, इसमें क्या है, ब्रश के ब्रिसल्स जो हैं 45 डिग्री एंगल्स पे रखना होता है गम्स पे, और उसको वाइब्रेटरी मोशन से स्वीप मोशन के साथ डाउन मूव करके उसको क्लीन करना होता है टीथ के सर्फेसिस को। आप वैसे भी इसको गूगल पे सर्च करके मॉडिफाइड बास टेक्निक आप सर्च कर सकते हो, आपको वीडियोस मिल जाएंगे किस तरह से करना चाहिए। और छोटे बच्चों में जनरली हम उसको चार्टर टेक्निक बोलते हैं, उसमें जो है सर्कुलर मोशन के साथ बच्चे को टीथ को क्लीन करना चाहिए। और रही टूथपेस्ट के बाद, टूथपेस्ट जो है फ्लोरीडेटेड होना चाहिए, फ्लोराइड जो है बहुत इम्पोर्टेंट है टीथ के एनेमल की सेफ्टी के लिए, जो एनेमल जो है हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है, और जो फ्लोराइड जब हम यूज़ करते हैं वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट को फ्लोरो एपेटाइट में कन्वर्ट करता है, विच इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल एनेमल। तो इसलिए जो है हमेशा फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, और उसकी कंसंट्रेशन अलग अलग टूथपेस्ट में अलग अलग होती है। तो जनरली हम जो जो बच्चे न्यू बॉर्न है, नए अभी टीथ आए हैं, नॉर्मली 10 महीने के आसपास छोटे बच्चों में टीथ आ जाते हैं, तो हम जनरली कहते हैं 18 महीने की उम्र तक बच्चे को ब्रश जो है सुपर सॉफ्ट ब्रश करना चाहिए, और बिना टूथपेस्ट के कर सकते हैं। 18 महीने से 6 साल की एज तक के बच्चों को 500 ppm

0: का टूथपेस्ट आता है 500 ppm जिसके अंदर फ्लोराइड होता है वो यूज़ करना चाहिए, और उसके बाद 6 साल से ऊपर सभी को एडल्ट टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। ये है नॉर्मली। अगर कोई ज़्यादा केरीज प्रोन है जिसमें ज़्यादा कैविटीज़ होती हैं तो उसके लिए हम मोर फ्रीक्वेंट या हाई फ्लोराइड कंसंट्रेशन का भी टूथपेस्ट एडवाइस करते हैं, बट वो क्लिनिकली पेशेंट को देखने के बाद ही। और ब्रश करने से एक बात बताऊं मैं, उससे सिर्फ 60% ऑफ द टीथ सर्फेसिस जो हैं क्लीन होते हैं। तो आपको कंप्लीट क्लीनिंग के लिए फ्लॉस करना मस्ट है, फ्लॉस इज मैंडेटरी। तो फ्लॉस करना जरूर कभी ना भूलें, ब्रश करने के साथ साथ फ्लॉस भी करना है। जो इन बिटवीन सर्फेसिस हैं टीथ के, तो फ्लॉस से उसको जरूर क्लीन करना है। और रेगुलर माउथवाश जो जनरली लोग यूज़ करते हैं वो नहीं यूज़ करना चाहिए जब तक कि डॉक्टर की सलाह ना हो। और दूसरा, माउथवाश जो इंडिया में मोस्ट पॉपुलर है वो गर्म पानी में हल्का सा नमक डाल के उससे रिंसेस कर सकते हैं, डेट इज़ द बेस्ट माउथवाश फॉर इंडिया।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
2: जी मैम नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: जी मैम मेरा नाम सोनू पासवान है, मैं दिल्ली आज़ादपुर से बात कर रहा हूँ।
1: जी बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे राइट साइड में दांत के ऊपर वाले दांत के राइट साइड के सेकंड दांत में एक अजीब सा उठा हुआ सा घाव टाइप का है या क्या है नहीं पता, लेकिन उसमें दर्द नहीं होता लेकिन वो उठा हुआ सा है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो कभी कभी। ब्रश करते हैं तो सही से सफाई नहीं हो पाती उस दांत की, या जो भी कह लें बिल्कुल एक जिसे हम लोग शुद्ध देशी भाषा में कहें तो खोड़ी टाइप का निकला हुआ है, तो वो कैसे ठीक होगा, उसके लिए क्या करना चाहिए?
3: जो पासवान जी आपने ये बोला, एक बार बताएं क्या ये दांत के ऊपर है कि मसूड़े के ऊपर है?
2: जी दांत के ऊपर है।
3: तो ये नॉर्मल है, आप कह रहे कि उसमें दर्द नहीं होता और ये बहुत टाइम से वैसा ही बना हुआ है, ना घटा है ना बड़ा है, उसके आसपास कोई सेंसिटिविटी नहीं है, कोई कैविटी नहीं है। तो ये दांत जब बन रहे होते हैं, इनामल डिपॉजिट हो रहा है उसके ऊपर, मिनरल डिपॉजिट होते हैं, तो वो कई बार अलग अलग शेप में डिपॉजिट होते हैं।
2: और लेकिन मैम ये पहले नहीं था, ये कुछ सालों से ये है, ये अचानक हुआ है। पहले कुछ हल्का सा दबा था दांत पर, फिर अचानक ये धीरे उठने लगा।
3: दांत खुद से नहीं उठता है जनरली, मगर देखिए दो चीज़ें जो मैं सिर्फ सुन के इमेजिन कर सकती हूँ, एक तो ये कि हो सकता है उसके ऊपर कुछ कैलकुलस डिपॉजिट हो, कई बार वो इतना हार्ड हो जाता है कि वो दांत का हिस्सा ही लगने लगता है अगर उसको समय पे साफ ना कराया जाए। क्योंकि दांत के ऊपर एक बार जब दांत इरप्ट हो गया, बन गया, तो उसके ऊपर कुछ भी उसकी शेप वैसे चेंज होना, गड्ढा हो सकता है पर उठेगा नहीं। तो अगर आपको वो तकलीफ़ दे रहा है और अभी कुछ टाइम से आपने नोट करना शुरू किया है, तो प्लीज़ एक बार किसी भी डेंटिस्ट के पास जाके उसकी जांच कराएं। पर जहाँ तक मुझे आपके सिम्टम से समझ आ रहा है, कुछ घबराने वाला तो नहीं होगा, बिकॉज़ कोई दर्द नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी एक बार आप उसे जाके ज़रूर से दिखाएं।
2: नहीं लेकिन कई बार ठंडा पानी या कोई भी गर्म चीज़ हल्की फुल्की लग जाती है ना, तो
3: हाँ जी
2: थोड़ा लगता है।
3: हाँ तो फिर आप दिखा लीजिए, क्योंकि उठने का कारण अगर देखिए ठंडा गर्म जैसे आपने कहा लगता है, तो वो ना कई बार दांतों में कीड़ा जिसमें लगा होता है उसमें ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, या दांत ऊपर से कई बार घिस जाते हैं जिसके बहुत से कारण होते हैं, तो ऊपरी परत जो सख्त परत होती है जिसको इनामल कहते हैं, उसके घिसने के बाद भी ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। बट जो आप क्लिनिकल अपीयरेंस बता रहे हैं वो आप उल्टी बता रहे हैं, इन सब चीज़ों में कम होगा दांत, बढ़ेगा नहीं। सो अगर ये बढ़ रहा है कोई भी एक हिस्सा, सो मेरे को लगता है क्वाइट पॉसिबल कि वो टार्टर डिपॉजिट या कैलकुलस डिपॉजिट हो सकता है।
2: मैंने एक प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया था इस चीज के लिए, तो उन्होंने बोला कि इसमें मसाला भरा नहीं जा सकता, अगर इसमें मसाला भरा जाएगा तो दर्द होगा, आप इसको बस नॉर्मली सफाई करते रहें या अपने आप ठीक हो जाएगा, या फिर अगर आपको अगर मुझसे वो नहीं लग रहा है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को और दिखा सकते
3: हैं। आप किसी और को ज़रूर से दिखा लें। मसाला हम हर दांत में भर सकते हैं, पर सिर्फ इतना होता है कि जब दांत में जो केरीज है वो गहरी होती है, पल्प तक चली जाती है, तो फिर सिंपल मसाला भरने से उसमें दर्द बढ़ सकता है। ऐसी सिचुएशन में कई बार रूट कैनाल कराना पड़ता है और उसके बाद मसाला भरा जाता है। मसाला जो मसूड़े के बीच में जगह बन जाती है उस जगह पर हम नहीं भरते कभी भी, वो हम मना करते हैं कि उस स्पेस को हम मसाला भर के ख़त्म नहीं कर सकते।
1: एक मैसेज है हमारे पास, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे ब्रशिंग टेक्निक पे, तो उन्होंने लिखा है, यह है ज्योति का, ये लिखते हैं क्या कभी कभी एडल्ट टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं बच्चे, मेरी बेटी 2.5 साल की है।
0: नहीं 2.5 साल के बच्चे में

0: जनरली जो है हम किड्स टूथपेस्ट एडवाइस करते हैं जिसमें 500 से 550 ppm फ्लोराइड होता है, और बच्चों में तभी हम एडवाइस करते हैं एडल्ट टूथपेस्ट अगर उसमें बहुत ज़्यादा कैविटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा केरीज प्रोन है, और वो भी पेरेंट्स की सुपरविजन में एडल्ट टूथपेस्ट यूज़ करना है और उसको इमिजिएटली स्पिट करना होता है। बट अपने आप आपको एडल्ट टूथपेस्ट बच्चे को नहीं देना चाहिए।
1: मैं इसमें थोड़ा सा कुछ और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि देखिए बच्चे और अडल्ट का अलग अलग क्यों होता है टूथपेस्ट, क्योंकि बच्चे कई बार उसको थूक नहीं पाते, स्वेलो कर लेते हैं। तो जैसे डॉक्टर हरमीत ने कहा, अगर फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा है और बच्चा उसे स्वेलो कर लेता है, ठीक से थूक नहीं पा रहा, तो वो फिर उसको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। बट अगर आपका टूथपेस्ट उसमें फ्लोराइड नहीं है, नॉर्मल है, जैसे बड़े लोग भी कई बार बबल गम पेस्ट कोलगेट के या बहुत सारे कंपनीज के आते हैं जिसमें जिसमें अलग अलग फ्लेवर वाले, बट अगर उसमें फ्लोराइड या कोई मेडिकेशन नहीं है और आपका बच्चा 2.5 साल का है और अच्छे से थूक सकता है, स्वेलो नहीं कर रहा है, तो आप छोटा अमाउंट, बहुत छोटा, जैसे हम जिसे कहते हैं पी शेप वाला, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं यूज़ करना, छोटा सा उसको दे सकते हैं।
2: एक और मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, डॉक्टर नमस्ते सर, मेरा सवाल ये है कि बच्चों के दांत जो बाहर की तरफ आ जाते हैं, सर इसका कारण क्या है और इससे कैसे बचें? और एक सवाल ये है कि मेरे दांत में कभी कभी ठंडा पानी लगता है, ऐसा क्यों और इसका क्या उपाय है बताएं प्लीज़। आसिफ सैफी फ्रॉम मेरठ।
1: देखिए बच्चों के दांत बाहर आने में बच्चे की एज के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि दांत बाहर आने के बहुत से कारण होते हैं। अगर बच्चा छोटा है कि जब दूध का दांत टूटा और पक्का दांत आया, तो कई बार ऐसा लगता है कि दांत बाहर आ गए, क्योंकि दूध के दांत छोटे होते हैं साइज़ में और जो आपके परमानेंट टीथ होते हैं वो बड़े होते हैं, तो उसमें फ़र्क नज़र आने लगता है। ठीक है, एक कारण ये हो सकता है। एक है कि दांत इरप्ट होने के बाद धीरे धीरे बाहर आने शुरू हो गए, तो वो कई बार कुछ हैबिट्स के कारण भी ऐसा हो जाता है, जैसे कि कई लोगों को, जिसे हम टंग थ्रस्टिंग कहते हैं, कि जीभ से दांतों को बाहर पुश करने की आदत होती है, या कई बार लोग बच्चे मुंह से जो सांस लेते हैं, माउथ ब्रीदर्स, तो उसमें कई बार दांतों की पोजिशन चेंज हो जाती है। तीसरा सबसे कॉमन कारण है अगर पेडोंटल प्रॉब्लम, जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि छोटे बच्चों में इतना जल्दी नहीं होगा, बट अगर मान लीजिए सफाई न रखी जाए, मसूड़े की प्रॉब्लम होके वो बढ़ती जाती है, हड्डी घिसने लगती है, तो उस सिचुएशन में दांत अपनी जगह से हिल के थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं या बाहर की तरफ आने लगते हैं। तो ये कुछ कारण हैं। और कई बार जब दूध से, मैंने कहा दूध के दांत से पक्के दांत पे जाते हैं, सो कई बार देखा गया कि दूध का दांत नहीं टूटता और पक्का दांत आना शुरू हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो पक्का दांत कहीं से भी आ सकता है और ज़्यादातर वो बाहर की तरफ निकल के आता है। तो कभी भी ऐसा अगर देखें, इसकी प्रिवेंशन की अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सिचुएशन की, तो आपको ध्यान रखना होगा जब आपके बच्चे के दूध के दांत टूट रहे हैं, तो देखिए अगर पक्के दांत नज़र आना शुरू हो गया और दूध का दांत वहीं पड़ा है, तो कई बार हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाके दूध के दांत को निकलवाना पड़ता है, ताकि पक्का दांत अपनी सही जगह पर आ सके, बाहर की तरफ ना आए।
2: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
3: हाँ जी मैम।
2: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: नमस्कार मैम, और रविंद्र भट्ट दिल्ली से बोल रहा था, नारायणा से।
2: अच्छा जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: प्रश्न ये है मैम कि जैसे 4-5 सालों से मैं खाना चबाते समय दोनों साइड के चौबर से गाल के मसूड़े कट गाल के मतलब मांस कट जाते थे। हेलो।
2: हाँ जी बताइए।
3: तो मैंने दांत को घिसवा दिया, दांत घिसवाने के बाद थोड़ा सा नुकीला हो गया, तो गाल में रगड़ पड़ता है खाना चबाते समय अंदर साइड में, तो लालिमा सा बना हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं?
0: हाँ जी जरूर दिक्कत है उसके साथ। अगर आपका चीक बाइट बोलते हैं इसको, कि अगर आपके लास्ट वाले टीथ जो हैं, जनरली ये विजडम टीथ जो होते हैं, अक्लदार, उसके साथ एसोसिएटेड होता है, और आपके चीक को बाइट करता है, तो उसकी वजह से अगर उसमें अल्सर बन जाता है, और कोई भी अल्सर जो है 2 हफ्ते से ज़्यादा है, 2 से 3 हफ्ते, तो उसका जो है बायोप्सी होना मस्ट होता है, ये गाइडलाइंस हैं। तो आपको तुरंत नियर बाय डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और अगर वहाँ पर कुछ रेडनेस या अल्सर बन रहा है तो उसका चेकअप कराइए, और अगर वो रिपीटेडली टूथ ट्रोमा कॉज कर रहा है और विजडम टीथ हैं, तो ऐसे केस में हम एक्सरे करा कर के साधारण सा तो उस टूथ को रिमूव भी करते हैं। वेस्टिजियल जो विजडम टीथ होते हैं वो वेस्टिजियल होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा होते हैं, उसकी हमारे को ज़रूरत भी कई बार नहीं होती, बाकी वो आपको क्लिनिकली देख कर ही बता सकते हैं कि इसका कारण क्या है इसका।
3: जी डॉक्टर साहब, मैं एक बार दिखाया था, तो ये बीच बीच में क्या होता है, 15-20 दिनों सही हो जाता है, जैसे नेचुरली होता है वैसे हो जाता है, और कभी कभी हर चीज खाने की वजह से

0: अल्सर जो है मोस्ट कॉमन जो है एप्थस अल्सर होते हैं, वो कॉमनली होते रहते हैं जनरली, और वो उसका मेन कारण होता है स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, नींद पूरी ना होने की वजह से एप्थस अल्सर हो जाते हैं, और इसके अलावा कोई डेफिशिएंसीज है बी कम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी, उसके वजह से हो जाता है, तो उसको तो एप्थस अल्सर बोलते हैं। वो नॉर्मली 3 to 5 days में हील हो जाते हैं, तो उसके लिए हम कुछ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं, माउथ वॉश या जेल, तो उससे पेन रिलीफ हो जाता है, अल्सर हील हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ अल्सर्स होते हैं जो फीवर के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि हर्पीज इन्फेक्शन है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस इन्फेक्शन होता है, उससे पहले वेसिकल बनता है, फिर उसमें से फ्लूइड निकलता है, वहाँ पर अल्सर बन जाता है, वो फिर इन्फेक्शियस होता है। और इसके अलावा और भी अल्सर होते हैं, जैसे ट्रोमेटिक अल्सर है, कोई शार्प टूथ है या कोई प्रोस्थेसिस है जो इल फिटिंग है, उसकी वजह से जो है एक अल्सर बन जाता है, जिसको हम ट्रोमेटिक अल्सर बोलते हैं। तो अगर कोई भी, अगर बॉडी में कोई भी अल्सर है मुंह के अंदर, तो अगर 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा है तो गाइडलाइंस हैं इसके लिए कि उसका बायोप्सी होना मस्ट है। तो उसका बायोप्सी करके रूल आउट करना है कि कहीं वो कैंसर की स्टेज में तो नहीं है या कैंसर की तरफ जा रहा है, तो उसका इमिजिएटली ट्रीटमेंट होना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया, एक मैसेज भी हमारे पास आया है, ये लिखते हैं, नमस्ते जी, दांतों के बीच में गैप है, खाना फंसता है, क्या करें?
2: दांतों के बीच में गैप नया आया है या पहले से है ये आपको बताना होगा। देखिए, कुछ जब हम दांत इरप्शन की, अभी जैसे दूध के दांत से पक्के दांत पे जाने की बात कर रहे थे, कई बार क्या होता है, आपका जबड़े का साइज़ बड़ा होता है, दांत का साइज़ छोटा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में दांतों के बीच में गैप दिखता है। वो किसी एक जगह भी हो सकता है और मल्टीपल दांतों के बीच भी हो सकता है, वो भी ट्रीट किया जा सकता है। और जो आप जैसे कह रहे हैं कि खाना फंसता है, दूसरा कारण उसका है कि अगर कीड़ा लग गया है, दांतों का कांटेक्ट आपस में ब्रेक हो गया, उसके बीच में जगह बन गई और अब वहाँ पे खाना फंस रहा है, तो अब देख के कॉज क्या है, कीड़े के कारण खाना फंस रहा है तो हम फिलिंग कर सकते हैं, और अगर वो नेचुरल गैप था, दांत इरप्शन के साथ ही आया, तो उसके लिए भी हमारे पास ब्रेसिस का ट्रीटमेंट है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या कई बार कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की उस दांत के ऊपर दांत के रंग की फिलिंग करके उस गैप को हम भर सकते हैं।
1: एक और मैसेज हमारे पास, ये लिख है रविंद्र पाठक, आशा पाठक फ्रॉम नीदरलैंड, वेरी रिस्पेक्टेड शिल्पा मैम जी एंड डॉक्टर मैम जी, डॉक्टर सर जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार जी। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: हमारा प्रश्न है कि मैं आशा डायबिटिक पेशेंट हूँ, क्या इस सिचुएशन में दांतों पर भी कुछ गलत प्रभाव हो सकता है? इस हालत में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? वेरी थैंक्स एंड वेरी रिगार्ड्स।
2: देखिए, अगर आप डायबिटिक हैं और वो कंट्रोल में है तो जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर डायबिटिक पेशेंट में दांतों के ऊपर नहीं पर मसूड़ों के ऊपर और हड्डी के ऊपर ज़रूर फर्क पड़ता है। अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगा, शुगर लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा है, तो वो एक कारण बन जाता है, जिसको हम जैसे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कहते हैं, कि एक आम आदमी को जितनी देर में इन्फेक्शन होगा, आपको उससे जल्दी होगा सेम सिचुएशन में। तो मसूड़े सूजना या अगर कोई भी किसी भी तरह का ट्रॉमा हुआ तो वो देर में भरेगा। हड्डी जल्दी घिसती है, दांत निकलने के बाद डायबिटिक पेशेंट में बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा होता है और फास्ट होता है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो देखे गए हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, स्पेशली अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है। तो आपको अपना शुगर कंट्रोल करना होगा, खान पान में बदलाव लाना होगा, मसूड़े की मालिश करें, ध्यान रखें कि किसी भी तरह का मुंह में ट्रॉमा ना हो, प्रोस्थेसिस के कारण, शार्प टीथ के कारण या कोई भी और कारण। तो ये कुछ प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं अगर आप डायबिटिक हैं। और एक जो प्रॉब्लम और डायबिटिक में देखी गई है, मुंह का सूखना, ड्राइनेस ऑफ माउथ, वो डायबिटिक पेशेंट में, जिसको जीरोस्टोमिया कहते हैं, बहुत कॉमन होता है। सो आपको शायद वाटर इनटेक अपना बढ़ाना पड़े, या एक आर्टिफिशियल सलाइवरी सब्स्टिट्यूट भी आता है, वो भी यूज़ किया जा सकता है अगर आपको ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है तो।
1: एक और मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, मैम मेरी उम्र 71 वर्ष है, मैं दोनों समय खाने के बाद ब्रश करता हूँ, मेरी सभी जार्स अभी सुरक्षित हैं, लेकिन पिछले एक सप्ताह से दाई तरफ के ऊपर की एक जार के मसूड़े में सूजन है। मैं अब एक सप्ताह से केवल बाई तरफ से ही खाना खा सकता हूँ। खाना खाने के समय दाई तरफ के ऊपर की दाढ़ जब नीचे की दाढ़ से टकराती है तो काफ़ी दर्द होता है। केवल खाना खाने के समय ही दर्द होता है, वैसे नहीं। कृपया बताएं मैं क्या करूं? दिनेश शर्मा, शिमला, राजस्थान, शिमला, झुंझुनू।
0: देखिए इसमें अगर आपको वहाँ पर स्वेलिंग हो रही है और पेन कर रहा है च्यू करने पे जब आप खाना चबा रहे हैं, तो चांसेस हैं कि वहाँ पर आपको एक इन्फेक्शन हो गया है जिसको क्रोनिक इन्फेक्शन बोलते हैं, तो जिसकी वजह से आपको रेगुलर पेन नहीं है बट

0: ऑन च्यूइंग करने पर पेन है, तो इसका तो आपको क्लिनिकली चेकअप करवाना होगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो एक एक्सरे करा करके देखना होगा कि इन्फेक्शन का कॉज क्या है। अगर दांत में कहीं साइड से कैविटी है या गम्स का रिसीट कर गए हैं, फर्कशन तक अगर गम्स पहुंच गए हैं, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन और पेन कर सकते हैं। तो आपको इसको चेकअप कराना होगा और एक्सरे करा करके अगर कैविटी है तो उसका फर्दर ट्रीटमेंट कराना होगा।
1: डॉक्टर रेखा, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं ओरल हाइजीन की, तो डेंटल एंड ओरल डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं?
2: बहुत साधारण है, लगातार कंसिस्टेंसी ध्यान दें शुरू से अपने दांतों पे, लापरवाही ना करें। जैसे आप हर रोज़ नहाते हैं, अपने शरीर को साफ़ रखते हैं, ऐसे ही अपने मुंह को और अपने दांतों को साफ़ रखें। सो रेगुलर ब्रशिंग, चाइल्डहुड से ही अगर ये आदत डाली जाए, हमने बात किया इस पूरे प्रोग्राम में आज की बच्चों को भी दांत साफ़ करने चाहिए। सो चाइल्डहुड से ही ये आदत आपको बच्चों में डालनी है। कुछ भी खाने के बाद एक बार कुरला ज़रूर करें। अगर आप किसी ऐसी जगह है जहाँ कुरला करना पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम एक घूट पानी लेके और उससे अच्छे से रिंस करके उसे पी लीजिए। रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आप बिस्तर पे जा रहे हैं तो मुंह में कोई भी खाने का कण बचा ना रहे, क्योंकि वो सबसे कॉमन कारण होता है दांतों में कीड़ा लगने का। देन उसके बाद खान पान की आदतें, जो आजकल की जनरेशन में थोड़ा बदल गई हैं, हम फास्ट फूड पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो मैं कहूँगी कि हेल्दी फूड खाएं, फाइब्रस फूड खाएं, सलाद, फल, इस तरह की चीज़ों को अपने खाने में इंक्लूड करें, बिकॉज़ ये आपके टीथ और गम की हेल्थ तो इम्प्रूव करता ही है, इसके अलावा इनका कुछ सेल्फ क्लिंजिंग एक्शन होता है कि ये दांतों की खुद से सफाई भी करता है। फास्ट फूड जैसे च्युइंग गम, जैसे कि हम कहें कि टॉफ़ी, चॉकलेट, स्वीट्स एंड स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स, एरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स, वो अवॉइड कीजिए, बिकॉज वो बहुत एसिडिक होते हैं और वो दांतों की ऊपरी परत को गला देते हैं। तो अगर खान पान में सुधार और सफाई का ध्यान रखा जाए, और दूसरा, तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, रेगुलर चेकअप। कई दांतों की बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनमें सिम्टम, जब तक वो डिजीज़ बहुत बढ़ नहीं गई तब तक नहीं आता, तो एक रेगुलर चेकअप साल में कम से कम, वैसे हम 6 महीने में रेकमेंड करते हैं कि एक रेगुलर चेकअप करा लीजिए, बट कम से कम साल में एक बार तो ज़रूर ही करा लें, टू मेक श्योर कि कोई किसी तरह की डिजीज़ स्टार्ट नहीं हुई है।
1: डॉक्टर हरमीत, जैसे कि कई बार हम कहते हैं कि टीथ वाइटनिंग करा लेनी चाहिए या क्लींजिंग कराते रहना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे हमारे श्रोताओं को?
0: देखिए, जैसे स्किन के शेड्स अलग अलग होते हैं, उसी तरह से टीथ का कलर्स और शेड्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो कईयों का वाइट होता है, कईयों का येलोइश होता है, कईयों का इन बिटवीन क्रीमिश, अलग अलग से शेड्स होते हैं। तो वो एक नेचुरल शेड्स हैं, तो उसको क्लीनिंग से हम नहीं क्लीन मतलब और ब्राइट बना सकते, बल्कि अगर उसके ऊपर स्टेन्स हैं जो एक्सट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं, चाहे वो टी कॉफ़ी के स्टेन्स हैं या प्लाक डिपॉजिट्स हो गए हैं, कैलकुलस है, उसकी वजह से स्टेन्स हो गए हैं, तो उसको तो हम प्रोफेशनली स्केलिंग एंड क्लीनिंग करके उसको क्लीन कर सकते हैं। और अगर किसी के इंट्रिंसिक स्टेन्स हैं, जैसे कि किसी को फ्लोराइड स्टेन्स होते हैं, फ्लोराइड बेल्ट काफ़ी है हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट्स के आसपास, तो फ्लोरोसिस की वजह से अगर उसमें इंट्रिंसिक स्टेन्स हैं, तो उसके ऊपर कॉस्मेटिक वेनियरिंग एक ऑप्शन होता है कि हम उसको वेनियरिंग करके उस कॉस्मेटिकली उसको टीथ स्माइल डिज़ाइन कर सकते हैं, ताकि स्माइल जो है प्रिजर्व कर सकते हैं पेशेंट के लिए।
1: जैसे कि अब जाने का समय हो गया है, तो जाते जाते डॉक्टर रेखा, आप हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देंगी कि जिससे उनकी स्माइल बरकरार रहे और दांत सुरक्षित रहें?
2: मैं तो एक ही सलाह दूंगी, हम लोगों से मिलते रहें और कोशिश करें कि हमसे रेगुलर चेकअप के लिए मिलने की ज़रूरत पड़े, बाकी किसी प्रॉब्लम के लिए मिलने की ज़रूरत ना पड़े। तो जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला कि रेगुलर सफाई अपने दांतों की रखें, उन्हें उतना इम्पॉर्टेंट समझे जैसे शरीर के किसी और हिस्से को समझते हैं, तो उनकी देखभाल करें, हेल्दी खाएं, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।
1: हर मुस्कान अनमोल है। डॉक्टर हरमीत, आप क्या कहेंगे, मैसेज देंगे हमारे श्रोताओं को?
0: जैसे आज का हमारा टॉपिक था डिफेंडिंग योर स्माइल, इसके लिए है प्रिवेंशन इज़ वेरी वेरी चीपर, मीन्स बहुत ही सस्ती है प्रिवेंशन, और ईजियर है और वेरी लेस पेनफुल है, ठीक है। और अगर इस कंपैरिजन हम करें फिलिंग के लिए, आरसीटी के लिए और एक्सट्रैक्शन के लिए, वो जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तो इसलिए प्रिवेंशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रिवेंशन करें और रेगुलर ब्रशिंग और फ्लॉसिंग करें। और मेरा मैसेज है, कीप योर स्माइल ब्राइट एंड कीप योर डिफेंस टाइट।
1: तो श्रोताओं

0: दांत सिर्फ हमारी मुस्कान नहीं बल्कि हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही समय पर जांच, उचित इलाज और नियमित देखभाल से हम लंबे समय तक अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर रेखा गुप्ता, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्थोडोंटिक्स, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, न्यू दिल्ली, और साथ में रहे डॉक्टर हरमीत सिंह, डेंटल स्टाफ सर्जन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।
0: दोस्तों, उम्मीद है कि इस बातचीत से आपको डेंटल केयर के सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। इसी तरह स्वास्थ्य से जुड़ी उपयोगी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। और इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाज़त। स्वस्थ रहें, सजग रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।

अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

एफएम रेनबो मुख्य समाचार। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगांव और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। मिजोरम सरकार ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए शैक्षिक अवसरों को बेहतर बनाने के लिए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत राज्यों में दृष्टिबाधित लोगों को सहायक तकनीक उपलब्ध कराए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। युवा कार्यक्रम विभाग ने नई दिल्ली में माई भारत के लिए उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। भारत ने ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2

1600 लोगों की मौत, हजारों लोग अभी भी लापता। पाकिस्तान के शेरानी जोब राजमार्ग दुर्घटना में एक यात्री बस गहरी खाई में गिरने से 40 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। सोशल नेटवर्किंग है क्या आखिर? सोशल नेटवर्किंग दोस्तों, परिवार, सहपाठियों यानी क्लासमेट्स, ग्राहकों और ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के लिए इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया कार्यक्रम का उपयोग है। ब्रांड पहचान और वफादारी बढ़ाने के लिए मार्केटर्स सोशल नेटवर्किंग का उपयोग करते हैं। लोग सामाजिक नेटवर्क का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि सामाजिक नेटवर्क लोगों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रखने में मदद करते हैं और ये पता लगाने का एक आसान तरीका है कि आपके सामाजिक मंडली में हर दिन क्या हो रहा है। इंटरनेट पर मज़ेदार और दिलचस्पी चीज़ों को खोजने के लिए सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर आपके मित्र और परिवार आपके जैसे ही कई हितों को साझा करेंगे। आज सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्क क्या है? बहुत सारे हैं दोस्तों। सोशल मीडिया आज भी 1 अरब से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्क है। कई नाम आपको दे सकते हैं, मगर आपको खुद मालूम है कि ये क्या क्या सोशल मीडिया है।

दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। सोशल नेटवर्किंग साइट आज दुनिया भर में एक दूसरे से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन है। आज सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बूढ़े और बच्चे भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के दीवाने हैं। लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को प्रयोग करने वाले लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि एक आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर धमकियां, ब्लैकमेलिंग और किडनैपिंग जैसे कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बंद या ब्लॉक कर दें। अगर यदि आप इन सोशल साइट्स का सुरक्षित तरीके से प्रयोग करेंगे तो ये साइट्स बिल्कुल सुरक्षित है और बहुत काम के भी है। दोस्तों, अब जानिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लाभ। सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से आप बस एक फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते ही एक नई दोस्ती का डोर शुरू हो जाता है। सोशल नेटवर्क का प्रयोग करने से

आप अकेलेपन का शिकार होने से बच सकते हैं। कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपके बिजनेस को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट से आप हमेशा व्यस्त रह सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको यह एहसास होता है कि आपको कोई सुन रहा है। इसके प्रयोग से आपको दोस्तों की कमी महसूस नहीं होती है। सामाजिक नेटवर्क के उदाहरण बहुत है। तो दोस्तों, अभी तक आपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के फायदे सुने हैं, अब सुनिए इसके नुकसान।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। सोशल नेटवर्किंग के ये नुकसान है दोस्तों कि सोशल नेटवर्किंग आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान कर सकता है। एक प्रकार की लत है, ये एडिक्शन है। आप इसके आदि होते चले जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। आपके लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर समय बिताना आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। आप इसको इतनी ज्यादा अहमियत देने लगते हैं कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण चीजों को आप भूल जाते हैं या अपनी जिंदगी से काट लेते हैं। ये सही नहीं है। कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट से आपका डेटा और फोटो चोरी कर लिया जाता है, जिनका प्रयोग गलत कामों के लिए किया जा सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आज दुनिया भर में एक दूसरे से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन है। आज सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बूढ़े और बच्चे भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के दीवाने हैं, जो कि मैंने आपसे पहले ही बता चुका हूँ। दोस्तों, सोशल साइट्स पर हमेशा अपनी पूरी जानकारी न अपलोड करें। यहाँ से आपकी जानकारी को चोरी किया जा सकता है। अपने पर्सनल फोटो को सोशल साइट्स पर अपलोड न करें, खासकर महिलाएं, गर्ल्स। ज्यादातर 18 या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपने गलत जानकारी अपलोड करके इन साइट्स पर अकाउंट बना लेते हैं। अगर आपके बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा करने से रोकें। सोशल साइट्स के द्वारा बने दोस्तों को आप अपनी पर्सनल जानकारी न दें। यह हमेशा याद रखें कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स नए लोगों से मिलने और सबसे जुड़ने का बस एक माध्यम है। इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा न बनाएं। आपके अपने लोग सोशल साइट्स के माध्यम से आपसे जुड़े रहते हैं, इसीलिए इन साइट्स का प्रयोग आप नए लोगों से जुड़ने के लिए या अपनी नेटवर्किंग के दायरे को बढ़ाने के लिए करें, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को दूसरों पर जाहिर न होने दें। सोशल मीडिया साइट्स का प्रयोग लगातार लंबे समय तक न करें। कई बार लोग पूरा दिन इस साइट्स पर ही बिता देते हैं, ऐसा न करें। ऐसा करने से आपके निजी जिंदगी में बहुत नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, आपका हेल्थ भी अफेक्ट हो सकता है और आपके रिश्ते भी। तो दोस्तों, यह थे कुछ प्रोस एंड कॉन्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग। इसके साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत।
1: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। सबसे पहले तो थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। सच बताइए ना, फ्राइडे का नाम सुनते ही मूड ऑटोमेटिकली थोड़ा बेटर नहीं हो जाता? मतलब चाहे ऑफिस हो, कॉलेज हो या घर का काम, फ्राइडे एक छोटी सी उम्मीद लेकर आता है कि बस वीकेंड अब ज्यादा दूर नहीं है। आज हम बात करेंगे इसी फ्राइडे फीलिंग की, आपके परफेक्ट वीकेंड्स की, फ्राइडे रिचुअल्स, छोटी छोटी खुशियों की और उन प्लान्स की जो कभी बनते ही नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप तक ही रह जाते हैं। आपका फ्राइडे मूड क्या है? सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। बने रहिए सिर्फ यहाँ, क्योंकि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे।

दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अल्फा जन में। मैं हूं ज्योतिका और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो दिन जिसका इंतजार शायद मंडे से ही शुरू हो जाता है। जी हाँ, यू गेस्ड इट वेरी राइट, मैं बात कर रही हूँ फ्राइडे की। कभी नोटिस किया है आपने, फ्राइडे का जो अलार्म होता है थोड़ा कम

इरिटेटिंग लगता है। ऑफिस या कॉलेज का वर्कलोड शायद उतना ही होता है, मीटिंग्स भी होती हैं, असाइनमेंट्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक आवाज चल रही होती है, बस आज का दिन निकल जाए, फिर दो दिन सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। वैसे मुझे एक आप बात बताना, आप फ्राइडे को किस कैटेगरी में आते हैं, मतलब आप किस कैटेगरी में आते हैं फ्राइडे के दिन। एक कैटेगरी होती है जो थर्सडे नाइट से ही प्लान्स बनाना शुरू कर देती है, रेस्टोरेंट कौन सा जाना है, मूवी कौन सी देखनी है, या किस टाइम मिलना है किसी से, किस दोस्त को कहाँ से पिक करना है। और दूसरी कैटेगरी वो होती है जो फ्राइडे शाम तक भी कहती है कि देखते हैं क्या प्लान बनता है। और फनी बात पता है क्या है, कभी कभी बिना प्लान के जो प्लान्स बनते हैं ना, वो सबसे बेस्ट प्लान्स होते हैं। कभी अचानक आइसक्रीम खाने निकल जाना, कभी रात के 11 बजे चाय पीने चले जाना, कभी टेरेस पर फैमिली के साथ बैठकर सिर्फ और सिर्फ लंबी बातें करना। वीकेंड का मतलब सिर्फ एक्सपेंसिव आउटिंग्स नहीं होता, कभी कभी एक कप चाय और अपने लोग ही पूरा वीकेंड को परफेक्ट बना देते हैं। तो आपके लिए परफेक्ट वीकेंड क्या होता है, किस चीज से शुरू होता है, क्या एक फोन कॉल, आपका फेवरेट फूड, लॉन्ग ड्राइव, या सिर्फ ये फीलिंग कि कल अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा। सोचिए और मुस्कुराइए, क्योंकि अब इस फ्राइडे वाली पॉजिटिविटी को थोड़ा और बढ़ाते हैं ना।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
3: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
2: क्या ये जांच उपलब्ध है?
4: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
5: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
4: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
5: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
6: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। Good morning, Delhi NCR. Always wherever you are. 102.6 आपके लिए।
8: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
9: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
8: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
9: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
10: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे हैं अल्फा जैन सिर्फ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। चलिए एक इमेजिनेशन गेम खेलते हैं। सोचिए अगर आज शाम को आपसे कोई कहे कि मंडे कैंसिल हो गया है, हाँ जी मतलब पूरा एक एक्स्ट्रा दिन मिल चुका है आपको, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ट्रैवल, शॉपिंग, मूवी मैराथन, या बस पूरा दिन बिना किसी गिल्ट के आराम से सोएंगे? मुझे लगता है हर इंसान के दिमाग में एक छोटा सा वीकेंड विशलिस्ट जरूर होती है। हम सोचते हैं कि इस वीकेंड गिटार सीखेंगे या डांस सीखेंगे, बुक फिनिश करेंगे, वर्कआउट शुरू करेंगे या अपना रूम साफ करेंगे। लेकिन फिर अचानक से संडे आ जाता है, संडे की शाम आ जाती है और फिर हम मन ही मन कहते हैं कि चलो ठीक है, ये सब अब अगले वीकेंड कर लेंगे। और सच कहूं, इसमें कुछ गलत नहीं है,

हर वीकेंड प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी वीकेंड का पर्पस सिर्फ रिचार्ज होना होता है। पूरे हफ्ते हम डेडलाइंस के पीछे भागते ही रहते हैं, बस भागते ही रहते हैं, कभी ऑफिस, कभी कॉलेज, कभी घर की जिम्मेदारियां। लेकिन फ्राइडे हमें याद दिलाता है कि हम मशीन थोड़ी हैं। थोड़ा रुकना जरूरी है, थोड़ा हंसना भी और अपने लिए वक्त निकालना भी। और अगर इस वीकेंड आप कोई बड़ा प्लान नहीं बना पाए हैं तो प्लीज गिल्टी मत फील कीजिएगा और सोशल मीडिया तो जरूर मत देखिएगा, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं ना तो हम खुद ही उस लूप में फंस जाते हैं। क्योंकि एक अच्छी सी चाय, आपकी फेवरेट प्लेलिस्ट, मम्मी के हाथ का खाना या किसी अपने के साथ आधा घंटा बैठकर बात कर लेना, कभी कभी वही वीकेंड का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट बन जाता है। तो बताइए ना, आप इस वीकेंड किस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं? सोचिए सोचिए सोचिए सोचिए।

दोस्तों आप सुन रहे हैं अल्फा जैन और मैं हूं ज्योतिका। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करती हूं आपके साथ। देखिए, फ्राइडे हर इंसान के लिए एक ही दिन होता है ना, लेकिन उसका मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। एक स्कूल स्टूडेंट के लिए फ्राइडे का मतलब है नो यूनिफॉर्म टुमारो। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए फ्रेंड्स के साथ कैंटीन से कैफे तक का प्लान। कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स के लिए लैपटॉप बंद करते ही वो सांस, वो लंबी जो सांस, रिलीफ की सांस होती है। जी हाँ, पेरेंट्स के लिए एक ही बात होती है कि चलो इस वीकेंड बच्चों के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। और कुछ लोगों के लिए फ्राइडे का मतलब होता है अपने होम टाउन जाना, ट्रेन पकड़ना या बस मम्मी के हाथ का वो लाजवाब खाना खाना। देखिए, मेरे मुंह में भी पानी आ गया। देखा जाए तो फ्राइडे सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं, एक इमोशन है, एक रिवॉर्ड है, पूरे हफ्ते की मेहनत का एक रिजल्ट है। लेकिन एक बात और भी है कि वीकेंड सिर्फ बाहर जाने का नाम नहीं होता। कभी अपने पेरेंट्स के साथ बिना फोन देखे डिनर करना भी वीकेंड है। कभी किसी दोस्त को सिर्फ ये पूछना कि और बता कैसा चल रहा है सब, ये भी तो वीकेंड है। कभी अपनी फेवरेट डायरी खोलकर दो पन्ने लिख लेना या बालकनी में बैठकर बारिश को देख लेना, ये भी तो वीकेंड है। हम अक्सर सोचते हैं कि हैप्पीनेस तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन असल में हैप्पीनेस अक्सर फ्राइडे की छोटी छोटी बातों में छुपी होती है, है ना। तो इस वीकेंड सिर्फ फोटोज कलेक्ट मत कीजिए, कुछ यादें कलेक्ट कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए, या अपने फैमिली के साथ, या अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, या फिर अकेले ही एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाइए।

अगर कोई पूछे आपसे वीकेंड पर लॉन्ग ड्राइव पर चल, तो प्लीज चल लेना, चले जाना, बहुत मजा आएगा। क्योंकि कई बार ना लाइफ आपको मौके देती है और हम ये सोचते हैं नहीं आज मूड नहीं है, आज ये प्लान वो प्लान, और फिर वो लॉन्ग ड्राइव का प्लान रह ही जाता है। देखो मौसम भी अच्छा है, कहीं ना कहीं बारिश ज़रूर हो रही होगी, मॉनसून की नॉक नॉक शुरू हो चुकी है। लेकिन साथ ही साथ आपसे एक छोटा सा सवाल और पूछती हूँ, पूरे हफ्ते में आप कितनी बार अपने फेवरेट लोगों के साथ बिना किसी जल्दबाजी के बैठते हो? सोचिए ज़रा, शायद बहुत कम। मंडे से फ्राइडे तक ज़िंदगी इतनी फास्ट चलती है, कब सुबह होती है कब रात पता ही नहीं चलता, किसी का ऑफिस लेट तक चलता है, किसी की क्लासेस, किसी के घर की जिम्मेदारियाँ, और फिर अचानक फ्राइडे आ जाता है जो हमें एक छोटा सा रिमाइंडर देता है कि रिलेशनशिप्स भी रिचार्ज मांगती हैं। कभी मम्मी के साथ चाय पी लीजिए, पापा के साथ थोड़ी देर वॉक पर चले जाइए, दादा दादी या नाना नानी के पास बैठकर उनकी पुरानी कहानियां सुनिए, और अगर आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो सिर्फ 2 मिनट का वीडियो कॉल लगता है, 2 मिनट किसी का दिन बन जाता है। बिलीव मी, किसी अपने को ये पूछना कि आप कैसे हो उनका वीकेंड स्पेशल बना देता है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस वीकेंड सिर्फ और सिर्फ आपको ये थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो भी ठीक है। कभी एक अच्छी कॉफी पी लीजिए, कभी बिना किसी वजह के वॉक पर निकल जाइए, कभी अपने फेवरेट प्लेलिस्ट लगाकर बस खिड़की के पास बैठिए। मी टाइम सेल्फिश होना नहीं होता, बहुत जरूरी है, इट्स सेल्फ केयर। तो इस वीकेंड एक काम जरूर कीजिएगा, किसी एक इंसान को अपना वक्त दीजिए और थोड़ा सा वक्त खुद को भी दीजिए, है ना। लीविंग यू विद दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग, विद दिस ब्यूटिफुल थॉट।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
4: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
6: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

वेलकम बैक आफ्टर द स्मॉल एड ब्रेक. मैं हूँ ज्योतिका और आप सुन रहे हैं अल्फा जैन. अब थोड़ी आपसे ये बात करती हूँ कि जो फ्राइडे की शाम होती है ऑलमोस्ट सबके दिमाग में एक ही बात आती है, मज़ेदार खाना मिल जाए तो मज़ा आ जाए, है ना. वीकेंड का पहला प्लान अक्सर यही होता है कि आज कुछ अच्छा खाते हैं. किसी को स्ट्रीट फूड पसंद होता है, किसी को पिज्ज़ा, किसी को गर्मा गर्म राजमा चावल और कुछ लोगों के लिए मम्मी के हाथ के आलू पराठे. ओहो, दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी होते हैं. लेकिन मुझे लगता है खाने का टेस्ट सिर्फ उसकी रेसिपी में नहीं होता बल्कि उसकी कंपनी में होता है जिसके साथ आप ये शेयर करते हैं. एक ही चाय ऑफिस में अलग बिल्कुल लगती है, लेकिन वही चाय बचपन के दोस्त के साथ रोड साइड स्टॉल पर एकदम अलग लगती है. एक ही डिनर होता है, रेस्टोरेंट में भी आप रोटी सब्जी खाने जाते हैं, लेकिन घर के डाइनिंग टेबल पर इसका अलग मज़ा होता है. लेकिन यादें हमेशा लोग बनाते हैं, याद रखिएगा. तो इस फ्राइडे अपने फेवरेट लोगों के साथ फेवरेट मील शेयर कीजिए, और अगर आप अकेले रहते हैं तो खुद के लिए भी कुछ स्पेशल बनाइए या ऑर्डर कीजिए. कभी कभी खुद को ट्रीट देना भी जरूरी होता है. वैसे आपका अल्टीमेट फ्राइडे क्रेविंग क्या है, थोड़ा सोचिए, क्योंकि मुझे यकीन है इस सवाल के जवाब सुनने में आपको मजा आएगा, क्योंकि आपका दिल बोलेगा मजा आ गया, यही ऑर्डर करेंगे आज तो.

चलिए अब एक फन एक्टिविटी करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस वीकेंड आप सिर्फ 3 चीजें ही कर सकते हैं, ओनली 3, तो वो क्या होंगी? शायद किसी का जवाब होगा स्लीप, स्लीप और बस एक लंबी स्लीप। कोई कहेगा मूवी, शॉपिंग और कॉफी, और कुछ लोग कहेंगे फैमिली, क्रिकेट और घर का खाना। देखिए, हम सबका वीकेंड अलग होता है, लेकिन एक बात कॉमन होती है, हम सब मंडे से पहले थोड़ी सी हैप्पीनेस कलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी, इस वीकेंड एक छोटी सी बकेट लिस्ट बना लीजिए, ज्यादा लंबी नहीं, बस 3-4 चीजें। एक जैसे पुराने दोस्त को कॉल कर लेना, एक सनसेट देख लेना, 1 घंटा बिना मोबाइल फोन के रहना, या फेवरेट गाना रिपीट मोड पर सुनना, या फिर किसी बच्चे के साथ थोड़ी देर खेल लेना। बिलीव मी, लाइफ की सबसे खूबसूरत मेमोरीज अक्सर प्लान्ड वेकेशंस थोड़ी होती हैं, अनप्लान्ड चीजें होती हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स होती हैं। तो इस फ्राइडे सिर्फ वीकेंड का वेट मत कीजिए, वीकेंड को मेमोरेबल बनाइए, है ना?

दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है जब आज के अल्फाजन से मुझे आपसे इजाजत लेनी होगी। सच कहूं, फ्राइडे का सबसे खूबसूरत हिस्सा सिर्फ वीकेंड का आना नहीं होता है, बल्कि ये उम्मीद होती है कि अगले दो दिन हम थोड़ा सा अपने लिए भी जिएंगे। चाहे आप इस वीकेंड घर पर रहने वाले हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, फैमिली के साथ वक्त बिताएंगे या बस आराम करेंगे, मैं दुआ करती हूं कि ये वीकेंड आपके लिए सुकून, मुस्कान और बहुत सारी अच्छी यादें लेकर के आए। और हाँ, मंडे की जो टेंशन है ना, आप मंडे पर छोड़ देना, क्योंकि वो मंडे वाले ना मंडे को देख लेंगे। मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे थे अल्फाजन सिर्फ आकाशवाणी FM रेनबो पर। और मैं आपसे जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि टेंशन्स लेकर ना आप आगे बढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम अभी से प्रिपेयर करने लगते हैं, उफ मंडे को दोबारा ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, वेडनेसडे को वो करना है। अरे कल की कल पर छोड़ दीजिए, पहले आज को तो थोड़ा सा जी लीजिए। बस आपको इसी पॉजिटिव नोट के साथ यहाँ छोड़कर जाना चाहूंगी। आप अपनों का ख्याल रखिए, दिल से मुस्कराइए और एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी हमेशा बड़े मौकों से नहीं, छोटी छोटी खुशियों से खूबसूरत बनती है। मैं हूं ज्योतिका, आपसे लेती हूं इजाजत। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड और हाँ, खुश रहिएगा।

5 बज चुके हैं और लीजिए एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद BARC को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया। सरकार ने बैट BMC, एपॉक आई आयन और लोसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मिजोरम सरकार ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए शैक्षिक अवसरों को बेहतर बनाने के लिए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत राज्य में दृष्टिबाधित लोगों को सहायक तकनीक उपलब्ध कराए जाएंगे। युवा कार्यक्रम विभाग ने नई दिल्ली में माई भारत के लिए उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। पाकिस्तान के शेरानी झोब राजमार्ग दुर्घटना में एक यात्री बस के गहरी खाई में गिरने से 40 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग, वेलकम। और अब आप सुनेंगे सिटी लाइट्स। शहर से जुड़ी कुछ बातें होंगी, इन्फॉर्मेशन, कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हैं। सांझ के शो सिटी लाइट्स में आपके साथ हूं मैं, शैली भाषांजलि।

एब्सोल्युटली अट्यून्ड इनटू आकाशवाणी रेनबो और आप सुन रहे सांझ का शो सैटेलाइट्स। समय बता देती हूँ 5:08:30 हमारे स्टूडियो की घड़ी में एंड जुलाई का महीना। इट्स क्वाइट ब्यूटिफुल एंड इंस्पायरिंग। नहीं, बरसात की जो राहत शुरू हो गई, लेकिन पता है अलग लोगों के लिए ना ये मौसम थोड़ी सी अलग फीलिंग्स लाता है, अलग भाव लाता है। बहुत सारे लोग थोड़ा सा रोमांटिक, थोड़े से शायराना तो हो जाते हैं, लेकिन कहीं थोड़ा सा खोए खोए रहते हैं, बहके बहके रहते हैं। लेकिन कुछ में ये प्रयास की भीतर की यात्रा कुछ और थोड़ी सी गहन हो जाए, और कुछ बस पल में बहना, बारिश को निहारना, बढ़िया गाने सुनना। यस, फिलहाल आप सैटेलाइट्स में हैं जहां बढ़िया गाने आप तक पहुंचते हैं। मेरा नाम है शैली भाषांजलि।

गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू सिटी लाइट्स। और सिटी में क्या हो रहा है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है जिसका फर्स्ट हैंड फील आप ले सकते हैं। दिल्ली हाट जनकपुरी में जाकर के मैंगो फेस्टिवल चल रहा है, आने वाले दो दिनों तक चलेगा, यानी इस वीकेंड तक आम की प्रदर्शनी होगी, आम की लजीज खुशबू पूरे दिल्ली हाट में। और कहते हैं 400 से ज़्यादा वेराइटीज़ हैं वहाँ पर, एंड ईटिंग कॉम्पिटिशन है विच इज़ द फन पार्ट, और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए, गीत संगीत यानी पूरा इंतज़ाम है एंटरटेनमेंट का। मैं बता रही हूँ दिल्ली हाट के बारे में, जनकपुरी वाले जो दिल्ली हाट है उसके बारे में, जो इस वीकेंड तक ये मैंगो फेस्टिवल चलेगा। एंड यस, आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, धीरे धीरे हौली हौली चुपके चुपके समय तो बढ़ता ही है और हम आपके संग हैं सिटी लाइट्स में सांझ के शो में।

so we to speak our इसीलिए ये गुजारिश की ड्राइव एब्सोल्युटली केयरफुली. आई विश एंड आई होप एंड आई प्रे दैट यू आर ड्राइविंग एब्सोल्युटली केयरफुली. जब ड्राइव की बात आई है, ट्रैफिक की बात आई है, तो ट्रैफिक चलान के बारे में कुछ बात कर लेते हैं. अगर आपका चलान थोड़ा सा पेंडिंग है, जिसको हिंदी में कहते हैं लंबित है, तो ये खबर आपकी काम की है, क्योंकि 5 जुलाई से दिल्ली के ज़िला न्यायालय में और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ना ये इनके साथ मिलकर के दिल्ली में वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट शुरू करने जा रही है, वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट. अब इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? आपका जो लंबित चालान है, कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान है, उसको तेज़ी से निपटारा करना. अब दिल्ली के साथ ज़िला अदालत परिसरों में कुल 22 विशेष बेंच लगेंगी. दिस इज़ द डिटेल ऑफ इट. और हर बेंच में कहते हैं कि लगभग 700 चालानों की सुनवाई करेंगे, सो दैट वर्चुअल कोर्ट में ना लंबे समय से जो लंबित जो मामले हैं उनका जल्दी से सोल्यूशन निकल सके. आपका भी कोई ट्रैफिक चलान ऐसा है पेंडिंग, तो प्लीज़ इस सुविधा का लाभ उठा लीजिए. आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स और इसे सुनते रहिए.

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

जब शहर की बात होती है ना तो हरियाली की बात अनवरत ही आ जाती है। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हरियाली बहुत आवश्यक है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन जो प्रयास होते हैं उसको विशेष रूप से आप तक ले आना भी हमारा काम होता है। वन महोत्सव हर वर्ष होता है जुलाई में, स्पेशली द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, और वो चल रहा है। इसलिए वन महोत्सव 2026 दिल्ली में चल रहा है टिल द 7th of July, जिसका लक्ष्य है कि 70 लाख पौधे इतने लगाए जाएं और इसमें से 20 लाख पौधे जो है मुफ्त वितरित करना। सबसे बड़ी खासियत है पता क्या, वृक्ष रथ यानी ट्री ऑन व्हील। अब पौधे लेने के लिए आपको ना दूर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, दिल्ली के हर ज़िले में एक वृक्ष रथ लोगों तक मुफ्त पौधे पहुंचाएगा। लक्ष्य यही है कि हरियाली बढ़े, आप इसमें प्रयास करें। अब आपके इलाके की जो जलवायु है, मिट्टी है, उसके अनुसार जो पौधे होंगे ना वो दिए जाएंगे। उसका सही तरीका क्या होता है लगाने का, उसकी भी जानकारी देंगे वो जो साथ में आएंगे वृक्ष रथ में। और अगर आप अपनी सुविधा के अनुसार पौधे मंगवाना चाहते हैं तो ग्रीन ड्राइव पोर्टल पे जाकर के अपने स्लॉट को बुक कर सकते हैं। अब जो आपका कन्वीनियंट टाइम है, प्लेस है, समय है, वो चुन सकते हैं। और इट्स सो इंटरेस्टिंग कि हर पौधे की ना जियो टैगिंग और जियो फेसिंग की जाएगी, ताकि उसकी जो नर्चरिंग हो, उसकी जो देखभाल हो, उस पर निगरानी हो सके और पौधे स्वस्थ रूप से आगे बढ़ें। लक्ष्य तो यही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा हो, सुरक्षित भविष्य हो, सबका सम्मिलित प्रयास हो। आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स।

एक्चुअली ये बेहतर होगा सांझ के शो सिटी लाइट्स में, सिटी लाइट्स पे आधारित ये गाना, जरा सुनिए लिरिक्स और फिर आते हैं वापस और शहर से जुड़ी कुछ बातें करते हैं। सिटी लाइट्स, आज सिटी लाइट्स में आपके साथ हूं मैं शैली भाषा अंजलि।

0: city lights into the heart of darkness.
1: और सिटी की हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह बनती है कहानियां निरंतर, हजारों रोज रोज. आपकी कहानी बहुत खूबसूरत हो, बेहतर हो, जिसमें आपके जो किरदार हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत हो.

अच्छा मैम, दिल्ली रिज की कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली की भागदौड़ के बीच अगर कोई खुलकर सांस कहीं पर आप लेकर के जा सकते हैं शहर में, वो दिल्ली रिज ऐसा माना जाता है। अब इसकी कहानी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ना एक नई पहल की गई है, ताकि सब लोग इसके बारे में थोड़ा जान सके। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर ना दिल्ली रिज इंटरप्रिटेशन सेंटर की शुरुआत की है। अब यहाँ आने वाले लोग जान सकेंगे कि क्यों दिल्ली रिज को राजधानी के ग्रीन लंग्स यानी शहर के फेफड़े ये कहा जाता है। दिल्ली रिज को ग्रीन लंग्स कहा जाता है क्योंकि उसमें इतनी बायोडाइवर्सिटी है, इतना एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिकल जिसको कहते हैं ना, एक हिस्टोरिकल प्लेस है वो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक तरीके से इसे प्रस्तुत किया गया है। उद्देश्य है कि प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़े और अनमोल धरोहर जो हमारे शहर की होती है, हमारे देश की होती है, उसके संरक्षण का भी संदेश देना। अगर आप पटेल चौक, जी हाँ पटेल चौक, जिसका नाता हमारे से बहुत ज़्यादा है, आकाशवाणी के बिल्कुल पास है, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से अगर आप गुजरेंगे तो कुछ पल निकालिएगा और दिल्ली की हरियाली की इस अनोखी दुनिया से रूबरू हो जाइएगा। सैटेलाइट्स में आज आपके साथ हूँ मैं, शैली भाषांजलि।

आप सुन रहे हैं सिटीलाइट्स, और सिटीलाइट्स वो शो जहां शाम थोड़ी सी और जगमगा जाती है। और कहते हैं कि शाम को अगर लौटते वक्त आपके मन में थोड़ी सी शांति है, चेहरे पर थकावट के बावजूद एक हल्की सी मुस्कान है ना, तो समझ लीजिए आज का दिन कामयाब रहा, बेहतर रहा। एंड यू स्टे ट्यून्ड टू सिटीलाइट्स।

शफी, शफी, शफी।

गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू सिटी लाइट्स। अब सिटी की जब बात करते हैं ना, तो सिटी के बारे में कुछ कुछ बातें यूं ही जहन में चली आती हैं। शहर में किसी को ऊंची इमारतों के बीच थोड़ा सा आसमान चाहिए, तो किसी को इस भागती व्यस्त सड़कों पर दो पल का सुकून चाहिए। यही तो है जिंदगी, जिंदगी की खूबसूरती, न जाने कितने अनुभव। वेल, आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स। मेरा नाम है शैली भाषांजलि, कुछ पल और आपके साथ हूँ। आप गाने सुनिए और FM रेनबो से ट्यून्ड इन रहिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, प्रस्तुत हैं समाचार। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 आंतरिक न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब जब पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं छोड़ेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद BARC को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। सरकार ने बैट BMAS, जपोक IIN और लासंगी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्य पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। युवा कार्यक्रम विभाग ने नई दिल्ली में माय भारत के लिए उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। पाकिस्तान के शेरानी जोब राजमार्ग दुर्घटना में एक यात्री बस के गहरी खाई में गिरने से 40 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग, 6:02 हुए हैं, हमारा शो चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। मैं हूं आपके साथ सुनीता शाहबादी, वेलकम टू द शो। और आज मेरा प्रश्न भी बनता है और मैं पूछूंगी जरूर, आप तैयार हैं?

ना प्रश्न के लिए मैं पूछूंगी अभी कि अगर आपका फ्रिज जो कि आप बहुत इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज का इस्तेमाल कौन नहीं करता है, और गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा पानी पीने के लिए, चीज़ें रखने के लिए, यू नो वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो अगर आप फ्रिज जब खोलते हैं तो उसमें अगर फ्रिज आपसे बातें कर सकता और पूछता कि भाई आपको मेरे को आपसे शिकायत है, तो क्या कहता? अगर फ्रिज को आपसे शिकायत होती तो वो क्या कहता? क्यों उसको शिकायत होती? ऐसा क्या करते हैं हम फ्रिज में जो उसको शिकायत होती आपसे? अगर आज आप अपना फ्रिज खोलेंगे, वो शिकायत करें, तो वो क्या कहेगा? आप बताइए हमें 9868107070 पर। जल्दी से बताइए, मैं बहुत अच्छे अच्छे गाने चलाने वाली हूँ। मैं हूँ आपके साथ सुनीता शाहबादी, ये स्टेशन ऑफ द नेशन 102.6 FM, दिल से दिल तक।

ऑलराइट जी, हमारे पास मैसेजेस आनी शुरू हो गई हैं। एंड पंकज कहते हैं अमरावती महाराष्ट्र से, गुड इवनिंग मैम, कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स में हम आपको सुन रहे हैं। अगर मैं अपना फ्रिज खोलता तो फ्रिज मुझसे कहता कि बार बार फ्रिज का दरवाज़ा खोलते और बंद करते हो, एक बार खोलकर अपनी चीज़ें डाला करो या निकाल कर इस्तेमाल किया करो, मुझे बार बार खोलकर परेशान मत करो। ओके सुनीता, यदि सवाल मेरा फ्रिज मुझसे करता तो पूछता क्यों मुझे बार बार खोलकर परेशान कर रहे हो, क्या एक बार में ही काम कर नहीं सकते जिससे मुझे समय मिले तो थोड़ा मैं सुस्ता लूँ। जब मैं ख़राब हो जाता हूँ तो गर्मी में लोग बेचैन क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ठंडा पानी नहीं मिलता, खाने का सामान ख़राब कर देता हूँ। अनिल शर्मा सरिता विहार से। ये तो है, लेकिन एक बात है ना, फ्रिज तो हमें बार बार खोलना पड़ता है। एक बार आपने पानी निकाल दिया तो दूसरी बार भी अगर आपको प्यास लगी तो वो तो तब तक गर्म हो जाएगा या आपने वो पी लिया होगा। शुभ संध्या प्रिया आरजी सुनीता शाहबादी जी, मुझे भी आराम करने दो ना यार, यदि मेरा फ्रिज मुझसे शिकायत करता तो यही कहता, मुझे भी थोड़ा आराम करने दो। हीरामणि वर्मा भाटापारा छत्तीसगढ़ से। ओके ढलती शाम की खामोशी कुछ कहती चली गई, यादों की महफिल फिर से सजती गई, सूरज तो डूब गया अपनी मंजिल की ओर मगर उम्मीद की लौ दिल में जलती चली गई। मोहम्मद सरफराज आलम जौकी दर्शना बाजार से, मेरे सवाल का जवाब किधर है। नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ओके गुड इवनिंग। अच्छा आपने कहा कि मेरा फ्रिज तो केवल यही कहता, अबे कभी सफाई भी कर लिया करो। ये तो बहुत लोगों के साथ होता। ओके ये मैंने पढ़ लिया, आप भी मैसेज कर दीजिए और बताइए कि अगर आपका फ्रिज आप आज खोलेंगे और आपका फ्रिज आपसे बातें करेगा तो आपको क्या कहेगा आपका फ्रिज। मैसेज मसाला मिक्स में आज ही सुनीता शाहबादी को नमस्कार। फ्रिज कहता मैं गर्मी में तुमको ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम देता हूँ, मुझे थोड़ा सा तो आराम लेने दो। गुनौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली, शुक्रिया धन्यवाद आपका जी। जावेद आलम मोहम्मद जयान आलम और जयपुर से कि नाइस सॉन्ग्स, हाँ लेकिन सवाल भी मैंने पूछा था उसका भी जवाब दे दीजिए। सवाल मेरा है कि अगर आज आप फ्रिज खोलेंगे और आपका फ्रिज जो है आपसे कोई शिकायत करने वाला है तो वो या आज आपसे क्या कहेगा। आज की बात कर रही हूँ, सिर्फ आज की दिन, रोज़ की बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग जब जिस दिन फ्रिज लाया उसी दिन उसकी सफाई होती है, उसके बाद जब वो ख़राब होके निकल जाता है घर से तभी और उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो अगर आज आपका फ्रिज आपसे कोई शिकायत करता तो वो आपसे क्या कहता, बताइए हमें 9868107070 पर।

ऑलराइट जी, मैसेज आया, हमारा फ्रिज अगर बोलता तो मेरी से यही शिकायत करता कि भाई सादा पानी पिया करो, क्योंकि हर वक्त आप घर के अंदर नहीं रहते, बाहर भी तुम्हें रहना पड़ता है, कभी गर्म कभी ठंडा, उधर बिजली का बिल, उधर डॉक्टरों का बिल भी बराबर। तो ये सब ना हो इसके लिए तुम सादा पानी पियो और अपनी सेहत का ध्यान रखो। सोनू बिजनौर से ज़रूर यही कहता। और ये लिखा है कि नमस्कार सुनीता जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार मिश्र है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। और आज के टॉपिक पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा फ्रिज हमसे बात कर पाता तो ये कहता कि मालिक अपना झूठा मेरे अंदर मत भरो, मेरे अंदर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गैस बनी हुई है। ओके आप झूठा फ्रिज में रखते हैं? ओके सल्यूट्स। मैं अगर फ्रिज खोलता तो फ्रिज मुझसे कहता कि क्यों खाली रखा हुआ है, कुछ तो सामान रख मेरे अंदर। प्रकाश गोगिया कड़कड़ूमा दिल्ली से। ओके एंड हाय गुड इवनिंग डियर सुनीता, कैसे हैं आप? मैं तो आज के टॉपिक पर यही कहना चाहूँगी कि जब हमारा फ्रिज मुझसे कोई कंप्लेन करता तो मैं वो यही कहता क्योंकि अपने फ्रिज की डेली सफाई करती हूँ मैं, वो कुछ नहीं कहता। ओके कोई कंप्लेन नहीं करता। ओके और मैं ही ऑफ करके सब चीज़ों को रखती हूँ और बाहर निकलती हूँ तब भी

ऑफ करके ही चीज़ें एक साथ निकालती हूँ। पर आप फ्रिज को ऑफ क्यों करते हो जब आप कहीं जाते हो? फ्रिज को कभी ऑफ नहीं करना चाहिए। हाँ, आप उसकी सफाई करते हैं ऑफ करके, वो ठीक है। आई डोंट नो, आई मीन बट गुड गर्ल, हमारी आदत होती है कि फ्रिज में हम सामान रखते चले जाते हैं और उसको एक अलमारी की तरह यूज़ करते हैं। बेचारा फ्रिज भरता जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन यदि फ्रिज बोलने लगे तो कहेगा, अरे भाई बस करो, अब मुझ में इतना सामान ठूस दिया है, मुझे भी थोड़ा सांस लेने दो, मुझ पर रहम करो। फ्रिज की कैपेसिटी के अनुसार ही उसमें सामान रखना चाहिए। हम जो मर्जी आए रख देते हैं जो महकने लगता है। कैलाश शर्मा गुरुग्राम से। एब्सोल्युटली। और आजकल तो ये हो गया कि गर्मी में बाहर मसाला ख़राब हो जाता है तो आप वो भी उसी में भर देते हैं, बेचारा फ्रिज। FM रेनबो, नमस्ते मैम। मैं अगर फ्रिज खोलूँगा तो वो यही कहेगा कि भैया सामान उतना ही देना जितना मैं रख सकूँ। उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनोज कुमार, सोनित कुमार ख्याला से, और सुदर्शन मुखी और अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से कहते हैं कि सादर प्रणाम, कार्यक्रम सुन रहे हैं हम। हमारा फ्रिज हमारे से कभी कोई शिकायत कर ही नहीं सकता क्योंकि हम उसकी रोज़ साफ सफाई करते हैं। वाह, हमारा फ्रिज तो हमारे से बहुत खुश है। वाह क्या बात है, आपकी संध्या और जीवन बहुत शुभ और सुखद हो। कोटि कोटि धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और ये लिखा है कि फ्रिज हमसे कोई शिकायत कर ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास फ्रिज है ही नहीं। हमें जब ज़रूरत होती है तो हम दो बार चलाकर ठंडा पानी पी लेता हूँ। कौन सा क्या चलाकर ठंडा पानी पीते हैं आप? रंजीत कुमार मंडल, सिकटी अररिया बिहार से। ओके, एंड दिस इज़ मैम, मेरा फ्रिज तो यही बोलता कि गॉड ब्लेस यू, क्योंकि सर्दी में आराम और गर्मी में थोड़ा काम कोई बहुत ही देता है। जावेद आलम जी, आपकी हैंड राइटिंग सीरियसली, थोड़ा लफ्ज़ों को ठीक से भेजिए, और क्योंकि पढ़ना मुझे है और वो समझ में नहीं आ रहा। आप क्या, आप शायद यही कहना चाहते हैं कि आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल गर्मियों में करते हैं। महेश बोरा अजमेर राजस्थान से कहते हैं कि नमस्कार, 24 घंटे तो करंट लगा कर रखते हो, फिर क्यों बार बार परेशान करते हो, थोड़ा तो चैन से लेने दो। ओके, दिस इज़ मैम, नमस्कार। अगर मेरे घर का फ्रिज मेरे से बातें करता तो कहता मैं हर मौसम में ठंडा रहता हूँ, पर तुम्हारा पारा हमेशा क्यों चढ़ा रहता है? ओके, ललित राणा डेरा बस्सी पंजाब से। लेकिन आपका पारा क्यों चढ़ा रहता है? थोड़ा ठंडा पानी पिया कीजिए और थोड़ा आराम से बैठ जाइए, फिर आपका पारा ठंडा हो जाएगा। नाउ आई एम प्लेइंग अनदर सॉन्ग। आप हमें मैसेज भेजिए कि अगर आज आप अपना फ्रिज खोलेंगे और आपका फ्रिज आपसे शिकायत करेगा तो वो आपसे क्या बोलेगा। 9868107070 है नंबर।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

गुड इवनिंग जी, मोहम्मद इम्तियाज़ और सलमा बेगम जवाहर कैम कीर्ति नगर से कहते हैं कि फ्रिज कहता कि तेरा कुछ सामान मेरे पास पड़ा है क्योंकि बहुत सामान रख के निकलता ही निकालते ही नहीं हो, कहाँ से लाते हैं अभी ओके तेरा कुछ सामान मेरे पास पड़ा है ओके मैम, मेरा ये कहना है था कि फ्रिज ऑफ करके जाते हैं, मेरा कहने का ये था जब भी खोलते हैं उसको खोलने से पहले हमेशा ऑफ करते हैं, खोलने से पहले ऑफ करते हैं एंड जो भी कोई सामान रखना होता है I don't know, this is so funny. एक बार ही खोलते हैं एंड कोई सामान रखते भी हैं तो ओके

यू हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम, सीरियसली ऐसे कौन करता है? फ्रिज ऑफ करके फिर सामान निकालते हैं, फिर ऑफ करके उसमें डालते हैं, तो आप उसको ऑन कब रखते हैं? आई डोंट नो, आई मीन व्हाई डू यू डू सो? इसमें कितनी बिजली जाएगी? ओके ओके, गॉड ब्लेस यू. दिस इज लड़के लड़के का पानी पीना बहुत अच्छा होता है. लड़के लड़के का पानी पीना बहुत अच्छा लगता है. कुमार गौरव इंदुरकर नेशनल पार्क. यू मीन टू से मतलब बाहर का पानी पीना, मतलब सादा पानी पीना. ओके. हेलो मैम, नमस्ते. मैं मधुबनी ज़िला बिहार से उमेश बोल रहा हूँ. जब भी फ्रिज खोलता हूँ तो मेरा फ्रिज है, मेरा फ़र्ज़ है और भाई ये सामान, फ्रिज कहता है कि भाई ये सामान रख दिया तो मेरे खाने के लिए, इसे खाओगे तो सही, भूल गए क्या? मैं जब भी कोई फ्रूट लाकर रख देता हूँ और जब भी फ्रिज खत्म तभी मैं देखता हूँ कि उसमें फ्रूट्स भी रखे थे. बहुत बुरी स्मेल आती है. गॉड ब्लेस यू. रिलीज सम लोड डियर इन समर, आई थिंक यही कहेगा मेरा फ्रिज. शैलजा फ्रॉम नीमराना. एब्सोल्युटली रिलीज सम लोड. ओके, गुड इवनिंग सुनीता जी. मेरा फ्रिज मुझसे ये शिकायत करता कि मुझ में रखे हुए ठंडे पानी को क्यों नहीं पीते, मटके में रखे पानी को ही क्यों पीते, और मुझ में रखी हुई आइसक्रीम पड़े पड़े ख़राब हो रही है, उसे क्यों नहीं खाते? अरुण कुमार फ्रॉम भटिंडा. ओके, आप खाते क्यों नहीं है, उसमें रख के भूल जाते हैं. गुड इवनिंग आरजे. नेम हितेंद्र दास, असम से. और मेरे सवाल का जवाब, एंड दिस इज सिस्टर सुनीता जी. नमस्ते. गर्मी के इस मौसम में दूर पर्वतों से आती हुई ठंडी हवा के झोंके की तरह आपकी सुमधुर आवाज़ में आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लग रहा है. रेडियो थोड़ा देर से ट्यून इन किया. बूंदों की सरगम गिरी, मन दीवाना हो गया. पेड़ पंछी गा उठे, दिलकश तराना हो गया. धूप गर्मी और तपिश से बेपनाह राहत मिली. आप आए शो में तो मौसम सुहाना हो गया. ओके प्रेमचंद जी, मेरे सवाल का जवाब कहाँ है? थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा लिखा है. जिनके घर में नल होता है वो लोग 5 मिनट तक चलाकर ठंडा पानी निकाल लेती हैं. गांव में तो नल और कुएं होते हैं. एब्सोल्युटली गांव में फ्रिज तो होने की ज़रूरत नहीं पड़ती. आदिल कमर गुन्नौर जी. और यहाँ अगर हम नल खोलेंगे तो उसमें ठंडा पानी तो नहीं आता, उसमें तो उबलता हुआ खौलता हुआ पानी आता है. हेलो मैम, आई एम भुवनेश फ्रॉम अशोक विहार दिल्ली. हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन. ऑन टुडेज टॉपिक आई वुड लाइक टू से दैट इफ माई फ्रिज कुड टॉक इट वुड से टू मी दैट यू कीप वेरियस आइटम्स इनसाइड मी टू एन्जॉय माई कूलनेस बट यू एन्जॉय द कूलनेस ऑफ ओनली द एयर कंडीशनर. व्हाई डोंट यू योर सेल्फ कम इनसाइड मी? ओके ओके, दैट्स सो फनी. ओके, आदाब. हम भी आपको सुन रहे हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से. फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा. भाई सवाल का जवाब भी दिया करें. और फ्रिज बोलेगा मैं ठंडा रखने के लिए बना हूँ, पुरानी यादों और एक्सपायरी डेट का संग्रहालय बनाने. ओह माय गॉड, दिस इज सो फनी. फ्रिज बोलेगा मैं ठंडा रखने के लिए बना हूँ, पुरानी यादों और एक्सपायरी डेट का संग्रहालय बनाने के लिए नहीं. मोहम्मद सरफराज आलम, दिस वॉज द मोस्ट हिलेरियस मैसेज. ओके, मैं संग्रहालय नहीं हूँ. एक्चुअली पीपल डू दैट, यू नो. बहुत एक्सपायरी डेट का सामान आपको मिलेगा फ्रिज में. दिस इज़ अ गुड वन, आई वॉन्ट टू रीड इट अगैन. मैं ठंडा रखने के लिए बना हूँ, पुरानी यादों और एक्सपायरी डेट का संग्रहालय बनाने के लिए नहीं. ओके, नमस्कार, आपको कैसे हैं आप? मैं भी एकदम अच्छा हूँ. रोज़ मैं और मेरा परिवार आपको प्रोग्राम सुनते हैं. प्रोग्राम में अच्छी आवाज़ें होती हैं. थैंक यू सो मच. ज़िला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रितिक, बलवीर सिंह. लेकिन सवाल का जवाब कहाँ है भाई? गुरु धाकड़, मध्य प्रदेश, उज्जैन ज़िले के बेड़ावन गांव से. मेरा फ्रिज अगर बोलता तो कोई बोलता नहीं, डायरेक्ट कूट देता हमको. सीरियसली आई लाइक दिस क्वेश्चन. सीरियसली आई लव द मैसेजेस टुडे. बहुत अच्छी अच्छी मैसेजेस आ रही हैं. मैम सामान रखने के बाद ऑन ही कर देते हैं, ऐसे इसलिए करते हैं जैसे गैस बाहर होने के लिए. गॉड ब्लेस यू अंशी. कहाँ है आपके चरण? सीरियसली आई डोंट नो हाउ यू डू दैट. ओके, दिस इज शिव संध्या. शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए हमारी बधाई स्वीकार करें. पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, धन्यवाद. आपका फ्रिज आपसे बोलता नहीं है. शुभ संध्या आज ही मैम.
आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। मेरा फ्रिज बोलता, भाई मुझे कभी साफ भी कर तो दो, केवल इस्तेमाल ही करते हो, कार्यक्रम और गाने अच्छे लग रहे हैं। देहरादून से आलोक पंवार और मिनी। ओके, आई एम लविंग द मैसेजेस। आपको अगर कुछ बात करनी हो आपने फ्रिज से, बल्कि फ्रिज आपसे कंप्लेन करेगा आज के दिन, अगर आप फ्रिज खोलेंगे तो वो आपसे शिकायत करेगा, वो क्या बोलेगा बताइए हमें जल्दी से 9868107070 पर। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपकी मैसेजेस पढ़कर। 6:38 हुए हैं और मैं हूँ आपके साथ सुनीता शाहवादी। अगला गाना आपके लिए, तब तक आप ढेर सारी मैसेजेस भेजिए 9868107070।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

ऑलराइट जी, मेरे पास मैसेजेस आ रही हैं और मैं पढ़ना चाहूँगी। शुभ संध्या आरजी मैम, आज का टॉपिक अच्छा है। मेरा फ्रिज बोलता भाई मुझे साफ भी कर दो, केवल इस्तेमाल ही करते रहते हो। ओके, ये तो मैंने पढ़ा था। एंड दिस वन इज़, नमस्कार, हम अभी अभी एफएम रेनबो से जुड़े हैं। आज का विषय क्या है हम सुन नहीं पाए। अरे वाह, गुड मॉर्निंग भैरूलाल वाकतारिया धाकड़ उज्जैन से मध्य प्रदेश। मेरा प्रश्न था कि अगर आप अपना फ्रिज खोलेंगे और उसे आपसे शिकायत करनी होगी तो आपका फ्रिज आपसे क्या बोलेगा। ओके, बताइए हमें। कांच से मोहम्मद फुरकान, सुनीता मैम गुड इवनिंग। वैसे तो हर बार ही आपका टॉपिक अच्छा होता है, लेकिन आज आपका टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बार बार फ्रिज खोलने पर फ्रिज भी हमें अंदर से गुस्सा करता रहता है, क्योंकि फ्रिज बोल नहीं सकता, बस बेचारा अंदर ही अंदर घुटता रहता है। सुनीता मैम, आप यकीन करना, बार बार फ्रिज खोलने के चक्कर में घर वालों से मेरी अनबन हो जाती है। जैसे थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीने के लिए बॉटल निकालनी होती है, फ्रूट निकाल कर खाना होता है, जूस बनाकर रखना होता है, तो इसलिए मैं बार बार फ्रिज खोलता हूँ तो मुझे डांट पड़ती है। ओके, दिस इज़ मैं मनीषा मगर लातूर महाराष्ट्र से। मेरा फ्रिज मुझे हर बार कहता है मुझ पर जो अपने सामान लदा है, क्या मैं कुली हूँ, आपको क्या मैं कुली लगता हूँ। और शायद सभी घरों का फ्रिज यही, उसका यही हाल है। उसे पर बहुत सारा सामान लदा हुआ होता है, बेचारा फ्रिज कुली की तरह सर पर बोझ लेकर खड़ा रहता है। मेरे साथ अंगद मगर, दीपक मगर, शुभांगी, आरती, काव्य असावरी, ये भी रेडियो सुन रहे हैं। हाय गाइस, फ्रिज को थोड़ा आराम दो। पर ये तो कहने की बात है, मेरा फ्रिज भी भरा पड़ा हुआ है, सीरियसली, बट आई हैव अ ह्यूज फ्रिज। ओके, महेश बोहरा, पर फिर भी उसमें सामान लदा पड़ा है, वो भी बेचारा ऐसे करता होगा। महेश बोहरा अजमेर राजस्थान से कहता है, मैडम जी आज का प्रोग्राम बहुत ही फ़नी है, श्रोताओं के मैसेज सुन सुनकर आपके साथ साथ हमारी भी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही, आई एम श्योर। ओके, नमस्ते, इन दिनों हम फ्रिज पर कुछ ज़्यादा ही जुल्म करते हैं, हमारा फ्रिज भी बेचारा अपनी औकात से ज़्यादा काम करता है। हम फ्रिज को तब ज़्यादा खोलते हैं जब हमें पानी पीना होता है। मैं अपने फ्रिज को समय समय पर बंद करके आराम देता हूँ। वाह, एक और, क्योंकि मैं प्राकृतिक संसाधन मिट्टी के मटके में रखे हुए पानी का अत्यधिक प्रयोग करता हूँ। फ्रिज को भी आराम मिलता रहता है, फ्रिज भी खुश रहता है और हम भी खुश रहते हैं। प्रेमचंद जी, बात तो ठीक है, बट फ्रिज में हम सिर्फ पानी नहीं रखते ना, दूध भी रखते हैं, दही भी रखते हैं, सब्जी भी रखते हैं, फ्रूट्स भी रखते हैं, क्या क्या नहीं रखते हैं फ्रिज में, मसाले तक रखते हैं। कभी कभी तो आजकल गर्मियों में जो बरसात का मौसम शुरू हो गया है तो उसमें तो बाहर हम मसाले रखते नहीं हैं, उसी में रख देते हैं। ऐसा नहीं होता आपके साथ, सिर्फ पानी नहीं रखते हम कि बाहर का पानी पियेंगे। मैं तो वैसे नॉर्मल पानी पीती हूँ, बट फ्रिज में बहुत सारा सामान तो भरा हुआ है। फ्रिज में आपको हर सामान ठंडा करने को यूं ही को ये नहीं मालूम कौन सा सामान कौन खाएगा, मुझे खोलकर बोलते हो यार आम रखे थे किसने लिए, मैं कौन सा खाता हूँ। मैं आंखें दिखा रहे हो मुझे क्यों दिखा रहे हो। फारूक अली खान कस्बा गुनौर से, अच्छा आपका फ्रिज आपको बोलता है कि आप फ्रिज खोल के मुझसे बोलते हो कि आम रखे थे कहाँ गए, मैं कौन सा खाता हूँ। एब्सोल्यूट

ये तो सही है. ओके, कल मैंने जैसे फ्रिज खोला, मेरा फ्रिज बोला स्वागत है सर. हमने बोला ऐसी क्या बात है भाई. फ्रिज बोला एक मंथ बाद आए हो साहब मेरे पास, क्योंकि बच्चे उपयोग कर रहे थे. ओके, ऑल राइट, आपका फ्रिज तो बहुत ही काम है. गॉड ब्लेस यू. मेरे खाला से यही फ्रिज था.

जब सही हो गया था, आई डोंट बिलीव दिस, जब तब रोता था, सारे कमरे रो रो कर पानी पानी हो जाते थे. ओके जावेद जी, आई डोंट अंडरस्टैंड, कोई फ्रिज में कपड़े कैसे रख सकता है? फ्रिज की लाइट बंद करेंगे. अच्छा, उससे क्या होगा, वो शिकायत नहीं करेगा? ओके, फिर एक और फ्रिज खोल बोलेगा, इतनी बार मत खोलो, मैं फ्रिज हूँ, टीवी का नया चैनल नहीं कि हर मिनट कुछ नया दिखाऊंगा. ओके, आपके मजेदार मैसेजेस थे दोनों, लेकिन दैट वन वाज अल्टीमेट. एक्सपायरी डेट का संग्रहालय, वाह वाह वाह, क्या बात है. होली चौक, उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, हमारा फ्रिज रात में खर्राटे बहुत जोर जोर से मारता है. ओके, आई अंडरस्टूड. हाय प्रोफेसर, हाय राहुल, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. हाँ, व्हाट्स अप, हैप्पी वीकेंड. इफ आई ओपन माई फ्रिज आई वुड प्रोबेबली से, हे इट्स 2 AM, पुट बैक दैट आइसक्रीम, यू नो यू विल रिग्रेट इट. ऑफ कोर्स, पर हम मानते नहीं है. 2 AM यू ईट आइसक्रीम, गॉड ब्लेस यू. ओके, संगीत के सितारे रेडियो लिसनर्स क्लब भी आपको अलग अलग जगह पर सुन रहे हैं. इतना उम्दा प्रोग्राम पेश करने के लिए और गीत सुनवाने के लिए आपका दिल से शुक्रिया. किसी भी, आप आदाब अर्ज कर रहे हैं, किसी भी गीत में शामिल कीजिएगा, आपका दिल से शुक्रिया. जी, मैं गीत तो बजा ही रही हूँ अच्छे से. हाय मैम, मेरा फ्रिज बोलता कि मेरे पर एक एहसान करना, कि मेरे पर कोई एहसान मत करना. अंकित भागपत से. अरे भाई रुक जाओ, मैं फ्रिज हूँ, कोई स्टोर रूम नहीं, इतना सारा आइटम ठूस दिया, थोड़ी सांस तो लेने दो. एक तो वैसे ही जगह नहीं है मेरे अंदर, ऊपर से मेरे माथे पर पूरा बाजार पटक कर भूल गए. मेरे माथे पर पूरा बाजार पटक कर भूल गए, अब माथा भी दुख रहा है मेरा. प्रवीण चौहान, खरगोन, मध्य प्रदेश. सीरियसली यू गाइज आर सीरियसली फनी. एंड सुनीता जी, फ्रिज से हमें एक बड़ी सीख मिलती है, हमेशा अपने गुस्से को और अपने स्वभाव में नम्रता बनाए रखो, क्योंकि फ्रिज में हमें हमेशा ही ठंडक मिलती है. एब्सोल्युटली. पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन जी, एब्सोल्युटली यू आर राइट, ये तो सबसे बड़ी सीख है. लेकिन फ्रिज को थोड़ा आराम दीजिए और उससे थोड़ा सा, मतलब बेचारे को थोड़ा सा आराम दे दीजिए. वैसे गर्मी है पर हमारे पास भी कोई चारा नहीं, क्या करें, वी हैव नो ऑप्शन बट टू यू नो जस्ट गो अहेड विद द फ्रिज एंड टू सोफाई ऑल सामान इन द फ्रिज.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम।
1: ऑलराइट, मेरे जाने का टाइम हो चला है। आई विल सी यू एट 8, बट बहुत सारे अच्छे मैसेजेस आज आए एंड एक्चुअली फनी। आई रियली लव्ड आउट हार्ट आउट, सीरियसली थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेजेस। गॉड ब्लेस यू। अपने फ्रिज पे थोड़ा रहम कीजिए, थोड़ा सा उसको सांस लेने दीजिए और थोड़ा उसको साफ करना भी ज़रूरी है। और सामान रख के भूल मचाइए, जो सामान यूज़ करना है यूज़ कर लीजिए, नहीं करना है तो उसे बाहर फेंक दीजिए, बिकॉज अदरवाइज एक अजीब सी वो स्मेल आती है उसमें। आपने लिखा है ब्यूटिफुल लवली सॉन्ग्स, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड फ्रिज है बड़े काम की चीज़, एब्सोल्युटली यू आर राइट, काम की चीज़ है, गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। गॉड ब्लेस यू ऑल, आई विल सी यू एट 8, टिल देन यू टेक गुड केयर, बाय बाय।

0: Okie dokie, hope you guys are enjoying the tracks over here right now on the show. Friday Fiesta with me, Dev, and yes, you just heard of Think of Me, a smash hit of the last year, 2025, and it was by electronic, well, it's by French DJs Hugel and David Guetta. And time right now exactly is 19:39, which is almost 7:40 p.m. And it's time for us to take a quick break over here right now. Don't go anywhere, we'll be right back after these messages.
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: आए हाय,
3: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग, वंस अगेन 8 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ फिर से सुनीता शाहवादी। दिस इज 102.6 एफएम स्टेशन ऑफ द नेशन। दिल से दिल तक ये है म्यूजिक मस्ती।

हेलो 9821026212 BPL अरे 9820026235 मैक्स टच छः

0: हद से दुश्मनों के खात्मे तक। ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि अभी भी निलंबित है। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर जाएंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। सरकार ने बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगा है। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद BARC को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिए हमारे साथ।

आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर समय हुआ है 9:07। मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा तिवारी, और प्रोग्राम जिसकी अभी भी शुरुआत हुई है उसका नाम है आपकी याद आती रही।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल, गया है बदल।

आकाशवाणी के FM रेनबो पर समय हो गया है 9:52, यानी हमारे अगले प्रोग्राम के आने का टाइम और मेरा यानी प्रज्ञा तिवारी का अगले एक घंटे के लिए जाने का टाइम। अभी आपसे मिलेंगे देवर्षि रावत, प्रोग्राम होगा वेस्टर्न म्यूज़िक का। मैं आपसे मिलती हूँ एक घंटे बाद। आपको छोड़े जा रही हूँ एक बेहद खूबसूरत गाने के साथ।

0: There we go. That was the band from Down Under. Yes, that was In Excess with Beautiful Girl, one of their smash hit tracks that really rose them to stardom. Alrighty, time right now is 31 minutes past 10 p.m. We'll take a quick break over here right now. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: Dil ke tarane, gaane naye purane. Non-stop film music rozana subah 9 se 10 baje tak. Rainbow 102.6 par.
2: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि अभी भी निलंबित है। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर जाएंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। सरकार ने बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगा है। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण 2,000 अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई हैं। सूचना

और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद BARC को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिए हमारे साथ।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली, कुकु
1: आए हाय।
0: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

शुरुआत का तो देखिए बताने पर अंत होने को है, क्योंकि अब बजने को है 12 यानी वो समय जब मैं आपसे लूंगी विदा। गानों का सिलसिला एफएम रेनबो पर जारी रहेगा, पर हमसे आपके अब मुलाकात होगी अगले शुक्रवार इसी चैनल इसी प्रोग्राम में। फिर होगी बात, तब तक के लिए आप गुनगुनाते रहिए जिंदगी की हर पल बदलती धुनों को। प्रज्ञा तिवारी की तरफ से बाय। किसी की खूबसूरत आंखों के समंदर के किनारे।

12 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वो बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण 2,000 लोगों की अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई हैं और विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में सबसे ज्यादा मैच जीतने के मामले में रॉजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की। ये थे आज के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 12:02 और 31 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम जीरो आवर शो। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं जो जीता वही सिकंदर फिल्म के इस गीत के साथ, आवाजें उदित नारायण और साधना सरगम की हैं।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

लव ब्रेकअप्स जिंदगी, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब आप सुनेंगे, आवाज़ें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु कु
1: हाय
0: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

दोस्तों आप सुन रहे हैं जीरो आर शो मेरे यानी अर्चना दिसारिया के साथ। और अब जो गीत आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म करीब से, आवाज़ें कुमार सानू और संजीवनी की।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: वांटेड फिल्म का गीत आइए सुनते हैं, आवाजें शान और श्रेया घोषाल की।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एक बजने को है, आइए अब सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वो बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना अब बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है। प्रधानमंत्री सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। इस्पात मंत्रालय 9 तारीख को नई दिल्ली में इस्पात आयात से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए एक ओपन हाउस सम्मेलन आयोजित करेगा। और विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में सबसे ज्यादा मैच जीतने के मामले में रॉजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की। ये थे आज के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 1:02 और 29 सेकंड हुए हैं। एफएम रेनबो पर आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम सुहानी रात। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फूल और कांटे फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने।

0: कोयल सी तेरी बोली,
1: हाँ?
0: कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु,
1: आए हाय,
0: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

दो बजे हैं, आइए अब सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वो बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। इस्पात मंत्रालय 9 तारीख को नई दिल्ली में इस्पात आयात से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए एक ओपन हाउस सम्मेलन आयोजित करेगा। और विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में सबसे ज्यादा मैच जीतने के मामले में रॉजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की। ये थे मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 2:02 और 25 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं भुलाए ना बने। इसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

ये आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल है। 3 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। वो बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस्पात मंत्रालय 9 तारीख को नई दिल्ली में इस्पात आयात से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए एक ओपन हाउस सम्मेलन आयोजित करेगा। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से

0: 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। अब सुनते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान गुजरात के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में तेज बारिश हो सकती है। और फीफा विश्व कप में अमेरिका में हुए एक रोमांचक पेनल्टी शूटआउट में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई है। इसी के साथ अब तक के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन,
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5

0: 5 बजे तक।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होने का भी कार्यक्रम है। सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। सरकार ने दोहराया कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा और सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण भी मांगेगी। इस बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन किया गया है। अगर बात करें मौसम की तो मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में तेज बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका में हुए एक रोमांचक पेनल्टी शॉट शूटआउट में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

इसी के साथ सारेगामा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम आराधना।